जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की

0: भावना है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत

0: देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
2: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्ता की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
2: सॉरी,
1: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
2: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
3: मतलब जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
4: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
5: इपया आकाशवाणी मुखोक्चो असुनुकियु संगम टेलियासर शिलोनो युपांगाशुगु तंगिबामा बांगनो टॉक्स ऑन लाइफ सिंदोनो रेवरेंड असिनचोंबा इमसोंग जिमी सपोर्टिव मिशन कोऑर्डिनेटर अपामदन सिनसक्सम्बा तनाबोबा शिलम अंगाशिचे।
6: इपया आकाशवाणी मुखोक्चो थांगासनुकि रिवरन असनचुंगबा इमसुंगदन मिशन वतांग तांगतपा असर इनिकिम दक्सनदकपनु सिनसाकजम अकिबा तानबवाशिलम अंगाशिचो अनुमानन यमेकासनानर नाथांग जिमी सपोर्टिव मिशन कोऑर्डिनेटर खामयगास नुजे थांग थियतक मिशन नुजे नायाचांग शारुबा इदमजे ओदां खार लमसदप दक्सनर
7: जिमी सपोर्टिव मिशन असनदो अपामी सपोर्टिव मिशन दातनांग Yanglor arugotami zimi nongor yam asar arugotam akhir charam mertiya pa maba inyaka artake kichiba supportive mission ta tenang acha tasra bangla parnok rono arugotin zakalir tamangar dam atokalir saka kangadang anu tanilano parnok kine asar light sayuba नोंग अनु कांगना अचिमालीबागे असनोके किपुर कमापो मियाक्स सगा पानुक यारीच तासबा नो सपोर्टिव मिशन तासबा तनाजी बनर अरु असर तने आवारु कोदम टीम बाकादी दाशिदे इबा जिमी सपोर्टिव मिशन नो शेलमाकिया इयाखा अरुदाकि जिमी नोर दमिया नकले नो पेरेंट डिस्ट्रिक्ट कबो लियर असर मणिपुर नोंग तमिंगलोंग डिस्ट्रिक्ट नोंलिर आसाम नोंग हाफलोंग एरिया नोंग असर सेलजार दाशि जिमी नाका नोंगरदम आजि आई गदां लिदाकि नाकालि नोंग हिराका अमांगबा आजि इशिगालिर सागा आसाम नोंबु अनु थीमबाका हिराका अमांगबा नपोरदमलिर तमांगर किबोंगादा मालिबा यम haraka kisong amangpa yemcha anu aigalir ziminordam tamangar ali takcha tamangar ishilamba asar haraka timba asar tane yemsong no sangam no signboard no oz imdaki conversion adama shinga maruz ta zlua aji naplokwa yua lir asar ipa tia nochi ipa chi ngwa kasa anu da इमदक्षागी यागी पणोक्तन मतेतपा तालिसा आसाम नोजे तानला लुरोबा नों शेलम अकिया क्रिस्टरंगी पणोक अनिया अरुचा सुशी यमिया बलालागी पणोक्तन अचुरदु

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Changmabang, Tukwaku Minitirbunga Dungbaden, a song that inspires Sindongnong, Watsi, Yabang Tula Chameria Tanbakan, Tamatiba Tamiyam Angadi.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Changi Bomba Bang Nong, my state, my pride, Snong Nong.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: 어이 뜨거워 봐. 이거 뭐야? 하당
1: 길가. 빵 열랑.
2: 오. 나.
3: 아.
2: 수염 종래
3: 나튼.
1: 나튼.

0: 나로 내 창을 뜻은 나는 빈속하니
1: 아, 말로 청나루네.
0: 청을 뜻은

0: 아이, 좋아, 아이, 니가, 아이.
1: 아이고,
0: 이 집에 날 나가들로. 하든지, 내 들어가고 해. 아, 오, 정보리 시조골랑.

0: 나자 심신의
1: 하하하하
0: 따뜻사 그
1: 야,
0: 점창이 동자
1: 농사대.
0: 나자
1: 나자
0: 심신의
1: 심신의
0: 아이

sanala nyela nuzafina isa atongote ranua

0: 浪
1: 家
0: 英雄两年，他哥呀没见过，公路那路情歌，路路的你可拉当那人可拉，青铜一他哥哥路拉就姑姑带可拉呢，哥。

0: 인내 누가 나로 랑전
1: 인내 누가 나로 랑전
0: 요스 사로의 시사
1: 요스 사로의 시사
0: 전동방가가 맨낭네
1: 전동방가가 맨낭네
0: 우리

뜬다고 장기용을 와야 뜬다만

दोस्तों नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में सेल्यूलॉइड के आसमान से पिछले सप्ताह एक सितारा नहीं बल्कि एक चांद उतरा था, 14वीं का चांद।

0: चौदहवीं का चांद यानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने विविध भारती के स्टूडियोज को और सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को जगमग रोशन कर दिया था। बातों का सिलसिला कुछ इस तरह चला कि हमें प्रोग्राम के वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा, इसलिए इस हफ्ते भी वहीदा जी विविध भारती के इस कार्यक्रम को रोशन कर रही हैं और बातें वहीं से शुरू कर रही हैं जहां पिछले सप्ताह छूट गई थीं। वहीदा जी से बातें कर रहे हैं कमल शर्मा।
1: वहीदा जी, गोल्डी साहब का भी जिक्र आया था, फिर वो अधूरा रह गया। गोल्डी साहब का शुमार बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से होता है और उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्में बनाई और आपने भी उनके साथ में काम किया। एक निर्देशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में आपने उनमें क्या खूबियां पाए?
2: वो भी काफी इंटेलिजेंट डायरेक्टर थे।
1: कैसा था उनका काम करने का स्टाइल जो था?
2: वेरी इजी टू वर्क विथ। गाइड में पहले शुरू में क्या होता था, अगर डायरेक्टर को कोई सजेशन दे, मेरा एक्सपीरियंस है दूसरे आर्टिस्टों का, आई डोंट नो, तो उतना वो लाइक नहीं करते थे। खासकर वो दिमाग में उस वक्त तो ज़्यादा ही था, अभी भी है थोड़ा बहुत, कि उन्हें लगता लड़की का क्या सजेशन लेना चाहिए, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो गोल्डी में ये बात नहीं थी। तो कभी कभी मैं कहती ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं ठीक लग रहा है, तो वो हाँ या ना नहीं कहते थे मगर उस चीज़ को ले लेते थे। फिर चुपके से उसको करा के मैं कह, अरे मैंने जो कहा वही किया ना आपने, तो कहते हाँ तो सही सजेशन था, इसके लिए मैंने किया, यू नो। सो वो बात बड़ी अच्छी थी और गाइड का ट्रीटमेंट उनका बहुत ही बढ़िया और अच्छा था। खासकर गाइड का एक सीन था जहाँ मैं मुझसे छल किए जाए परफॉर्म करने से पहले, बैक स्टेज पता चलता है कि राजू इज़ बीन अरेस्टेड फॉर फोर्जरी, और उसके या उससे पहले मार्को आते हैं, अपनी किताब प्रिंट हो चुकी है, तो वो राजू को कहते मुझे अंदर जाना है, मिलना है, जाने नहीं देते, तो वो मना करते हैं। अगर मैंने सोचा अगर आज की फिल्म होती तो ज़रूर एक वहाँ फाइट होनी थी बिटवीन राजू एंड मार्को, जो उसको इतना डिसेंटली और इतना डिग्निफाइड मैनर में उसको ट्रीट किया। वो खाली सिर्फ थोड़ा टाइट करते हैं मार्को की और ठीक करके कोट कहते नहीं आप नहीं मिल सकते, मैं किताब दे दूंगा, आप जाइए। वो मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, छोटा सा सीन था मगर बहुत अच्छा लगा, और उसमें दोनों का यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ही खूबसूरत, ही वाज अ वेरी गुड डायरेक्टर।
1: लेकिन वो जो गाना है मुझसे छल किए जाए, ये तो जरूर हम सुनाना चाहेंगे,
2: जरूर।

0: वेदा जी, लिविंग लेजेंड में शुमार होता है दिलीप कुमार साहब का, और उनके साथ में भी आपने बहुत काम किया, बहुत एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। खास उससे मुझे यहाँ दिल दिया दर्द दिया दर्द दिया याद आ रही है फिल्म, वुदरिंग हाइट्स से मेरे खास से इंस्पायर्ड थी वो फिल्म। दिलीप साहब के बारे में कुछ बताइए।
1: दिलीप साहब के साथ पहली फिल्म थी मेरी दिल दिया दर्द लिया, और फिर उन्होंने मुझे ये किताब दी थी वुदरिंग हाइट्स के, इसको पढ़िए, इससे हमने इंस्पायर करके बना रहे। और मुझसे एक गलती हो गई, जब किताब पढ़ चुकी मैं एक बार सेट पे गई तो दिलीप साहब ने, कोई और असिस्टेंट ने पूछा, कैसी लगी आपको ये किताब, वही है तो हम बना रहे हैं। तो मैंने गलती से कह दिया, जी साहब किताब से और फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। बोले क्या बात कर रही हैं आप, उसी से तो हम आइडिया लेके बना रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन के साथ। मैंने कहा वुदरिंग हाइट्स में कहानी का जोर शो होता है जब कैथरीन मर जाती है, उसके प्यार में जो इनका बुरा हाल होता है। यहाँ तो ये रूपा जी जो हैं अंत तक चली हैं और मिल भी जाती हैं, इनमें तो कहाँ से है। तो बोले नहीं नहीं भैया जी, आप बहुत मीम मेक निकालती हैं, अब नहीं उसी से लेते हैं। तो अब पता नहीं दिलीप साहब को सही लगा कि नहीं लगा, आई डोंट नो, बट ही वॉज वेरी नाइस एंड कोऑपरेटिव। और दिलीप साहब की एक बड़ी अच्छी बात थी, अपना शॉट होने के बाद अगर उस वो शॉट में खुद हैं या ना, तो वो दूसरे आर्टिस्ट का देखते रहते थे कि सही हो रहा है कि नहीं। अगर उनको लगता था कि नहीं सही हुआ, तो चुपके से आके कह देते, भाई इसको आप ऐसे ऐसे करें तो नहीं अच्छा होगा, इसको इस तरह करते हैं।
0: आपको कहा?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबको कहते थे।
0: किस
1: दिल दिल दिया दर्द लिया, उसके बाद कौन सी थी, आदमी, राम और श्याम, इसमें
0: कोई खास सीन याद आता है जिसमें उन्होंने कहा कि?
1: राम और श्याम में एक लाइट सीन था, तो मैं अपने फादर को जाके कह रही हूँ कि एक आदमी मिला और ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो गाड़ी जूम करके जाती, वो होता है यूँ होता है, बोले बोले बोले जा रही हूँ। तो मैंने, हम कोडेकनाल में थे होटल में, मैंने कहा साहब डायलॉग दे दीजिए, सीन दे दीजिए, याद करना, नहीं तो आउटडोर में टाइम वेस्ट होगा। और मुझे बहुत ये लगता था कि यू नो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो कहने लगे नहीं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा क्यों, आपने कहा इतना लंबा सीन है। तो मेरी आदत थी यू नो, मेरी हाथ बहुत चला के बात करती हूँ और साउंड्स निकालती हूँ, जैसे उन्होंने जो जो आप बोलती हैं उसको मैंने नोट किया है, आपको वही करना है, मगर जिस वक्त मैं क्या बोलती मुझे क्या पता। तो बोले एक रफली देख लीजिए, मैं कल दे दूंगा या नहीं तो आज रात को दूंगा मैं सीन। तो फिर भी मैं बड़ी काफ़ी नर्वस थी कि भाई दे दीजिए याद करने डाला। तो मैं कहूँ पढ़ती रही, तो मैंने कहा कि ये क्या है भाई, जूम करके गाड़ी चली गई। तो बोले आप, मैंने आपसे सुना है वो लफ्ज़। मैंने कहा कब, तो वो आपको याद नहीं होगा, हम नोट करते रहते हैं आर्टिस्ट कब क्या से बिहेव करता है, तो इसमें आपको ज़्यादा तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने खुल के, जैसे आप भूल जाइए कि आप ये कैरेक्टर हैं, थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए मैं वहीदा ही हूँ, हम कैमरा ऑन कर देंगे, सिर्फ थोड़े जो

0: कनेक्टेड जॉइंट के डायलॉग्स हैं वो याद रखे, बाकी आप ना कीजिए। मैंने कहा अच्छी बात है।
1: आदमी भी एक थोड़ी सी अलग तरह की फिल्म थी, टफ सा करेक्टर है, इसमें भी बड़ा चैलेंजिंग रोल था क्योंकि ट्रायंगल था, लव ट्रायंगल था आदमी का। इसका कोई गाना सुनवा दिया जाए
0: आदमी का?
1: हाँ जी।
0: वो जो उनके एक्सीडेंट के बाद एक गाना होता है,
1: आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज ना दे, वो
0: समथिंग। हाँ

0: अपने समकालीन जो आर्टिस्ट रही आपकी, जो समकालीन अभिनेत्रियां रही, उनमें आपको कौन बहुत पसंद थी?
1: मेरे से पहले जो थे, मतलब मेरे से सीनियर, उसमें मुझे गीता बाली जी बहुत अच्छे लगते थे, फिर नरगिस जी, और मीना जी का क्या था, उनके एक जैसे रोल होने लगे थे, एक टाइप की पर्सनालिटी हो गई थी, हालांकि उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी, इट वॉज वेरी कैरिस्मेटिक। उनको देखो तो दिल करता था, कई नज़र इधर उधर नहीं जाते थे, उन्हीं को देखते रहिए, बड़ी ग्रेट फिल्म आई मीन पर्सनैलिटी थी उनकी। उसके बाद हमारे मेरे साथ के वक्त मैं कहूँ साधना बहुत अच्छी थी, और माला सिन्हा, नंदा, ये नहीं कि नंदा मेरी फ्रेंड है, मगर उनकी अपनी एक पर्सनालिटी थी, बड़ा स्वीट सा चेहरा था।
0: अच्छा, एक क्रिटिक के रूप में कभी अपनी फिल्मों को देखा आपने कि भाई ये सीन ऐसे हो जाना चाहिए था कभी?
1: हाँ, वो तो इसीलिए मैं अपनी फिल्में देखती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि ओ हो इसको, इस सीन को और बेटर गाइड में खुद मैं इतने नुक्स निकालती हूँ कि ओ हो ये क्या किया मैंने, इससे तो ऐसे करना चाहिए।

0: था, बेहतर होता था सीन. सो फिर मज़ा ही नहीं आता मुझे जब तक मैं बिल्कुल बोर होके टीवी लगाऊँ, मेरी फिल्म हो तो चलो वक्त गुजारने के लिए देख लेती. मैं कहती अभी जाने दो, हो चुका, अभी मैं क्रिटिसाइज करके क्या फ़ायदा. तो वरना मैं उतना इंजॉय नहीं करती अपनी फिल्म में.
1: टीवी की अगर बात करें तो उसमें आज का सिनेमा भी मौजूद है घर में ही, और पुरानी फिल्में भी आती हैं, तो नई फिल्में भी आप देखती होंगी. जब आप उन दोनों को कंपेयर करती हैं, उनका कंपैरिजन करती हैं, तो क्या महसूस होता है आपको?
0: नहीं देखिए, लेटली एक दो साल से कुछ बहुत ही अच्छा दौर आया है जो हर किस्म की फिल्म बन रही है. मेनली शायद ये मल्टीप्लेक्सेस जो शुरू हो गए हैं, एक थिएटर में हर किस्म की फिल्म चल सकती है, चलती है. मगर थोड़े अरसे पहले कुछ ज़्यादा ही वायलेंट पे बेस होती थी और कहानियाँ रट्टी पट्टी एक ही के दो भाई हैं, बिछड़ गए बचपन में. वो माँ होती है एक अच्छी, नेचुरली माँ तो अच्छी होना चाहिए, फिर जो अच्छा लड़का है माँ के साथ रह जाता है. यू नो इट वाज वेरी बोरिंग. अभी थोड़ी वैरायटी आ गई है और बोल्ड सब्जेक्ट्स. और आजकल के जो आर्टिस्ट हैं मेल या फीमेल, वो हर किस्म का रोल करने के लिए तैयार हो गए हैं जो हमारे ज़माने में नहीं होते थे.
1: आपका एक बेटा है, एक बेटी है, क्या नाम है उनके?
0: वो सब बड़े शर्माते हैं, क्यों कहते हैं आप क्यों हमारा वो करते हैं, एक लड़का एक लड़की हो बस.
1: वो फिल्में देखते हैं आपकी?
0: मेरी फिल्में इतनी नहीं देखते हैं, कभी देखी नहीं उन्होंने. मेरी लड़की और लड़के ने कनाडा में ग्रेजुएशन किया टोरंटो में, तो वहाँ मेरी लड़की ने फिल्म स्टडीज की. तो फिर एक बार वापस जो हिंदुस्तान आई तो कहने लगी जो प्यासा में ऐसी है प्यासा में. मैंने कहा बेटा आपने प्यासा कब देखी, आपको तो अच्छी नहीं लगती थी हमारी मेरी फिल्में देखना. तो बोले टोरंटो में देखी. ओह मैंने कहा अच्छा थिएटर में लगी थी प्यासा? तो बोले नहीं कॉलेज में देखी. मैंने कहा कॉलेज में प्यासा कैसे दिखाई गई? तो कहने लगे वहाँ के आर्काइव में प्यासा रखी हुई है. मेरे ख्याल से गुरुदत्त जी की एक दो फिल्में हैं. तो आई फेल्ट वेरी प्राउड कि वाह क्या बात है. तो उसने कहा मैंने प्यासा देखी है. अब वो ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं और दोनों बच्चे मेरे कि हम अब आपके साहब बीबी और गुलाम देखना चाहते हैं.
1: तो यहाँ प्यासा का भी जिक्र आया है और साहब बीबी गुलाम का भी आया है. साहब बीबी गुलाम का तो इन दोनों में से कोई किसी एक फिल्म का ही गाना और हो जाए उसमें.
0: प्यासा का वो है ये दुनिया में, हाँ नहीं जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यारों को प्यार मिला.
1: हेमंत कुमार साहब की,
0: हाँ हेमंत कुमार साहब की आवाज़ में वो बहुत अच्छा था.

0: वीरा जी, दिल दिया दर्द लिया में प्राण साहब का भी एक बहुत ही अलग तरह का रोल था और विलन थे उसमें, और सिनेमा के बहुत ही नामी कलाकार तो हैं ही, उनसे भी जुड़ा कोई संस्मरण हम जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि उनके साथ में भी आपकी कई फिल्में आई, राम और श्याम में भी वो खलनायक थे।
1: बहुत फिल्मों में थे, पत्थर के सनम, राम और श्याम, दिल दिया दर्द लिया, आदमी, तो बहुत इतने बुरे, मतलब यू नो यूज़ टू हेट हिम ऑन द स्क्रीन, मगर उतने जेंटलमैन थे लाइफ में, बहुत ही शरीफ। और उनकी एक अजीब बात थी, उन्होंने मुझे कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के, कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई फल नहीं खाया, वो फल खा नहीं सकते क्योंकि फल की खुशबू से तक उनको मतली आती थी। मैंने कहा अच्छा, पहली बार सुना मैंने, वैसे इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, और जोक्स बहुत क्रैक किया करते थे, इट वॉज अच्छा लगता था।
0: लेकिन उन्होंने कामयाबी का फल अच्छा
1: बिल्कुल चखा।
0: आपकी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मुझे दो तीन फिल्में और बहुत याद आती हैं, रुला भी देती हैं, उसमें एक मास्टरपीस है आपकी एक और फिल्म, तीसरी कसम, शैलेंद्र साहब उससे जुड़े हुए थे जिनकी बड़ी दर्दनाक, फिर उसके साथ में जो घटना ट्रेजेडी हुई उसके साथ में, वो भी राज कपूर साहब आपके उसमें नायक थे और मेरे ख़ास से बासु भट्टाचार्य साहब ने उसको डायरेक्ट किया था, उसके बारे में ज़रूर बताइए, उस फिल्म के बारे में। एक तो उसमें वो पूरी कमाल की है वो फिल्म, आज भी उसको जितनी बार देखा जाए ऐसे मन ही नहीं भरता उस फिल्म को।
1: उसकी बड़ी सिंपल कहानी थी, बड़ी सिंपल स्वीट पिक्चर थी, मगर उसकी फिलॉसफी बहुत डीप थी। उनके गानों में भी सिंपल वर्ड्स थे मगर उसकी मीनिंग, उसकी फिलॉसफी में बहुत डेप्थ थी। और आप मानोगे नहीं, आधी से ज़्यादा फिल्म बनी थी बिना, मतलब एक सीन में मैं और राजी हैं तो मैं नहीं हूँ या नहीं तो राजी नहीं है, तो डायरेक्टर ने बड़ी मुश्किल से ये नहीं, क्योंकि वो बहुत देर से आते थे सेट्स पे और वो बहुत मसरूफ थे, अपने संगम बन रही थी उसके बाद, हाँ संगम बन रही थी उस वक्त, वो इतने ज़्यादा उसमें जुड़े हुए थे, मसरूफ थे, तो इसको उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी, उन्होंने इसलिए की क्योंकि शैलेंद्र उनके दोस्त थे और वो उसके प्रोड्यूसर थे। बड़ी मुश्किल होती थी मगर देख के फिल्म मुझे खुद ताज्जुब होता था, ये कैसी बनी फिल्म, क्योंकि कई दफ़ा सीन्स में एक बैक शॉट ले लिया कंबाइंड, उसके बाद मेरे क्लोजअप हो रहे हैं और मेरे से बैक शॉट ले लिया तो उसके बाद राज साहब के क्लोजअप हो रहे हैं, मगर सीन टोटली ऑन द स्क्रीन एक सीन होता था। तो बड़ी वैसे हालात में फिल्म बनी और फिर वो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल एंट्री थी, उसके लिए हम साथ गए थे मैं और राज जी, और वाकई में मैंने देखा राज जी यूज़ टू गेट मॉब्ड इन मॉस्को, लिटरली राजू राजू राजू, यू नो बहुत, और जो जो रशियन था वो उनके पूरे गाने, एक क्या 420 और फिल्मों के गाने आवारा के सब गाया थे, गाते थे।
0: वेदा जी, इस फिल्म में नौटंकी वाली का एक किरदार किया था और म्यूजिक भी उसमें काफी कुछ उसी तरह का था, शंकर जयकिशन साहब का संगीत था। इस फिल्म में क्या आपको संतुष्टि मिली भूमिका निभा करके, तीसरी कसम की अगर मैं बात करूं?
1: हाँ, मुझे अच्छा लगा था क्योंकि वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर था, यू नो, और सिंपल एंड वेरी स्वीट, उससे वो फिल्म कभी भी देखो बोर नहीं लगती है, यू नो, अच्छी लगती है, दिल को छूती है।
0: कुछ चीज़ें ऐसी कि जैसे सेल्यूलॉइड पर पोएट्री किसी ने लिख दी, कुछ उसी तरह की वो फिल्म है, उसमें भी गाने बहुत अच्छे थे। एक गाना उस फिल्म का हम जरूर सुनाए,
1: सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, हमें तो पैदल ही जाना है।

0: बासु भट्टाचार्य, उन्होंने हालांकि बड़ी ऑफ बीट फिल्में बनाई, समानांतर सिनेमा से भी उनका नाम जोड़ा जाता था, पैरेलल सिनेमा से, और इस फिल्म में उनके साथ में काम करने का मौका मिला आपको, बिमल रॉय साहब के साथ में उनका लंबा एसोसिएशन रहा, उनको कैसा निर्देशक पाया आपने?
1: पहले उनको समझना ज़रा मुश्किल था, क्योंकि वो नेचुरली उनकी पहली फिल्म थी तो वो बड़े टेंस रहते थे, और फिर अक्सर उनको उनका कैमरामैन के साथ ये नोकझोंक हो जाती थी छटपट। और फिर एक बार राजू ने कहा, वहीदा जी ये क्या हो रहा है, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे कहा, तो वो बेचारे नए हैं तो आप उनको बता दीजिए कुछ गलत हो रहा है। तो कहने लगे, नहीं मेरा ये प्रिंसिपल है, जब मैं एक्टर बनता हूँ मैं सिर्फ एक्टर रहता हूँ। मैंने कहा, मैं मानती हूँ मगर आप इतने पुराने डायरेक्टर हैं, बेचारा वो नया है, उसकी मदद करो, फिर मुझे क्यों कह रहे हैं? तो बोले, कोई तो चाहिए ना कंप्लेन करने के लिए। तो मैंने कहा, आपको क्या मैं ही मिली जो आप मुझे कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? उससे मैं और परेशान हो रही हूँ कि आपको लग रहा है गलत तो है, तो क्या करें। तो ऑन द होल जब फाइनली फिल्म बनी तो बहुत अच्छी बनी थी, तो हमने कहा वेल ठीक हो गई, यू नो।
0: वेदा जी, आपने सत्यजीत रे साहब की भी किस फिल्म में काम किया? कौन सी फिल्म थी वो?
1: अभिजान।
0: अभिजान बंगला आपको आती
1: नहीं? उसमें इतनी ज्यादा शुद्ध बंगाली बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा ये बिहारी लड़की है, टूटी पुटी बंगाली और भोजपुरी जबान बोलती है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। तो मगर जब उसका ऑफर आया, मुझे बहुत बेहद खुशी हुई और ताज्जुब भी हुआ।
0: उसके पहले आपने उनकी कोई फिल्म देखी थी सत्यजीत रे साहब?
1: हाँ, पाथर पंचली देखी थी। अच्छा। उसके बाद भी और दो तीन फिल्में देखी थी मैंने, तो आई वॉज रियली वेरी थ्रिल्ड और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और
0: उन्होंने क्या कहा के बारे में? उनको कैसा लगा आपका काम?
1: हाँ, उन्होंने कहा, जब हम डिस्कस कर रहे थे सौमित्री चटर्जी और हम, उनके वो फेवरेट एक्टर थे, तो कि इस कैरेक्टर को किसको लिया जाए, क्योंकि कोई प्योर बंगाली की ज़रूरत नहीं है जो जबान जो बोलती है उसके लिए। तो सब ने कोरस में कहा है वहीदा रहमान। तो मैंने कहा सच? तो बोले आई वॉज रियली थ्रिल्ड। और उनका समझाना और शॉट लेना इतना प्रिसाइस होता था, ना वक्त ज़ाया होता था ना नेगेटिव ज़ाया। वो तो कहते थे, भाई मेरा नेगेटिव इतना निकलता है इससे कोई चूड़ियाँ प्लास्टिक की चूड़ियाँ भी नहीं बन सकती हैं, क्योंकि आई कांट अफोर्ड, क्योंकि इतने छोटे बजट पे फिल्म बनती है। हम नहीं कह रीटेक्स इतने सारे 20-25 रीटेक हो रहे हैं, या इतने ज़्यादा शॉट्स ले लिए उसके बाद निकाल के फेंक दिया। मैं दिमाग में पेपर पे लिख लेता हूँ कि इसकी टाइमिंग इतनी इतना ही होगा शॉट, उससे शायद 3-4 फुट ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको शुरू के लिए या एंड के लिए, वरना नहीं।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान, इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। सुनिए आगे की बातचीत।
0: दूसरे डायरेक्टर्स आए तो फिर भी कहीं ना कहीं मोल भाव तो हो ही जाता है पैसे को लेकर के। जब उनका ऑफर आया, पैसे की क्या बात हुई? पैसे आपने
1: सवाल ही नहीं पैदा हुआ था, वो ऑलरेडी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट 10 डायरेक्टर्स में थे। तो पैसा, देखिए हम पैसे के लिए जरूर करते हैं, आफ्टर ऑल इट्स अ प्रोफेशन, कोई चैरिटी तो नहीं कर रहे, मगर कई दफा

0: जैसे रेशमा शेरा मैंने की, सुनील जी ने कहा था ये 25-30 में बनेगी, और आप कहिए, क्योंकि उस वक्त सुखदेव डायरेक्टर थे, सुखदेव या खुद सुनील या मैं, कोई आर्टिस्ट पैसे नहीं लेगा, जब पिक्चर ख़त्म हो जाएगी तो हम पैसे लेंगे और बिक जाएगी, तो वो उसके इतने मुश्किलात से गुजर रहे थे वो, तो उस फिल्म में मैंने नहीं पैसे लिए रेशमा शेरा में। और जब सत्यजीत ने कहा, मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं आपसे पैसे की बात करूं। कई दफ़ा आर्टिस्ट अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या बहुत बढ़िया डायरेक्टर के लिए काम करते हैं बिना पैसे के, या बहुत कम पैसे जो डायरेक्टर के मन में आए तो दे दे, तो दे दे, नहीं तो नहीं।
1: आपकी एक फिल्म और है बांग्ला, जीवन जेरोकम।
0: हाँ, वो नहीं ठीक बनी, मैंने हालांकि देखी भी नहीं, क्योंकि उसमें बनती रही रुकती रही, उसमें कोई एक्सीडेंट आग हो गया था, तो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ अरेस्ट भी हो गए थे, कॉम्प्लिकेशंस थे, तो वो ठीक से मुझे मज़ा नहीं आया वो फिल्म में काम करके।
1: मनोज कुमार साहब का नाम आया था, मनोज जी का नाम लिया जाता है बड़े ही सफल, बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से, जैसे गोल्डी साहब

0: ठीक बनी, मैंने हालांकि देखी भी नहीं क्योंकि उसमें बनती रही रुकती रही, उसमें कोई एक्सीडेंट हो गया था तो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ अरेस्ट भी हो गए थे, कॉम्प्लिकेशंस थे, तो वो ठीक से मुझे मज़ा नहीं आया वो फिल्म में काम करके।
1: मनोज कुमार साहब का नाम आया था, मनोज जी का नाम लिया जाता है बड़े ही सफल बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से, जैसे गोल्डी साहब को लोग याद करते हैं तो कहते हैं कि मनोज साहब, ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी, कहते हैं कि वो एक्टर से बेहतर डायरेक्टर है। आप क्या कहेंगे उनके बारे में, कैसे उनके साथ में काम?
0: नहीं, आई एग्री विथ हिम, वो आई एग्री विथ हिम, इज अ बेटर डायरेक्टर देन एन एक्टर।
1: कोई यादगार घटना है उनके साथ में?
0: उनके साथ एक फिल्म बनी थी पत्थर के सनम,
1: जी जी,
0: तो वो बैठ के, उस वक्त क्या होता था कि मोबाइल फोन्स नहीं थे और एसी मेकअप रूम नहीं होते थे ना वैन्स होते थे, तो हम ज़्यादातर एक बार सेट पे गए तो सेट पे ही बैठे रहते थे जब तक लंच ब्रेक ना हो या पैकअप ना हो, तो आपस में बैठ के बातें करते थे जब लाइटिंग हो रही हो, तो सब एक्टर्स हम साथ में पिछली शूटिंग कौन सी थी, क्या सीन था, वो डायरेक्टर कैसे हैं, ये बातें करते थे, तो मनोज हमेशा अपनी कहानियाँ अपने सीन सुनाया करते थे, तो उससे मुझे लगा कि यार लिखते बहुत अच्छा है। तो पत्थर के सनम के डायरेक्टर को मैंने कहा इन चंद सीन आप इनसे लिखवाया कीजिए, लिखवाइए क्योंकि बहुत अच्छा लिखते हैं। तो बोले अच्छा क्यों, मैंने कहा ये सीन्स अपने फिल्मों के सुना रहे हैं तो उससे लगता है कि बात है इस आदमी में, तो काफ़ी सारे पत्थर के सनम के सीन्स उन्होंने फिर मनोज से लिखवाए, यू नो, तो लाइट सीन्स वगैरह बहुत अच्छे थे।
1: अच्छा वहीदा जी, फिल्मों में तो गाने पिक्चराइज किए जाते हैं, आपके ऊपर बहुत सारे गाने हैं और वो फिल्में जब उतर भी जाएँ सिनेमा हॉल से लेकिन गाने तो गूंजते रहते हैं, रेडियो से हम आज तक सुना रहे हैं लोगों को।

0: उनको वो गाना आप पे जब जो पिक्चराइज हुआ हो उसको देख करके उनको मजा आया हो और आपको मजा आया हुआ वो गाना जो उन्होंने आपके लिए गाया हो।
1: हाँ, लता जी ने कहा, मुझे बाद में कई डायरेक्टरों ने भी कहा, वो हमेशा पूछा करती थी कौन सा आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाला है, तो वो बताते थे कि नूतन या मीना कुमारी हुआ वो। तो एक बार एक म्यूजिक डायरेक्टर ने पूछा, ये क्या फ़र्क पड़ता है आपको, को गाने से मतलब है, आर्टिस्ट क्यों पूछते हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं जब उनकी फिल्में देखती हूँ या पर्सनली मिलती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बोलते हैं, कि ये मैं उसमें अल्लाप लूँ या इस ढंग से गाऊँ, तो क्या वो करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं? तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट आर्टिस्ट हैं, तो वो हमेशा पूछती हैं। तो एक वक्त क्या हुआ, वो उनको चॉकलेट्स का बहुत शौक़ है, तो बांग्लादेश की वॉर जब हुई तो मैं प्रोग्राम कमेटी में थी, तो मेरा जिम्मा था कि फंड कलेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने इंडस्ट्री को जमा करके बहुत बड़ा शो किया था, और लता जी मान नहीं रही थी। कल्याण जी, आनंद जी भाई जाके बहुत कहा, फिर सुनील नरगिस ने कहा कि लता जी आ जाइए, इस शो में बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा शो होने वाला है। तो पता नहीं क्यों उन्होंने कहा नहीं, बहुत बरसों से मैंने हिंदुस्तान में शो करना छोड़ दिया। तो फिर कल्याण जी भाई से मैंने कहा, चलो एक बार आखिरी बार कोशिश करते हैं। कहीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनकी गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो हम पहुंच गए बिना अपॉइंटमेंट के। वो देख के फिर चौंक गए कि ये फिर आ गए। तो बस ब्रेक हुआ तो मैंने कहा, लता जी आपके बगैर शो पूरा नहीं होगा, और किशोर दा भी मान गए हैं, तो वो कहते कि लता के बगैर मुझे नहीं मज़ा आएगा, ये क्या बात है ये? नहीं, क्योंकि तुम क्यों नहीं मानती, मुझे सुनील ने भी कहा, नरगिस जी ने भी कहा, मैं नहीं करती। पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई जो ज़बान से निकल गई, जो बहुत उसका फ़ायदा हुआ। मैंने कहा, लता जी क्या है, हिंदुस्तान में सिर्फ दो हीरोइंस हैं। तो वो देखने लगी, बोले दो कौन? मैंने कहा, एक इंदिरा गांधी जी हैं, फिर एक आप
0: अरे
1: हैं। तो वो इतनी ऐसे मुंह खुला देखने लगी, और फिर कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई मुझे देखने लगे, ये क्या बोल रहे हैं? वो बोल के एक सेकंड के लिए सन्नाटा हुआ, मैंने सोचा गलत कहा है कि सही कहा, मेरी समझ में नहीं आया। तो फिर वो मुस्कुराने लगे, तो बोले, अच्छा भाई तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हो, अच्छा आ
0: कहीं कहीं लड़ियाना पड़ता है, मान मनावर सब चलता है
1: जाऊंगी।
0: ना। तो फिर वो आई उसमें। तो यहाँ लता जी का कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है?
1: का हम दोनों का गाना, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर
0: वाह,
1: तेरो नाम, मैं जब भी सुनती हूँ चुपचाप खामोशी से, तो मेरा दिल भर आता है, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है गाना। उनके तो खैर वो इतने हैं, मुश्किल है ढूंढना या चुनना।

0: खामोशी जो है अंदर की जो पीड़ा है वो जिस तरह से वो अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रही चीजों को वो रुला देती है वो। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही कठिन रोल है जिसमें आपके पास में संवादों से ज्यादा आपको अपने चेहरे से अपनी आंखों से बात करनी है। कोई यादगार घटना इस फिल्म से जुड़ी हुई?
1: तो वो सीन डिफिकल्ट था, हालांकि उसमें डायलॉग्स नहीं थे। जब राजेश खन्ना के साथ, राजेश खन्ना को इससे ज्यादा लगाव हो जाता है, पहले केस में इसको धर्मेंद्र के साथ लगाव होता है, तो वो चले जाते हैं शादी करके जब ठीक हो जाते हैं। तो फिर जब दोबारा ये रिपीटेशन होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हमारे प्रोफेशन में आपको ऐसा लगाव होना नहीं चाहिए, यू नो, ये मुश्किल बात है। तब इसको महसूस होता है कि अब ये कैरेक्टर को इससे लगाव हो गया है, अब कैसे बचे। तो वो उसको बड़ा समझाने की कोशिश करती, होता नहीं है, तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। वो बड़ा कठिन सीन था क्योंकि वो दरवाज़ा ठोक रहा है, पीट रहा है, आवाज़ें दे रहा है, राधा राधा राधा, और वो कमरे से निकलती नहीं है। कैसे वो अपने आप को कंट्रोल करती है, और उसका स्ट्रेन उस पर इतना पड़ता है कि वो देन शी गोज मैड। तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट सीन था। और एक डिफ़िकल्टी हो रही थी क्योंकि जैसे मैं राजेश को बोट राइड पर ले जाती हूँ, वो गाना गा रहे हैं और मैं उसके साथ हूँ एज ए नर्स, और वो इसको सोच रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मुझे भी, मैं प्यार कर रहा हूँ तो ये भी शायद मुझे प्यार कर रही है। उसमें उस वक्त प्रॉब्लम क्या हुई थी, इट वाज़ वेरी कॉमिकल, इट वाज़ मेरे जो एक्सप्रेशन थे सीरियस थे क्योंकि वो महसूस कर रही, ओह ये तो फिर से गड़बड़ हो रही है, अब इसको मेरे से लगाव होने लगा है। वो गाना गा रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि अब कैसे इसको मैं दूर करूँ और कैसे समझाऊँ। तो उस वक्त राजेश खन्ना नए नए थे तो वो लिप मूवमेंट नहीं कैच कर पाते थे, और जब ऐसे हम एम्ब्रेस कर रहे हैं तो कैमरा पीछे जाता था, तो मैं राजेश कहते थे वहीदा जी प्लीज़ हेल्प मी, तो मेरा स्टार्टिंग दे दीजिए। अब उनके गाना उनका है तो मैं कहती थी ये शाम कुछ अजीब है, फिर वो कैमरा आ जाता था, मैं फिर चुप उदास चेहरा लेके, बड़ी मुश्किल हुई, बड़ी मुश्किल हुई, और हंसते थे। मैंने कहा राजेश थोड़ा कॉन्सेंट तो कीजिए, तो बोले क्या करूँ भूल जाता हूँ, तो आप मुझे थोड़ा क्यू दे दिया करें। वो कैमरा पीछे राजेश के फेस पे जाता था, क्यू मैं देती थी, गाना उनका था, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई।
0: वही गाना सुनते हैं?
1: हाँ जी, वो बहुत मेरा फेवरेट गाना है।

0: वहीदा जी, असिस्टेंट साहब का जिक्र आया, फिर हेमंदा की वो फिल्म थी, हेमंदा ने गाया भी, संगीत भी दिया और फिल्में भी प्रोड्यूस की, कोहरा और 20 साल बाद, ये दो फिल्में भी उन्हीं की थी। हेमंत साहब की फिल्मों की खासियत ये रही कि संगीत जो है उनका बहुत बढ़िया रहा। उनसे कोई पर्सनल आपकी मुलाकात, कोई ऐसी यादगार मुलाकात हुई?
1: पर्सनल एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ कि हेमंदा को गुरुदत्त जी की वजह से वो गाने वगैरह गाते थे, सेट पे आते थे, मिले हैं तो 20 साल बाद, नहीं कोहरा के वक्त शूटिंग ख़त्म हो गई तो हम कोई फिल्म देखने गए थे, मैं, मेरी बहनें थी, तो उसी थिएटर में हेमंदा भी थे, उनकी बीवी और भी उनके फैमिली वाले थे। तो जब फिल्म ख़त्म हुई तो वो माशाल्लाह वो कुछ 6 फुट 4 इंच के थे और मैं ऊपर की सीट पे थी, तो वो मुड़े तो उन्होंने मुझे देखा, तो सुना उन्होंने, मुझे नमस्कार किया। और कभी कभी मैं खो जाती थी, मतलब एब्सेंट माइंडेड सी, तो मैंने नहीं जवाब दिया, मैं चली आई। इत्तेफाक से मेरी बहनों ने भी नहीं देखा, नहीं तो वो विश करते, उनको जानते थे। तो उनकी बीवी उनसे बहुत नाराज़ हुई कि ये क्या बात है, आप प्रोड्यूसर हैं, दूसरी पिक्चर बना रहे हैं, कब से जानती हैं वहीदा, और आपने नमस्कार किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चली गई। तो हेमंदा ने कहा, नहीं जितना मैं उनको जानता हूँ मुझे लगता है वो वहाँ थी ही नहीं। बोले, क्या मतलब आपका वहाँ नहीं थी? वो फिजिकली थी, वो फिजिकली थी, मेंटली नहीं थी, क्योंकि शी इज़ नॉट ए रूड पर्सन, हो नहीं सकता। बोले, अरे इतने लंबे चौड़े आदमी के उनको तो आपको दिखाई नहीं दिए। तो नहीं, मेरा तो ख्याल है ऐसे। खैर उन दोनों की बहस हुई तो एक दो महीने के बाद उनकी

0: सेट पे मैं गई तो मुझे पूछने गया वो फिल्म कैसी लगी आपको फलाने थिएटर में। हाँ मैंने कहा बड़ी अच्छी थी, वो नहीं अच्छा था, ये था वो था, काफ़ी बहस हुई। फिर मैंने सोचा आपको कैसा पता मैंने फिल्म देखी, तो बोले क्योंकि मैं भी वहीं था। ओ रियली, मैंने कहा मैंने नहीं देखा आपको, आपने नहीं देखा ना, मुझे पता था आपने मुझे नहीं देखा। और मज़े की तो बात यह है, मैंने कहा कहने क्योंकि मैं ऊंचाई पे थी और कद कम वो नीचे थे, मगर बराबर आई टू आई लेवल ठीक था। तो बोले मैंने आपको नमस्कार किया, आपने सीधे स्ट्रेट देखा और मुड़ के चली गई। तो मेरी बीवी मुझसे बड़ी नाराज़ हुई, और मुझे पता था कि आप वहाँ मेंटली नहीं थी, वो पिक्चर के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं कहा। तो बड़ी नाइस ऑफ फिल्म के वो मिसअंडरस्टैंड नहीं किया उन्होंने।
1: वेदा जी, उनकी फिल्म 20 साल बाद की अगर हम बात करें या कोहरा, संगीत दोनों का बहुत बढ़िया रहा, किस फिल्म का गाना सुनवाएंगे?
0: कोहरा का गाना झूम झूम ढलती रात।

0: वैसे जी फिल्मों की खूब बातें हो गई, लेकिन फिल्मों से हट करके भी आप काम कर रही हैं, और ख़ास तौर से हमें पता चला कि बेसहारा बेघर जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी आप अपनी सर्विसेज दे रही हैं। उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या है ये काम?
1: ये एनजीओ है जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए शुरू हुआ 10 साल पहले, और 10 साल से चल रहा है और काफ़ी कामयाब हुआ है। और ये जो स्लम्स के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं म्यूनिसिपल स्कूल्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से, मगर उनका फाउंडेशन नहीं बनता प्राइमरी एजुकेशन के लिए, और वो बेचारे माँ बाप दोनों काम करते हैं तो वो उनकी ज़िंदगी फाउंडेशन नहीं, क्योंकि चूँकि ठीक होता है तो वो भटक जाते हैं, सड़कों में घूमते रहते कुछ नहीं। तो ये एक फाउंडर हैं निर्मला निकेतन की, शुरू किया। तो अभी धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान में इसका शुरू हुआ, इसका नाम है प्रथम। प्रथम मतलब फर्स्ट स्टेप, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी आई फील। तालीम की, एजुकेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क में, उससे कई बातें सॉल्व हो सकती हैं।

0: तो कई माँ बाप को पहले जाके समझाना पड़ता है, वो सोचते हैं हाँ म्यूनसिपल स्कूल, पहले तो वो डर जाते हैं कि हम पे नहीं कर सकते, म्यूनसिपल स्कूल तो फ्री है, अब आप लोग आ गए पढ़ाने के लिए, हम नहीं पे कर सकते। हम कहते हैं नहीं, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मोहल्लों में हम लड़कियों को पिकअप करते हैं टीचर्स, उनको कहानियों से गानों से उनका दिलचस्पी पैदा करते हैं। मेन मकसद तो बच्चों को पढ़ाना, फिर वो स्कूल जाते हैं। तो ये लड़कियों की ज़िंदगी बड़ी इम्प्रूव हुई है, मगर आगे का जेनरेशन जो पढ़ा लिखा होगा वो अपने बच्चे या अपने छोटे भाई बहनों को अनपढ़ नहीं रखेंगे, वो भी चाहेंगे कि वो भी ज़रूर पढ़ें, कि इसका फ़ायदा क्या है।
1: तो वेदा जी, जैसी आपको तृप्ति संतुष्टि मिली अपनी भूमिकाओं को करते हुए फिल्मों में, वैसी संतुष्टि इसमें मिली आपको?
0: हाँ जी,
1: वेदा जी, दिल तो नहीं करता कि आपको छोड़ें, आपसे बात करने का और भी मन करता है। और हम अपनी ओर से, विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से और विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने अपने जीवन, अपने करियर, अपने साथियों और न जाने किन किन विषयों पर बातें की। इनसे कमल शर्मा ने बातचीत की। चलते चलते आपको ये बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे तकनीकी सहयोगी थे दिलीप कुलकर्णी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: साधना सरगम और साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे ग्रेटेस्ट भजन ग्रेटेस्ट सिंगर्स। इस एल्बम से ही मीराबाई का लिखा ये भजन, जिसमें संगीत केदार पंडित का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत, सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

में आप सुन रहे थे गुलदस्ता एल्बम से ये गजल, जिसे लिखा है अमी खनफी ने और इसे संगीत से सजाया अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

तलत अजीज की आवाज में आप सुन रहे थे गजल जिसे लिखा कतील शिफाई ने। तलत अजीज के का संगीत गिफ्ट्स ऑफ सॉन्ग्स एंड गजल इस एल्बम से हमने आपको इसे सुनाया। आपको ये बता दें कि रोजाना शाम 7:45 पर विविध रंगों से सजती है इंद्रधनुष के रंग, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम आपको रोजाना सुनाई पड़ते हैं। और आज आप सुन सकते हैं शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग अनुराग, तो सुनिएगा शाम 7:45 पर। और इस समय विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, जिसमें कव्वाली गीत गजल और पॉप गीतों की होती है एक साथ बंदिश और आप इन्हें सुनते हैं। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: पलाश सेन और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे यूफोरिया एल्बम से ये गीत, और विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

बरसात की रात फिल्म से ये कव्वाली आप सुन रहे थे। मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी, एसटी बतीश, सुधा मल्होत्रा, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ आप सुन रहे थे। माफ़ कीजिएगा, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाज़ आप सुन रहे थे। इस कव्वाली में साहिल ध्यानवी ने इसे लिखा, रोशन का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे धर्मा फिल्म से गीत, वर्मा मलिक का की बोल और सोनी कुमी का संगीत। आपको बता दें कि शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है और विविध भारती पर अगर आप रोजाना रात 10 बजे छाया गीत सुनते ही हैं, लेकिन किसी दिन अगर चूक जाएं तो शाम 5 बजे आप सुन सकते हैं पिछले

जगजीत सिंह की आवाज में सरफरोश फिल्म से ये सुन रहे थे कलाम आप। निदा फाजलीक ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

उस्ताद सुजात खान की आवाज़ में आप सुन रहे थे उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गज़ल आपने सुनी, कमलेश सोनावाला ने इसे लिखा और इसे हमने आपको सुनवाया रेड रिबन एल्बम से। इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति

0: में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉर्डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजावेलु और VP शिव कोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNH राजशेखरन को उपराज्यपाल K कैलाश नाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोनाको के शासक अल्बर्ट द्वितीय से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि इस दौरान नवाचार और उभरते प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत मोनाको साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इससे ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोन मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

राहुल देव बर्मन की तर्ज पर आपने सुना आनंद बख्शी के बोल लता मंगेशकर की आवाज में। सनी फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: किशोर कुमार को आप सुन रहे थे जावेद अख्तर के बोल के साथ मशाल फिल्म के इस गीत में हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: अनजान के बोल आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन की तर्ज के साथ। लता मंगेशकर की आवाज़ जमीन आसमान फिल्म के इस गीत में आपने सुनी। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें।

0: 29 जून
1: शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: झूठा सच फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

सोहनी महिवाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, अनु मलिक का संगीत। कार्यक्रम यादों के महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और मेन्यू कार्ड, गीतों का मेन्यू कार्ड नहीं बल्कि मेन्यू कार्ड नामक नाटिका आप सुन सकते हैं रात 8 बजे हवा महल में। मूल कहानी लिखी है ओ हेनरी ने, जिसका हिंदी नाट्य रूपांतरण किया है मुरली मनोहर जोशी ने और निर्देशन है मुख्तार अहमद का। तो आज रात 8 बजे सुनिएगा नाटिका मेन्यू कार्ड हवा महल में। और इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

प्यार झुकता नहीं फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ें, माफ कीजिएगा लता मंगेशकर की आवाज़ में ही ये गीत फिलहाल आपने सुना, एसएच बिहारी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत। इसके साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर, लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम के शुरुआत के पहले आपको बता दें आज की इबारत यानी टेक्स्ट क्या है। तो आज की इबारत है, हर सवाल का जवाब हो ये ज़रूरी तो नहीं, हर जवाब का सवाल हो ये भी कहाँ ज़रूरी है। अब आप ही सोचिए, कब, कौन, कहाँ, किससे, क्यों और कैसे मिलेगा और क्या कहेगा, ये कोई जानता है भला? नहीं। यह जानकर भी कुछ सवाल और जवाब अनजान से

अफवाहों में भटकते रहते हैं। वैसे सवालों को उनके जवाबों से मिलाने की कोशिश में ही तो हम कभी सवालों के पीछे जवाब लिए तो कभी जवाबों के लिए सवाल ढूंढने घूमते रहते हैं। पर जिंदगी भाई वो तो इन सारे सवालों जवाबों से परे होती है। तो ये है आज की इबारत और टेक्स्ट। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों या कहें कि जब से सुरीला सफ़र शुरू हुआ है तो हम एक इबारत रोज़ाना फेसबुक पर पोस्ट करते हैं हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए। आप इस इबारत या टेक्स्ट को जानते हैं और इसमें ही कुछ शब्द छुपे होते हैं जिनसे गीत कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। अगर आप अब तक हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो टाइप कीजिए फेसबुक पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai और आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के पेज पर पहुंच जाएंगे। हिंदी में लिखा है ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और इसमें जाकर आप हमारे सभी कार्यक्रमों की जानकारी भी हासिल कर पाएंगे और सुरीला सफ़र की पोस्ट भी आपको वहीं मिल जाएगी जिसके कमेंट के ज़रिए आप अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। तो हमारे साथियों ने आज की इबारत और टेक्स्ट पढ़कर ये अंदाज़ा लगाया है कि कुछ सवाल जवाब की बातें होने वाली हैं। सुरीला सफ़र में तो खैर वैसे भी सवाल जवाब की बातें होती ही हैं, लेकिन हमारे एक साथी लिखते हैं कि कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ काम, सवालों से मिलता है हर बात का नाम, जिज्ञासा जगाती है ज्ञान की आस, उत्तर से खुलते हैं समझ के प्रकाश। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं, लेकिन क्योंकि कार्यक्रम में गीत भी तो ज़रूरी हैं तो गीत आपको सुनवाएंगे। उससे पहले आपसे हम पूछना चाहते हैं कुछ सवाल। तो ये बताइए कि ऐसे कौन से सवाल हैं जिनके जवाब आपको अब तक नहीं मिले, या ऐसे कौन से जवाब हैं जिनके सवाल आपसे पूछे ही नहीं गए, और कौन सा सवाल ऐसा है जो आपको सबसे कठिन लगता है, और कौन सा ऐसा सवाल है जो आपको लगता है कि इसे तो पूछना ही नहीं चाहिए किसी से भी। किस तरह के जवाब आपको पसंद नहीं आते, और किस तरह का जब जवाब देने का आपका मन नहीं होता है तो किस तरह से आप टालते हैं कोई बात। तो ये सारी बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं, अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं कि कभी आपसे अगर पूछा गया हो ऐसा सवाल जिसने आपको असमंजस में डाल दिया हो कि इसका जवाब क्या दें। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी सवाल का जवाब हमें पता होता है लेकिन हम कह नहीं पाते क्योंकि कुछ परिस्थिति ऐसी होती है। तो इस तरह की कोई परिस्थिति अगर आपके सामने आई हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, और कुछ फिल्मों से जुड़ी बातें भी आप हमें बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी फिल्म है जिसने आपके मन में कई सवाल छोड़ दिए, या कोई ऐसी फिल्म भी हो सकती है जिसने आपके मन के सवालों को हल कर दिया हो कोई जवाब देकर। तो ये सारी बातें होंगी इस एक घंटे के दौरान। तब तक हम आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का पहला गीत। हालांकि आप सभी ने बहुत सारा अंदाज़ा तो लगाया है, कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए। आवाज़ किसकी है ये पहचानिए।

देख कबीरा रोया फिल्म का ये गीत मन्ना डे की आवाज में आप सुन रहे थे और हमारे साथियों ने ये भी बताया कि अनूप कुमार पर फिल्माया गया है ये गीत, तो बिल्कुल सही जवाब। वही हमारी एक साथी कहती है कि इतने सारे सवाल एक साथ, धीरे धीरे पूछिए सवाल। तो भाई एक साथ इसलिए हमने सारे सवाल आपसे कह दिए क्योंकि आप अपनी सुविधा अनुसार धीरे धीरे जवाब देते रहें, और अगर आपको चाहिए तो बीच बीच में तो हम अपना सवाल दोहराते भी रहेंगे। वैसे हमारे एक साथी ने कह दिया है कि उन्हें नापसंद आने वाले सवालों में से पुरुषों के लिए है उनकी आय और महिलाओं के लिए है उनकी आयु, ये सवाल पसंद नहीं आते। वैसे हम कहें कि तो इसका उल्टा भी हो सकता है भाई, महिलाओं से भी अब उनकी आय ना पूछी जाए और ना ही पुरुषों से पूछी जाए उनकी उम्र, तो ये सवाल तो बिल्कुल ही हमें छोड़ देने चाहिए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सवालों जवाब पर तो कई फिल्मों में गीतकारों ने गीत लिखे हैं, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन कार्यक्रम के अनुसार समय के अनुसार गीत शामिल किए जा रहे हैं। हाँ, तो इस गीत में पूछा गया कि कौन आया मेरे मन के द्वारे, एक सवाल था, लेकिन जब कोई हमारे मन के द्वारे या कहें कि घर के द्वारे तक आ ही जाता है तो हम पूछते हैं उससे सबसे पहले एक सवाल, और जब भी किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले भी वही सवाल पूछते हैं। कुछ ऐसा ही एक गीत है जिसमें किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, तो अगर आप वो गीत पहचान सकें तो बड़ी अच्छी बात होगी। और तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो कि शायद सभी के लिस्ट में है, और इस गीत में बोल किसके हैं ये आपको हमें बताना है।

0: शैलेंद्र का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे ससुराल फिल्म में।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, जिसमें सवाल जवाब का सिलसिला जारी हो चुका है और कई सवाल हमने आपने पूछे, ये कि ऐसे कौन से सवाल हैं जिनका जवाब आपको अब तक नहीं मिला, या ऐसे कौन से जवाब हैं जिनके सवाल आपसे पूछे नहीं गए, कौन सा सवाल ऐसा है जो कठिन लगता है और कौन से ऐसे सवाल हैं जो पूछे नहीं जाने चाहिए। अगर आपको पसंद ना हो तो आप जवाब न देने के क्या क्या तरकीबें लगाते हैं, और जब जवाब देने आपको पसंद नहीं आए तो कैसे जवाब वो थे जो आपको पसंद नहीं आते। वहीं हमने पूछा था कि कौन सी फिल्म है जिसने कई सवाल आपके मन में छोड़ दिए थे, तो इसके बारे में हमारे साथी ने लिखा है कि बागबान फिल्म ऐसी फिल्म थी जिसको देखने के बाद कई सारे सवाल मन में चल रहे थे। हमारे साथी लिखती है कि जिंदगी एक अनसुलझी पहेली है जहाँ हर मोड़ पर एक नया सफर हमारा इंतजार कर रहा है, कौन कब और कहाँ हमें मिल जाए ये कोई नहीं जानता, अनजाने रास्ते, अजनबी चेहरे और अचानक होने वाली मुलाकातें ही तो इस सफर को खूबसूरत और रोमांचक बनाते हैं, बस हर पल का खुले दिल से स्वागत करें। और हमारे साथियों ने, हमने तो ये गीत सुनवाया ही, एक सवाल मैं करूं एक सवाल तुम करो, इससे थोड़ा ज़्यादा ही संजीदा रूप में ले लिया और उन्होंने भी हमसे सवाल करने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि आप कहाँ थीं, क्यों नहीं आ रही थीं। इसी तरह से हमारे कई साथियों ने लिखा, एक साथी ने तो लिखा कि अमर अकबर एंथनी में जो माँ होती हैं, छोटा बच्चा तो उनके सामने ही रोता रहता है, तो उसे पहचाना क्यों नहीं उन्होंने, क्योंकि वो उसकी आवाज़ तो सुन पा रही थी। भाई, इन सवालों का जवाब तो हमारे पास नहीं है फिलहाल, लेकिन हम जो सवाल आपसे पूछेंगे उनका जवाब ज़रूर आपके पास है, ये हमें पता है। वैसे एक सवाल मैंने जो पूछा है आपसे, उसका भी जवाब आपने हमें दिया नहीं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या पूछते हैं। कुछ ऐसा ही एक गीत है जिसे किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया है। अगर आपको और भी ज़्यादा हिंट चाहिए, नहीं, देखिए जवाब आ गया। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, चलती का नाम गाड़ी फिल्म का ये गीत है। हमारे साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया और ये गीत हम आपको सुनवाएं, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाने वाले हैं एक दूसरा गीत जिसमें आपको ये बताना है कि इसे लिखा किसने है, और तब तक हम भी देखते हैं कि आपने क्या क्या सवाल हमारे लिए सामने रखे हैं।

जैनिता अख्तर ने लिखा इस गीत को। ब्लैक कैट फिल्म से गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में आपने सुना और एनदत्ता का संगीत था। कार्यक्रम सुरीला सफर चल रहा है इस वक्त विविध भारती पर और आप सवालों जवाबों के बारे में सोच रहे हैं। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें कही, कौन सा सवाल कठिन लगता है, कौन से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, इस पर बहुत से साथियों ने जवाब दिया कि मुझे ये सवाल हमेशा कचोटता रहता है। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि इस दुनिया में कोई अमीर कोई गरीब क्यों है, फिर यकायक गीत मेरे होंठों पर आ जाता है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। उसी तरह से हमारे साथी कह रहे हैं कि सैलरी के बारे में पूछना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत से लोग पूछते हैं तो उसका जवाब देना भी पसंद नहीं आता। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैथ्स के जो सवाल होते हैं वो बड़े कठिन होते हैं, वो ना पूछे जाएं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो कई सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे, कुछ तो डर के मारे भूल जाते थे। जब फिजिक्स वाले सर सवाल का जवाब पूछते थे तो डर के मारे नहीं बता पाते थे, आते हुए भी पता नहीं क्यों हम उनसे डरते थे, बाकी सब टीचर से मस्त आराम से बातें करते थे, मस्ती भी करते थे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आपने सवाल क्या पूछा, हम तो समझ नहीं पाए। तो ठीक है, फिर से हम आपको सवाल तो दोहराने वाले ही हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि धैर्य रखें, आज आप जिसे जवाब नहीं दे पा रहे उसे समय स्वयं जवाब देगा। वहीं हमारी एक और साथी ने लिखा कि कभी किसी स्त्री से कोई पुष्टि ही नहीं की जाती कि तुम क्या चाहती हो, मशीन के तरह घर के बाहर के काम करते रहती है परिवार के लिए, अगर आन पड़े तो कमाने भी लग जाती है, लेकिन सभी बातों में एक सवाल अधूरा ही रह जाता है कि तुम क्या चाहती हो। बिल्कुल, बहुत ही ज़रूरी सवाल आपने लिख भेजा, ये सवाल तो पूछा ही नहीं जाता जिसे ज़रूर पूछना चाहिए। वहीं एक और ज़रूरी सवाल है जिससे रोज़ाना हम दो चार होते हैं। हमारे साथी ने लिखा, मुझे रोज़ एक ही सवाल परेशान करता है कि आज खाने में क्या बनेगा, और जब लोग ये कहते हैं कि कुछ भी बना लो तो ये कुछ भी क्या होता है। वाकई तो ये कुछ भी क्या होता है, ये सवाल जो है इनके मन में चल रहा है, और खाने में क्या बनेगा ये भी इनके मन में हमेशा चलता रहता है। लेकिन मन में क्या चल रहा है ये तो तभी पता चलेगा जब आपका मनचाहा गीत हमारे गीत के साथ शायद मैच हो जाए।

गैम्बलर फिल्म से गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सुरीला सफर और सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। वैसे हमारे साथी कह रहे हैं कि बहुत सी बातें कह रहे हैं और क्या क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए उन पर हमारे साथी कह रहे हैं कि जब किन का जवाब नहीं देते बनता है। इस पर भी हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई जब पत्नी पूछे कि क्या बना कैसी लग रही हूँ तो उसका जवाब देना बड़ा कठिन होता है। वहीं वो कह रहे हैं कि जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, इस प्रश्न का जवाब भी अभी तक नहीं मिला। तो कुछ मुश्किल सवाल जवाब के बारे में तो इन्होंने लिखा। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि मेरे दो बेटे हैं और हरदम पूछा जाता है कि लाडला कौन है। ऐसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए क्योंकि माँ को अपनी संतान एक समान प्रिय होती है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब उम्र पूछा जाती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई भी अपनी उम्र खासतौर से लड़कियों से अगर पूछी जाती है तो ये सवाल

सही नहीं लगते। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कौन सा बच्चा प्यारा है जब पूछा जाए, या किसी ज़्यादा भाई बहन से ज़्यादा आपकी किससे ज़्यादा दोस्ती है ये पूछा जाए, या पूछा जाए कि कौन से गाने आपको पसंद है लता जी के, रफ़ी जी के, या किसी भी इस तरह से गायकों के नाम लेकर पूछा जाता है, या कौन सा फिल्मी गाना अधिक पसंद है, इस तरह के जो सवाल हैं वो बड़े मुश्किल लगते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि जीवन में इस तरह के सवाल जवाब, यानी कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों, ये बहुत होते हैं। दुख सुख के सुर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं जिसके पास हर सवाल का जवाब हो, बल्कि वो है जो ये समझ सके कि कुछ चीज़ों को वक्त के भरोसे छोड़ देना और इन सुरीले सफ़र का मज़ा लेना ही ज़िंदगी है। ना इब्तिदा की खबर है, ना इंतहा का पता है, ज़िंदगी बस एक सुरीला सफ़र है और तू ही मेरी रहनुमा है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से जवाब हमारे साथी लिख भेज रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए कि वो कौन सा ऐसा जवाब है, किस तरह का जवाब है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता। या एक और बात आप बता सकते हैं ये कि अगर ख़ुद से कोई सवाल पूछना हो, क्योंकि कई बार हमें ख़ुद से भी कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो, इस तरह के कई सवाल होते हैं, तो अगर आप खुद से कोई सवाल पूछना चाहें तो वो सवाल क्या होगा। मान लीजिए कि आज ही आपको अगर अपने आप से कोई सवाल पूछना है तो ये बताइए कि वो सवाल क्या होगा। और तब तक हम आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुना रहे हैं, क्योंकि भाई इतनी देर हो गई हम सभी को मिले हुए, लेकिन हमने तो आपसे आपका हाल ही नहीं पूछा। तो हाल पूछ रहे हैं ये गीत और आपको सुनवा रहे हैं। हमें ये बताइए कि इस फिल्म में नायक नायिका कौन थे।

फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, और इस फिल्म में नायक नायिका किशोर कुमार और मधुबाला इस गीत में नजर आते हैं। और हमारे साथियों ने तो इतनी सारी गाड़ी चला दी है सवालों की, उन्होंने तो हमसे ही सवाल पूछने शुरू कर दिए। भाई एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, जो गीत हमने सुनवाया उसका अर्थ ये थोड़ी था कि आप हमसे सवाल करते ही चले जाएं। देखिए आपके पास तो जवाब देने का ऑप्शन उपलब्ध है और आप देते रहते हैं जवाब। हमारे एक साथी ने कहा कि अज्ञात फिल्म ने बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में छोड़ दिए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं और सवाल पूछते हैं तो शब्दों से ज्यादा हमारी आवाज़ का लहजा और आंखों की चमक मायने रखती है। सवाल चाहे जो भी हो, अगर उसके पीछे सच्ची आत्मीयता है तो सामने वाला अपनी हर फिक्र भूल कर मुस्कुरा देता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी के दिए सवाल जवाब बहुत कठिन लगते हैं, ना तो सवाल समझ में आते हैं ना जवाब। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी घर में एक छोटी बेबी है, बच्ची है उनकी, और उनकी या उनकी नाती पोती वो हो सकती हैं, और वो जब सवाल पूछती हैं सवाल पर सवाल तो उस नन्ही परी के सवालों के जवाब देते देते थक जाते हैं, लेकिन उसके सवाल बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होते। लेकिन इसी तरह से तो वो अपने जान पाएंगी इस दुनिया को और आसपास के लोगों को। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बेसिर पैर बेतुका सवालों सवाल पसंद नहीं आते, परिचर्चा के विषय वस्तु से दूर अवांछनीय सवालों से इन्हें चिढ़ है। वहीं हमारे एक साथी तो ये पूछ रहे हैं कि आपकी ड्यूटी कितने घंटे की होती है, ये सवाल ज़रा छोटा सा ही है, ऐसा वो कह रहे हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब आप इबारत तैयार करते हैं तो उसमें बहुत कुछ सोच के आते होंगे, पर प्रोग्राम शुरू होता है तो सब कुछ अलग हो जाता है संदेशों के साथ, तो आप ये सब कैसे मैनेज करते हैं? तो भाई हम तो यही कहेंगे कि आप सभी का साथ मिलता है तो जो भी हम सोच कर आते हैं उससे ज़्यादा अच्छी हो जाती है सोच, और कार्यक्रम में आप सभी का सहयोग जब मिलता है तो कार्यक्रम भी बहुत अच्छा होता जाता है। तो आप सभी के सहयोग से ये सवाल जवाब जो हो रहा है, या कहें कि ये कार्यक्रम जब होता है तो आपका सहयोग भी पूरी तरह से होता है, तो 50-50% पार्टनरशिप पे चल रहे हैं हम, ऐसा कह सकते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, इसे वक्त पर छोड़ देना चाहिए, और वक्त इतना सटीक हल उसका निकाल कर जवाब देता ही है। वहीं हमारे एक और साथी कह रही हैं कि नाइट में भी आपकी ड्यूटीज़ होती हैं क्या, जैसे रेलवे में होती हैं? और हमारे एक और साथी पूछ रहे हैं कि भाई आप कौन तय करता है कि कौन आएगा सुरीला सफ़र में? तो ये विविध भारती से जुड़े जो भी सवाल आपने पूछे उसका जवाब तो आपको यहीं आकर मिलेगा, तो अगली बार जब आप आएँ तो यहाँ की सैर पर आइएगा और आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ये सवाल भी अक्सर जहन में आता है कि जीवन एक सफ़र है तो मृत्यु क्या है? भाई बहुत ही गहन सवाल है ये, और इसके बारे में जवाब ढूंढते ढूंढते कई दार्शनिक बहुत सी बातें लिख भी गए हैं, बट इस पे तो सोचना बहुत ही गहराई से सोचना पड़ सकता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नए जोड़ों के से साथी अंतरंगता की बातें अक्सर पूछते हैं, वो नहीं पूछने चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि शादी के लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो सवाल ये है कि शादी के लड्डू ही क्यों, कड़वा करेला भी तो हो सकता है। तो भाई नेक्स्ट टाइम जब आपके आसपास किसी की शादी हो तो आप कहिएगा कि इस बार लड्डू ना बनाएं और बनाएं करेला, देखें आपकी बात अगर वो मानते हैं तो फिर इस कहावत को हम बदल भी सकते हैं, क्योंकि शादी में तो भाई लड्डू वड्डू ही मिलते हैं, मिठाई मिलती हैं, करेला तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। चलिए तो अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और इस गीत में आवाज़ किसकी है ये तो आप बताएंगे ही, साथ ही आप बताएंगे फिल्म का नाम भी।

जवानी दीवानी फिल्म का ये गीत आपने सुना, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ें। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि कोई भी बच्चे जब आपस में एक दूसरे से सवाल करते हैं कि मम्मी ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्या पापा, वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि एक सवाल पूछ ही लेता हूं, जन्म के समय आत्मा आई थी या देह परिवर्तन के समय आत्मा ही जाती है, तो ये सवाल है कि मन आया किधर से? और इस सवाल का जवाब हमारे पास तो नहीं है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सी बातें होती हैं जो नहीं पूछनी चाहिए, और इस फहरिस्त में हमारे एक साथी ने, उन्होंने अंग्रेज़ी में अपना जवाब लिखा है, तो उसे हम हिंदी अनुवाद करके आपको सुनवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी को भी, किसी भी युवा बच्चे जो होते हैं, लड़के होते हैं, उनके माता पिता से या उनसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि वो शादी कब करने वाले हैं, या जो नई नई इनकी शादी होती है, नवविवाहिता होती हैं, उनकी माओं से ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपकी बेटी कब माँ बनेगी, या फिर उनकी शादी, किसी की शादी से संबंधित सवाल नहीं पूछना चाहिए, और अगर उन्हें बुलाया गया है तो भी किस तरह से बातें नहीं पूछनी चाहिए, कि कभी भी कोई अगर कोई गर्भवती भी है तो उससे भी ये नहीं पूछना चाहिए कि गुड न्यूज़ कब दे रहे हैं, और इस तरह की बातें क्योंकि परेशान करती हैं जिनको भी, जिनकी भी संबंधित होती हैं परेशानी, उन्हें परेशान करती हैं, इसलिए आपको इस तरह के सवाल नहीं पूछना चाहिए। वहीं हमारे एक साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनको क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए, वो कह रहे हैं कि एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आसमान में उड़ने वाले बादल इतना सारा पानी कैसे लेकर उड़ सकते हैं, जिनमें पानी के टैंकर होते हैं जिसमें शहर और गाँव में बरसते हैं और पूरा गाँव शहर तर बतर हो जाता है। विज्ञान का सवाल है, जवाब हो तो ज़रूर देना। भाई इसका जवाब इतना बड़ा है कि इसका जवाब तो आपको विज्ञान की किताब का एक पन्ना भेज कर ही हमारे साथी दे देंगे। तो जिस भी साथी के पास वो पन्ना है वो उन्हें जरूर भेजें। और हमारे एक और साथी कह रही हैं कि कौन सा सवाल खुद से पूछना चाहेंगे, उसमें उन्होंने पूछा है कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं अपने काम ठीक से नहीं कर पा रही, क्यों नहीं कर पा रही हूं, इस तरह के सवाल वो पूछना चाहती हैं खुद से। तो हम उन्हें बस ये जवाब देना चाहेंगे कि आपको थोड़ा आराम करना चाहिए और खुद को लेकर थोड़ा नर्म पड़ना चाहिए, तो इससे आप जरूर अपने कामों को पूरी तरह से कर सकेंगी। और खुद को जज करना कुछ दिनों के लिए बंद कीजिए और अपने, आप ये सोचिए कि आप ज़रूर कर पाएंगी उन कामों को, शायद थोड़ी थकान हो, तो इस तरह से, इस जवाब से शायद

0: चंद्र सेना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, जिसमें बात हो रही है सवालों और जवाबों की। बहुत से ऐसे सवाल जिनके जवाब नहीं मिलते, या बहुत से ऐसे सवाल जिनसे हम चाहते हैं कि कोई हमसे पूछे ही ना, या जिनके जवाब हम देना ही नहीं चाहते, और कुछ ऐसे सवाल जो हम खुद से पूछना चाहते हैं। इन सभी के बारे में आपने लिखा है। हमारे एक साथी कहते हैं कि मैं क्या किसी के सवाल का जवाब दूंगी, मेरी तो फोन की बैटरी जवाब दे चुकी, बिजली धोखा दे गई और फोन की मानो चंद

सांसें गिनती की रह गई और अन्य कोई साधन भी उपलब्ध नहीं कि फोन चार्ज हो सके। बस अब श्रवण कुमार बनेंगे वक्ता बाबू तो बनने से रहे, सुनेंगे रेडियो सेट पर शेष प्रोग्राम। शुक्र है रेडियो की बैटरी अपने पूरे शबाब पर है। चलिए अच्छी बात है कि आप कार्यक्रम में किसी भी तरह से शामिल तो हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि स्कूल के समय में गणित का सवाल जब सबसे खतरनाक लगता था, 8वीं क्लास में 0 नंबर मिले थे और बहुत पिटाई हुई थी। उसके बाद पूरी नौकरी में गणित का ही काम करना पड़ा, लेकिन गणित आज भी नहीं आती। भाई तो हमारा सवाल तो यही कि गणित नहीं आती फिर भी गणित का इतना काम कैसे कर लेते हैं आप। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज आपके सवाल जवाब ने बचपन में पिताजी की मार याद दिला दी है। जब वो गणित पढ़ाते थे तो सवाल का जवाब पता होता था, लेकिन उनके आगे जुबान नहीं खुलती थी। जब एक थप्पड़ पड़ते तो झट से जवाब देता था। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब कोई घर का सदस्य बाहर जा रहा हो किसी महत्वपूर्ण काम से तो कहाँ जा रहे हो, इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए। और हमारी कौर साथी ने कहा, अगर मैं खुद से सवाल करती हूँ कि मैं सबके लिए जीती हूँ, खुद के लिए कब जी पाऊंगी, जिसमें कुछ पल मेरे बिल्कुल अपने हों, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है। भाई इस इम्पॉसिबल को आप पॉसिबल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कुछ वक्त अपने लिए निकालने लगेंगे तो वाकई घर के सदस्यों को भी इसकी आदत होती जाएगी और आप वाकई अपने लिए वो समय निकाल पाएंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही आप इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाएंगी। लेकिन इससे पहले हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का ये गीत, और ये गीत सुनकर हमें आप बताइए कि किसका संगीत है, फिल्म का नाम भी।

बुढ़ा मिल गया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे और अर्चना की आवाज़ें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज की भारत एक ऐसे तथ्य को उजागर करती है जिसकी तलाश में सारी जिंदगी हम व्यतीत कर लेते हैं और मिलकर भी हमें वो चीज़ नहीं मिलती। हम पूरी जिंदगी या तो अपने सवालों के लिए सही जवाब ढूंढते रहते हैं या फिर मिले हुए अनुभवों को सही साबित करने के लिए नए सवाल खड़े करते रहते हैं। राहों में इन सवालों का भटकना भी इस सफर का एक खूबसूरत हिस्सा है। सवाल और जवाब के ताने बाने से इंसानी जहन की कश्मकश को बड़े ही सरल मगर गहरे शब्दों में पिरोया है। वहीं मारिक और साथी कहती हैं कि सवाल जवाब तो जब तक जीवन है चलते ही रहेंगे। हाँ, कुछ सवाल के जवाब हमेशा अनुत्तरित रह जाते हैं। दरअसल कभी-कभी किसी सवाल का जवाब ना मिले, उसी में बड़ी खूबसूरती छिपी होती है। हर सवाल का जवाब मिल जाए तो जिंदगी में फिर रोमांच ही खत्म हो जाए। जिंदगी के सवाल जवाब को जितनी गंभीरता से लोगे उतनी ही पीड़ा होगी। जीवन का सबसे निश्चल पक्ष है जो जैसा है वैसा ही ग्रहण करो, मगर सवाल जवाब भी करते रहना चाहिए क्योंकि इससे जीवन में जिज्ञासा बनी रहती है। वहीं हमारे और साथी कहते हैं कि आज की भारत जीवन केवल सवालों और जवाबों का गणित नहीं है। जीवन में कई मुलाकातें, घटनाएं और रिश्ते बिना किसी पूर्व योजना के बनते हैं। कई प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं, कई उत्तर समय के साथ स्वयं मिल जाते हैं। इसलिए हर बात को तर्क और उत्तरों में बांधने के बजाय जीवन के रहस्यों, संयोगों और अनुभवों को स्वीकार करना चाहिए। एक और साथी कहते हैं, सवालों जवाबों में उलझी जिंदगी आज आखिर मुकाम पर पहुंच चुकी है। तमाम सवाल अधूरे रह गए जिनके जवाब हमने खोजे ही नहीं और अपनी जिंदगी को तबाह करते चले गए। कुछ मजबूरियां थी जो कह रही थी कि जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, फिर सवाल जवाब में उलझे तो अच्छा होने के बजाय और बुरा हो सकता था। आज सवाल जवाब की बातें चली तो वो दिन याद आ गए कि एक कंपनी में सर्वे सर्वा था और कुछ लोग बेईमानी में शामिल होने का भरसक प्रयास किए। मैं उनके साथ नहीं गया। आज उन्हीं बेईमान लोगों के हाथों कंपनी की बागडोर चली है और हम सब कुछ छोड़कर घर में बैठ गए हैं। तो ये बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी हैं जिसमें बहुत सी उनके मन की गूढ़ बातें शामिल हैं। वहीं मारिक साथी का कहना है कि रोज़ अपने दिल से एक सवाल पूछते हैं कि क्या हमारी वजह से आज कोई मुस्कुराया। अक्सर जवाब हाँ में होता है पर कभी कभी ना में भी होता है। तो हमारी कौर साथी ने कहा कि जिस सवाल का टेढ़ा जवाब दिया जाता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कोई भी टेढ़ा जवाब देता है, बदतमीजी से बात करता है तो अच्छा नहीं लगता। एक और साथी कहती हैं कि सवाल जवाब के बारे में उन्होंने लिख भेजा है कि जिंदगी वाकई इन कब कहाँ कैसे की उलझनों से कहीं ऊपर एक अनसुलझा खूबसूरत सफर है। कभी प्रश्न आईना बनकर हमारा असली रूप दिखाते हैं, कभी बादल बनकर मन के आकाश को नया आकार दे जाते हैं। कुछ सवालों को उत्तर चाहिए पर कुछ सवाल बस महसूस किए जाने के लिए होते हैं। अक्सर इन्हीं अनुत्तरित प्रश्नों की चुप्पी में जीवन की सबसे गहरी सीख छुपी होती है। अतः सवालों जवाबों के अंतहीन चक्र में उलझने के बजाय जिंदगी का असली मजा लीजिए तो अनजानी राहों की खूबसूरती को महसूस करने और हर पल को बिना किसी शर्त के जीने में ही जिंदगी का मजा छिपा है। और अब आपको कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनवाते हैं। बताइए किस फिल्म का है।

0: 5 tons of essential medicines to Kabul. The External Affairs Ministry said that it reaffirms the country's enduring commitment to providing humanitarian assistance for the well-being of the people of Afghanistan. In cricket, India was 70 for 1 in 8.1 overs against Afghanistan on the second one-day international of the three-match series in Lucknow. Early, Afghanistan won the toss and elected to field first. Shubman Gill-led men in blue are currently leading the series 1-0 and will aim to clinch the series in today's clash. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% up in the afternoon session today. The Sensex rose 225 points to 77,033, while the Nifty advanced 66 points to 24,056 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. G7 leaders adopt declarations on global stability, security cooperation and efforts to counter transnational organized crime. Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avignon, France, to reach Paris this evening as part of his visit to France. Defence Minister Rajnath Singh says India's sovereignty non-negotiable, cites surgical strikes, Balakot and Operation Sindoor as decisive actions against terrorism. India's defence production soars to record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26. Surges 110% since 2020-21. Security forces intensify enforcement and counter-insurgency operations across Manipur. 3 militants arrested, 26 illegal bunkers destroyed. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and Afghanistan underway in Lucknow. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताज़ा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के

0: पित किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
1: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओस के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्यवाहियों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात 53 अरब डॉलर मूल्य का था।

0: दे आर नाउ कंसिस्टेंटली रैंकिंग इन दी।
1: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात 53 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
0: ग्रोथ रेट हैज बीन वेरी गुड।
2: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
3: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
2: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
4: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
2: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
5: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिर

0: 78.66 डॉलर हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा, सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आजाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: जोरू का भाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। तलत महमूद की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, जयदेव का संगीत।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: जानिसार अख्तर के बोल आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में सी रामचंद्र का संगीत फिल्म यास्मीन के इस गीत में आपने सुना।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

0: वचन फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज थी, प्रेम धवन के बोल, रविशंकर का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नकमे। आइए सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में CID फिल्म से ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

गीता दत्त की आवाज में सीआईडी फिल्म का ये गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत। अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं श्री 420 फिल्म से गीत। शैलेंद्र ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की। इस गीत को सुनिए, मुझे दीजिए इजाजत।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी, आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी, आपको और सुनने वाले हमारे सभी सखियों और सखा भाइयों को बहुत ही प्यारा सा हरा भरा खिलखिलाता मुस्कुराता सा नमस्कार।
1: क्या बात है, ये मुस्कुराता नमस्कार से लग रहा है कि मुस्कुराहट खिल जाएगी सबके चेहरे पर, वरना तो गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग बस उफ, बहुत गर्मी है।
2: इसीलिए हमने धरती बोला,
1: धरती तप रही है, धरती गर्म हो रही है।
2: बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, प्रकृति में बदलाव हो रहा है, तो उसकी मार तो सभी लोग झेल रहे हैं देखिए। और उससे निपटने के लिए हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस जो है उस पर चर्चा करेंगे।
1: मंजरी जी, हम कहीं जब बाहर जाते हैं, अपने शहरों से महानगरों से बाहर निकलते हैं, तो हरे भरे पेड़ हमें लुभाते हैं, जंगल हमारा मतलब मन मोहते हैं और हम ठहर जाते हैं। लेकिन वहीं पर दूर दूर तक अगर सूखा दिखता है, कहीं कोई पेड़ नहीं है, बंजर धरती दिखती है, तो मन थोड़ा खिन्न होता है ना।
2: बिल्कुल।
1: तो हमें क्या करना चाहिए वहाँ पर हरियाली रोपने के लिए? कुछ निजी स्तर पर कोशिशें करनी चाहिए। बहुत सारे लोग मुहिम चलाते हैं हरियाली को, धरती की हरियाली को बचाए रखने के लिए, जाते हैं रस्तों में तो बीज ढेर सारे ले जाते हैं और बीज बोते हैं, फेंकते हैं जगहों पर जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं। तो ये सब हम सब भी कर सकते हैं।
2: बिल्कुल कर
1: और
2: सकते हैं।
1: घर के आसपास तो ये काम हम कर ही सकते हैं।
2: बिल्कुल। और हम लोग जब इस विषय पर और बातें करेंगे और

0: चर्चा करेंगे। तो आपने जो कहा है वो बहुत सही है बात है, ऐसा हम लोग सोचें तो हमारी धरती का कोना कोना हरा भरा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही हमारा जो अगला विषय ममता जी वो बता देते हैं कि शब्द हमारा विचार आपके, इसमें हमने आज लिया है प्रोत्साहन शब्द। तो इस पर हमारे सभी साथियों ने लिखकर भेजा भी है और जो सुन रहे हैं वो भी लिखकर भेज सकते हैं।
1: किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं, खासतौर से बच्चों को, बच्चों को प्रोत्साहन की बहुत जरूरत होती है, न कि ये तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें वो नहीं आता है। ये तो प्रोत्साहन की जरूरत बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी पड़ती है। अगर कुछ किसी से काम करवाना है तो हम जरा तारीफ कर देते हैं और कहते हैं कि अरे आपको ये काम बहुत अच्छा आता है, आप तो बहुत एक्सपर्ट हैं। तो ये आप क्या करते हैं, मतलब हम श्रोताओं से पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं जब आपको प्रोत्साहित करना होता है, तो किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कौन से वाक्य प्रयोग करते हैं
0: और माएं बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करती हैं ना,
1: और उसका असर क्या होता है ये भी बताइए। कहीं कई कोई घटना है कि आपने किसी को प्रोत्साहित किया और काम बन गया, वो भी बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, है ना।
0: और डायरी लिखने की आदत बड़ी खूबसूरत सी आदत होती है, तो आप लोग कितना लिखते हैं वो भी बताइए।
1: पूरा मन उड़ेल देते हैं
0: जी,
1: क्योंकि दिल में जो कुछ भरा है गागर वो सारा उड़ेल देना है, मन में जो सागर भरा हुआ जी, वो गागर में उड़ेल देना है। तो डायरी आपकी ऐसी दोस्त है कि डायरी से बहुत कुछ बातें कर सकते हैं। कई बार हम डायरी में वो लिख सकते हैं जो किसी से कह नहीं पाते हैं, कहना चाहते हैं लेकिन एक संकोच होता है, अरे लोग क्या कहेंगे, इसका क्या मतलब निकालेंगे। कई बार अनबन होती है आपस में, रिश्तों में दरार आती है, कई बार बहुत खुशी के लम्हात होते हैं, तो ये सब कुछ हम डायरी में अंकित करते हैं। अब ये हम सब करते हैं, हमारे श्रोता क्या करते हैं वो अपने विचार हमें बताएं कि डायरी लिखने की जो आदत है वो उनकी कितनी आदत है और आने वाली पीढ़ी को डायरी से कितना कितनी दोस्ती कराई है ये भी बताएं।
0: उनके लिए तो मोबाइल ही डायरी हो गई है।
1: ठीक है, तो मोबाइल की डायरी में एक नोटपैड बनाएं और उसमें भी डायरी लिख सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: वो भी एक जरिया है, क्योंकि आप जबरदस्ती कागज कलम तो नहीं पकड़ा सकते।
0: ये बात तो सही है, लेकिन जो मजा कागज और कलम है डायरी में है वो मोबाइल में नहीं है। तो देखिए अगली बात हम करने वाले साड़ियों का संसार में, आज मैंने बांधनी साड़ी जो राजस्थान और गुजरात में काफ़ी बनाई जाती, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब विषयों से पहले, चर्चा करने से पहले गीत
1: सुनते हैं और श्रोताओं को, क्योंकि इंतज़ार होगा गीत का और हमें इंतज़ार है कि डायरी वाली जो बात है उसका कोई किस्सा, कि कोई डायरी यादगार डायरी है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ घर परिवार की, कई बार अपने राष्ट्रीय स्तर की डायरी बहुत चर्चित हो जाती है, किताब की शक्ल में आती है डायरी, तो वो भी आप बता सकते हैं कि क्या आपने कोई ऐसी किताब पढ़ी है जिसमें जो डायरी की शक्ल में लिखी गई है। फिलहाल ये गाना

0: पवन दीवानी न माने डॉक्टर विद्या फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन का संगीत था। भाई मोबाइल की दुनिया से बाहर आई है मंजरी जी,
1: देखिए
0: श्रोताओं की टिप्पणियों में खो गई है पता है।
1: ममता जी देखिए उधर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब उनके विषय जो संदेश लिखते हैं उनको भी हमें वहाँ से निकाल के लाना है अपने पास और आपको भी देना है, तो उधर उलझे हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने मेरा दिमाग लगा हुआ है कि आज जो हम बात करने वाले हैं विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के बारे में, तो देखिए धरती पर जो हरियाली है उसकी सुंदरता को चार चांद जो है वो हरियाली ही पेड़ पौधे ही लगाते हैं और इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी को जो भोजन मिलता है या पानी औषधियाँ फल फूल सब इन्हीं वृक्ष पेड़ पौधों के द्वारा ही तो मिलता है ना ममता जी।
0: बिल्कुल सही बात है, प्रकृति है तो हमारा वजूद है, इसके बिना जीवन कुछ है ही नहीं, अधूरा है। हमारे पूर्वजों ने जो प्रकृति को संरक्षण के लिए जो कोशिशें की है उसका ख्याल हमें भी रखना चाहिए। असंख्य जो पौधे उन्होंने लगाए हैं पेड़ के रूप में फलित हो रहे हैं, जो जैसे आम है जामुन है और तरह तरह के पेड़ हैं, और खेतों में जो फसलें उन्होंने उगाई हैं और वो खेत अब आज भी लहलहाते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बाग और खेत चले आ रहे हैं। लेकिन हमारी क्या भूमिका होती है उसे उपजाऊ बनाए रखने के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें भी अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए। आधुनिकता की दौड़ में इस कदर हम भागे जा रहे हैं कि सोचते भी नहीं कि शहरों के नवीनीकरण से जो धरती है वो चोटिल हो रही है, जंगलों में पेड़ की कटाई हो रही है, खेतों को शहरी विकास के चक्कर में खत्म किए जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ेंगे ये आज ही सोचना होगा हमें, वरना जो धरती की उर्वरा क्षमता है वो नष्ट हो जाएगी, बची नहीं रहेगी।
1: बिल्कुल सही बात है। और जब क्या कहते हैं कि जब धरती जो उपजाऊ शक्ति खो देती है तो उसमें ना भी आप पेड़ पौधे लगाने की सोचिए उसमें से कुछ भी निकलता नहीं है, तो वो स्थिति बहुत हृदय विदारक हो जाती है। और जो प्रकृति है तो हमारा वजूद भी उसी से है, क्योंकि उसके बिना जीवन बिल्कुल संभव नहीं है कहा जाए। और इस दिन की जो मनाने की शुरुआत है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में की थी, जब उसने मरुस्थलीकरण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया और इसलिए एक मुहिम चलाएगी और विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल 17 जून को मनाने के विषय में सोचा गया था।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और इस दिन की घोषणा 30 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। उस दिन के बाद जब मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का मसौदा तैयार किया गया था, जिससे बंजर होती भूमि, भूमि के क्षरण और सूखे के वैश्विक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1995 में से ये दिवस घोषित किया था और तब से ये प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य भी है कि हम उन जगहों को पर भी ध्यान दें जहाँ पर सूखा है, तो वहाँ पर पेड़ पौधे लगाने का सोचें और साथ में वहाँ पर पानी हम कैसे उनको देंगे इसकी भी व्यवस्था पूरी तरह से करनी चाहिए।
0: बिल्कुल, सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा अगर नहीं होती है तो वहाँ सूखा पड़ता है। कृषि, पशुपालन और जैविक विविधता और मानव जीवन पर बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन जो सूखे प्रदेश हैं जहाँ पर हम अपने हाथ से जो हरियाली रोप सकते हैं वो मुहिम हम चला सकते हैं।
1: बिल्कुल। और ममता जी, जो जो हमारे जो खेत वगैरह होते हैं उसमें खाद का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, जो प्रकृति के द्वारा जो बनाते हैं खाद, पत्ते गोबर वगैरह से डाल के जो खाद बनाई जाती है उससे ज़्यादा अच्छा रहता है पेड़ पौधों को उगना।

0: लेकिन उसकी जगह रासायनिक खाद का भी उपयोग करने लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनकी पैदावार पर, फसलों पर असर तो पड़ता ही पड़ता है। और जैविक खेती को अगर अपनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और साथ में वर्षा का जल, जब वर्षा बरसती पानी का मौसम आएगा तो हमें जल संचय कैसे करना है उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए कि तालाब बनवाना है, कुएँ हैं, बावड़ी, इस तरह की चीज़ों को हमें बनाना चाहिए।
1: पानी को बचाने के लिए और जल संरक्षण के लिए बहुत अच्छा उदाहरण होता है जब हम पहाड़ों की ओर जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ग्रामीण इलाके हैं पहाड़ों पर, जो छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने स्विच ऑन किया और गीज़र चालू हो गया, स्विच ऑन किया पानी शुरू हो गया। तो वहाँ हमने देखा है कि टपरी बनी है, मान लीजिए छोटी छोटी चाय की दुकान है या कुछ समोसे बिक रहे हैं, बन रहे हैं, छोटी सी टपरी बनी हुई है, तो टपरी के नीचे बड़े बड़े बकेट रख दिए जाते हैं, बाल्टियाँ या ड्रम। तो जब बारिश होती है, क्योंकि पहाड़ों पर तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और कब होती है ये बिल्कुल तय नहीं होता, अचानक बारिश अचानक धूप हो जाती है, तो वो लगा रहता है, बाल्टी रखी रहती है, बारिश हुई तो वो जो बारिश का पानी है उस बाल्टी में इकट्ठा होता है। तो हमने कई बार पूछा भी लोगों से, तो उनका यही कहना है कि ये पानी हम इकट्ठा करके बाकायदा इसका उपयोग करते हैं और पानी एकदम स्वच्छ होता है, क्योंकि उधर पहाड़ों की ओर गंदगी कम होती है, तो ना के बराबर होती है जो एकदम जहाँ पर लोगों की पहुँच नहीं है, वहाँ तो बिल्कुल नहीं कूड़ा कचरा दिखाई देता है। तो ये सब हम अपने घर आंगन में भी कर सकते हैं, जो आंगन वाले घर हैं वहाँ हम कर सकते हैं।
0: अपने आप याद कीजिए कि हम लोग के घरों में भी ये चीज़ होती थी कि बारिश के पानी के लिए मतलब अपना लगा दी, बाल्टी वगैरह रख दी, बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं छत से वो आ रहा है पानी उस जगह से, ढलान से, तो वहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो बर्तन धोने, फर्श धोने, इन सब के काम
1: बचपन में। तो खेल खेल में भी पानी इकट्ठा किया जाता था, छोटे छोटे बर्तन रख दिए जाते थे, देखते हैं किसके बर्तन में पानी ज्यादा इकट्ठा होता है। और ये कहा जाता था कि बादल हम पर ज्यादा मेहरबान है, पानी हमारे तसले में ज्यादा भर गया।
0: और हम बच्चे तो छाता उल्टा कर देते थे।
1: तो ये जो खेल खेल में पानी इकट्ठा करने की आदत है, ये आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना चाहिए कि पानी का उपयोग किस तरह से करें। बहुत सारे लोग हैं कि नल खोल देते हैं, क्या नल खोल दिया तो पानी बह रहा है। तो जब धरती जहाँ बंजर होती है, धरती जहाँ जहाँ पर हरियाली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, जो सूखा है, वहाँ उनसे पूछिए कि क्या अहमियत है
0: बिल्कुल
1: हरियाली की और पानी की।
0: बिल्कुल, और इन सब चीज़ों के पीछे हम लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग घर बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, खेतों को नष्ट करते जा रहे हैं, वनों को काटते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी बहुत जिम्मेदार
1: अभी अभी
0: हैं।
1: आपने कहा कि खाद की बात कही थी ना मंजरी जी, कि जैविक खाद और रासायनिक खाद भी इकट्ठा करें। अभी अभी हेलो फरमाइश प्रोग्राम में एक श्रोता ने हमें बताया कि वो लोग गोबर से खाद बनाते हैं, मतलब गोबर एक गड्ढा बनाते हैं जहाँ पर गाय भैंस के गोबर इकट्ठा करते हैं, और ये गांव में होता है अमूमन। तो वो अपना अनुभव बता रहे थे कि वो इकट्ठा करते हैं और उसे ले जाकर खेतों में डालते हैं, और ये कॉल एक महिला का था
0: जी।
1: तो अब ये कृषक महिला भी हो रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और अब बहुत अच्छी बात ये होगी कि हमें गाना सुनवा दे अपने श्रोताओं को।

0: मंजरी जी, साड़ियों के संसार पर चर्चा हो रही है इन दिनों, और एक सेगमेंट है बाकायदा सखी सहेली में, तो आज हम चर्चा करेंगे। साड़ी वैसे भी पारंपरिक पोशाक है, और जब भी कहीं कोई फंक्शन होता है, कहीं घूमने जाना होता है, तो कौन सी वाली साड़ी पहनी जाए, बहुत पहले से चयन किया जाता है, साड़ियों का बक्सा खुल जाता है। आप क्या करती हैं?
1: मेरा भी खुल जाता है और उसमें देखते हैं, तरह तरह की साड़ियाँ देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जैसा मौसम होता है उस हिसाब से साड़ी पहनने का मन करता है। तो अगर जैसे बारिश का मौसम होगा तो लगेगा कि भाई हरा भरा मौसम रहता है, तो लगेगा कि भाई ऐसी साड़ी पहने जिसमें कलर बहुत चटक रंग हो। तो ध्यान तो मेरा तो सीधा इसी पर चला जाता है कि बांधनी की साड़ी, लहरिया की साड़ी, बंधेज वाली साड़ी पहना जाए। तो उनका पहनने का एक अपना अलग मज़ा होता है। और जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, तो इस समय बस याद आता है कि हल्के कलर पहने, आसमानी, गुलाबी और क्या कहते हैं, हल्का हरा धानी कलर पहने, और वो सूती साड़ियाँ हों जो बहुत अच्छी लगे। और सूती साड़ी पर अगर बांधनी का काम हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, फिर तो लगेगा ये भी पहन लेते हैं, है ना?
0: सही बात है।
1: तो जो कहते हैं ना ममता जी, बांधनी जो साड़ी है इसका जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है, प्राचीन काल से इसका समझ लीजिए चला आ रहा है। और बांधनी जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, बंध से लिया गया है, और बांधनी या बंधेज भी इसको कहा जाता है। साड़ियाँ ये जो है मुख्य रूप से भारत के गुजरात में जामनगर और वहाँ पर कच्छ, भुज और अहमदाबाद में बांधनी के सबसे बड़े और प्रमुख केंद्र हैं। और वहीं राजस्थान में भी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और सीकर अपने बेहतरीन कामों के लिए, बंधेज के कामों के लिए, बांधनी साड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और जब हम वहाँ जाते हैं तो देखते हैं दुकानों पर इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ टंगी रहती हैं, और साथ में जो महिलाओं को हम देखते हैं विशेष त्योहारों पर, तो वो उनके जो रंग होते हैं बांधनी साड़ियों के, तो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही बारीकी तरीके से बांधा जाता है। और इन साड़ियों को ममता जी टाई डाई तकनीक से हाथों के द्वारा धागों से बांधकर बनाया जाता है, और जिसके रंग कार जो है बेहद आकर्षक डिज़ाइन तैयार करते हैं। और बिल्कुल हाथ से और पतला पतला करके बांधा जाता है। कई लोग चने बांधते हैं, कई लोग दाल बांधते हैं, कोई छोटे छोटे पत्थर भी बांधते हैं उसमें डिज़ाइन अलग अलग तरह से देने के लिए।
0: मतलब तो काफ़ी मेहनत लगती है, और समय भी लगता है, ऊर्जा भी लगती है। बांधनी बनाने की प्रक्रिया बड़ी मेहनत वाली होती है। सबसे पहले साड़ी के लिए कपड़ा चुना जाता है, और कपड़े पर हल्के निशान बनाए जाते हैं ताकि डिज़ाइन बिल्कुल सटीक बने। कारीगर कपड़े की छोटी छोटी पोटलियाँ बना लेते हैं, उन्हें धागे से कसकर बांधते हैं। अब कपड़ों को रंगों में इसके बाद डुबोया जाता है। कई बार तो अलग अलग रंगों के लिए ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। रंग सूखने के बाद धागे खोले जाते हैं और सुंदर गोल, लहरदार या फूल जैसे डिजाइन दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल। और बांधनी साड़ी जो है वो कई प्रकार के कपड़ों पर बनाई जाती है, जैसे कि रेशम से आपको दिखेगी, जॉर्जेट, कॉटन, मलमल से भी बनाया जाता है, शिफॉन, क्रेप और सिल्क पर भी बांधनी का काम होता है। और राजस्थान में बांधनी में पारंपरिक राजस्थानी रंग और बड़े पैटर्न देखने को मिलते हैं, जबकि गुजरात

0: में बंधेज में बारीक डिजाइन और चमकीले रंग खास माने जाते हैं और ये बांधनी साड़ी विभिन्न रंगों और प्रिंटों में आती है और खोम्बी पटोरी घरचोला और चंद्रोखानी इसके अलावा ये काम साड़ी कुर्ता सलवार कमीज और चनिया चोली में भी पाया जा सकता है। यानी कि अब इसका जो काम है इसका वर्क है बहुत तरीके से बढ़ गया है, हर तरीके के उसमें कांच से भी सितारों से भी काम होगा और जरी के भी गोटे लगे रहते हैं तो बहुत खूबसूरत बना दी जाती है इन साड़ियों।
1: गुजराती बांधनी रेशम या कपास से बनी इस शैली में मोर होते हैं, फूल और हाथी जैसे आकर्षक पैटर्न बनाए जाते हैं। ये नवरात्रि और शादियों के दौरान बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। और राजस्थानी बांधनी में जैसे कि भरे चटक लाल पीला रंग लहरिया और जैसे चक्करदार रूपांकन होता है मोथरा जिसे कहते हैं, ये खास पहचान है राजस्थानी बांधनी की। और बाकी राजस्थानी बांधनी या गुजराती बांधनी के और जो प्रकार हैं और जो हमारे जो राजस्थान और गुजरात के श्रोता हैं वो भी बता सकते हैं कि क्या खासियत है साड़ियों की। भुज में खास तरह की बांधनी होती है, कच्छ के आदिवासी आकृतियाँ आमतौर पर काले और लाल रंग में जिनमें बारीक ज्यामितीय बिंदु होते हैं। मॉडर्न बांधनी समकालीन सौंदर्य बोध के लिए डिजिटल प्रिंट के इस्तेमाल किए जाते हैं और पेस्टल रंगों का उपयोग भी किया जाता है और कुछ फ्यूजन डिजाइन भी बनाई जाती है
0: जी। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि बांधनी साड़ी प्रमुख रूप से राजस्थान और गुजरात में पहनी जाती है और उसका डिजाइन बहुत ही सुंदर होता है, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और साथ में हमारे साथी और भी लिख रहे हैं कि बांधनी साड़ी भारत की सबसे प्राचीन और जीवंत डाई वस्त्र कलाओं में से एक है और मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान राज्यों में बहुत प्रचलित है और बिंदियाँ बहुत बारीक होती हैं और चटक रंग की होती हैं तो इसका जो है सांस्कृतिक महत्व भी है, त्यौहार उत्सव पर भी खूब पहनी जाती है।
1: और इन साड़ियों के साथ चूड़ी का भी कॉम्बिनेशन होता है,
0: बिल्कुल साज श्रृंगार तो बहुत ज़रूरी है
1: और उसी रंग की अगर चूड़ी पहन ली जाए तो फिर और लुक एकदम अलग आ जाता है। अब ये बात तो ये इस गाने के साथ हम जोड़ रहे हैं तो सुनते हैं ये गाना हरे कांच की चूड़ियाँ, फिल्म का नाम है

0: विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
3: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय सखियां सहेलियां और सखा सुन रहे हैं सखी सहेली कार्यक्रम और बात अब डायरी की चल पड़ी है। डायरी लिखना एक कला भी है और डायरी लिखने से तनाव दूर हो जाता है, मन हल्का हो जाता है और एक फायदा और होता है कि कई बरस बाद, जैसे मान लीजिए आज आपने कोई बात लिखी डायरी में, अब से 20 साल बाद आपकी आने वाली पीढ़ी उसे देखी

0: पढ़ेगी तो आज के आज क्या क्या हुआ वो जानेगी, और क्या माहौल था घर का, माँ डायरी लिख रही, पिता डायरी लिख रहे हैं तो बच्चे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं वो, तो वो एक जानकारी मिलती है और एक अलग अनुभव होता है।
1: बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल। डायरी जो लिखने की आदत है उसमें बहुत सारी बातें आपके जीवन की आ जाती हैं, उस वर्ष आपने, उस महीने आपने क्या चीज फेस करी अपने जीवन में, सुख दुख सब, हंसी खुशी सब कुछ उसमें रहता है।
0: सूखा पड़ा, बारिश हुई बहुत ज्यादा,
1: बिल्कुल,
0: और बहुत खुशगवार दिन था, शादी ब्याह, दुनिया भर की बातें आ जाती हैं।

0: ने आपने क्या चीज फेस करी अपने जीवन में, सुख दुख सब हंसी खुशी सब कुछ उसमें रहता है।
1: सूखा पड़ा, बारिश हुई बहुत ज्यादा, और बहुत खुशगवार दिन था, शादी ब्याह, दुनिया भर की बातें आ जाती हैं। अब हमारी एक सखी हैं जिन्होंने एक बात लिखी है, लिखा है कि 10वीं क्लास पास करते ही मुझे भी डायरी लिखने का खूब शौक चढ़ा था। एक युवा लड़की की डायरी में जो जो लिखा जा सकता था वो सब मैं रोज लिखती थी। जैसे कि आज शाम गजब की बारिश हुई, कल रात मेरे कमरे में घुप अंधेरा, एक जानी पहचानी खुशबू मेरे चारों तरफ फैल गई, मेरी आंखों में चमक सी जागी। स्कूल जाते समय एक लड़का रोज मेरा पीछा करता है, कल तक जो बेरंग था आज सब कुछ रंग बिरंगा लग रहा है। मेरे मन में एक कविता आकार ले रही है मगर शब्द साथ नहीं दे रहे। फिर मैंने कविता के ख्याल को झटक दिया। चाहतों से भरी जिंदगी में डायरी अपनी किसी सहेली की तरह होती है, और जब हकीकत के थपेड़े पड़ते हैं तो डायरी लिखने में बड़ा सुकून मिलता है। डायरी में फिल्मी गीत भी बहुत लिखे हैं पर अब डायरी नहीं लिखती। भाई क्यों नहीं लिखती हैं?
0: जो लिखा है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, मैं तो उसी में डूब गई थी।
1: अब सवाल ये है कि क्यों नहीं लिखती हैं?
0: लिखना चाहिए,
1: लिखना चाहिए बिल्कुल। हाँ ये जरूर है कि अगर कागज कलम साथ में नहीं होता है तो आपके पास बड़ा अच्छा यंत्र है, मोबाइल यंत्र। आप कहीं बाहर हैं, रस्ते में जा रहे हैं, ट्रेन में है, विमान में है, या फिर कार में, गाड़ी में, बस में, ऑटो रिक्शा में, तो वहाँ भी आप डायरी लिख सकते हैं। बोल के टाइप करने की भी सुविधा है तो।
0: जी बिल्कुल। अरे हमारे साथी लिखते हैं कि डायरी लिखना अच्छा भी है और कुछ हद तक नहीं भी अच्छा, इसलिए कि दिन भर की अच्छी बुरी बातों को लिख कर रख देना और मन को हल्का कर लेना। 6 महीने पहले का पन्ना पलटा पलटो तो लगता है उस समय की यही बात कितनी बुरी लगती थी कि, लेकिन समय की धूल ने उस पर पर्दा डाल दिया। डायरी लिखने से यादें जिंदा रहती हैं, बच्चे की पहली हंसी से लेकर पिता की आखिरी नसीहत मानो सब कुछ कह रही हो। लेकिन यही आदत तब बुरी बन जाती जब डायरी में सिर्फ दुख, नफरत और शिकायतें लिखते रहो, तो यही डायरी जिंदगी को दलदल बना देती है। वाकई सही बात आपने कहा है, और व्यक्ति उसी में धंसता चला जाता है। इसलिए हर दिन जैसा व्यक्ति व्यतीत होता है उसको स्वीकार करो और डायरी में लिखो, लेकिन इतना ध्यान रहे कि जब भी पिछले पन्ने पलटो तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिनों को बराबर सम्मान दो। उन पन्नों में सिर्फ सुख के ही पन्नों को महत्व ना दो। मुझे डायरी लिखने की आदत है पर व्यक्तिगत जीवन पर नहीं, सिर्फ अपनी कृषि में किस सीजन में कौन सी फसल बोई थी उसकी और शाप की हर दिन के आय और व्यय का हिसाब भी लिख।
1: कहा जाता है कि डायरी और संस्मरण ईमानदारी से लिखा जाता
0: बहुत
1: है,
0: ईमानदारी से,
1: और उसमें डायरी में जो भी बात लिखे सच लिखे, क्योंकि झूठ लिखने का कोई मतलब नहीं होता। नहीं। कुछ लोग डायरी भी आत्मश्लाघा में लीन होकर लिखते हैं अपनी तारीफ, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। सच को सच की तरह लिखें, झूठ को झूठ लिखें कि ये गलत था,
0: तभी तो उस समय का पता चलेगा कि आपने जीवन में क्या बिताया।
1: अब हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाना जी को डायरी लिखने का बड़ा शौक था। एक बार उनकी सीट पर बैठा तो उनकी डायरी हाथ आ गई। मैंने खोल कर देखी तो जो पढ़ा वो सच में गजब ही था। नाना जी का स्वतंत्रता संग्राम में जेल के दिन, उनके साथियों के साथ क्रांति के दिन, मैं तो एक्साइटेड हो गया था। और खोजा तो वो डायरी भी मिली जिसमें मेरी माँ की शादी के बारे में भी पूर्ण ब्यौरा लिखा गया था। उसे पढ़ा तो लगा जैसे मैं उन दिनों के लम्हों को जी रहा था। सच में डायरी लिखना बहुत बड़ी बात है, वर्षों बाद भी आपके पुराने दिन जीवित रहते हैं। आजकल जो मोबाइल में नोटपैड पर लिखना डायरी का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मोबाइल 5-7 साल में बदलना ही पड़ता है, जबकि डायरी आपके साथ है तो उसके बाद भी रहती है। बिल्कुल सही है, डायरी का तो कोई मुकाबला नहीं है, कागज और पन्नों का कोई मुकाबला नहीं है। वो कलम से जो बैठ के लिखते हैं
0: उसका
1: तो जो हौले हौले जज्बात निखर के आते हैं, कागज पर चमकते हैं, तो वो बात निराली होती है। लेकिन न से तो बेहतर है कुछ, तो इसलिए कि अगर आप लिखते ही नहीं तो कम से कम मोबाइल के नोटपैड पर लिख सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और जी डायरी अगर लिखने की आदत है तो बहुत अच्छी बात है।
0: बिल्कुल। और देखिए हमारी साथी लिखते हैं कि डायरी लिखना मैंने 8th क्लास से शुरू किया था। मुझे क्लास और घर की दिन भर की सभी घटनाओं को रोज लिखा करती थी और आज भी कायम है। सोने से पहले डायरी लिखकर बड़ा सुकून मिलता है। बहुत अच्छी सी बात इन्होंने लिखी है और मुझे लगता है कि आपको भी डायरी लिखने का शौक है।
1: भाई अगर डायरी लिखने से कई बार लिखने की ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है, तो इसलिए हम सबको डायरी लिखनी चाहिए। हमें आपको भी लिखनी चाहिए।
0: नहीं, लिखते
1: फिलहाल गाना सुनना चाहिए।

0: लिखे जो खत तुझे, खत लिखना भी एक आदत है और आजकल खत लिखने का चलन भी खत्म हो रहा है, तो उसे भी जिंदा रखना चाहिए। इसीलिए विविध भारती ने जिंदा रखने के लिए शुरुआत की है मन चाहे गीत की। मन चाहे गीत कार्यक्रम में फिर से चिट्ठियां आनी शुरू हो गई और एक दो नहीं बहुत ढेर सारी चिट्ठियां आनी शुरू हो गई हैं और अब फिर वही स्थिति हो गई कि कौन सी वाली चिट्ठी ले पहले, कौन सी वाली बाद में ले, तो बस वो आंख मूंद के उठाने वाली नौबत आ
1: गई। करना पड़ेगा
0: तो हमें चिट्ठियों से प्यार होता है इससे ये जाहिर है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना मुझे बहुत पसंद है, जब हम पन्ने पलट कर पढ़ते हैं तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। डायरी के अंदर मैंने कुछ पुराने पत्रों को भी संजो कर रखा है, उसे पढ़कर भी बहुत अच्छा लगता है। डायरी तो ज़रूर लिखनी चाहिए, मन में नए विचार भावनाएं जागृत होती हैं, दुख लिख देने से वो कम होने लगता है। डायरी हमारी मित्र है जो हमारे राज किसी से नहीं कहती है और हम पूरे विश्वास के साथ उसे अपनी सारी बातें कह देते हैं, लेकिन कई बार अपनी प्रेम कहानी जब लिखते हैं और छुपाते हैं तो वो जब उजागर होता है तो फिर वो दोस्त नहीं रह जाती है डायरी।
1: देखिए ममता जी, एक ऐसा भी उस समय भी ऐसा चला था, भाई लिखते तो थे ही डायरी सब लोग, लेकिन उसमें भी अपने दिल की बातें लिखते थे प्यार भरी।
0: आपने लिखी कभी?
1: तो ये बात तो बताई जा सकती है क्योंकि ये बात को रहने
0: उजागर राज को राज रहने
1: राज को राज ही रहने देते हैं। तो लेकिन हम वो ये कह रहे थे ममता जी कि जो उस समय भी डायरियां बड़ी डिजाइनर डायरियां आती थी और कुछ डायरियां ऐसी आती थी ममता जी उसमें लॉक होता था, तो मैंने खुद देखा है कि वो लॉक वाली रहती थी, उसमें वो स्पेशल खास
0: वो अभी भी आती है।
1: हाँ,
0: बस शौक होना चाहिए डायरी खरीदने का, डायरी लिखने का और डायरी तोहफे में देने का भी एक अलग मजा है।
1: सोचते हैं हम आपको दे देते हैं, आप मुझे। फिलहाल तो हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं, है ना?
0: बिल्कुल।
1: तो एक साथी लिखते हैं कि मुझे डायरी लिखने का शौक है। कोई आवश्यक कार्य नोट करता हूँ। 2005 में हमारे पूरे परिवार करीब 45 लोग और सहायक बस चलाने वाला रसोई मैनेजमेंट 6 लोग कुल 50 व्यक्ति ने बद्रीनाथ तक का 21 दिनों का प्रवास किया था। उनका सभी वर्णन मैंने लिखा हुआ है। आज भी कभी डायरी देखता हूँ और पढ़ता हूँ तो पूरा प्रवास के स्थलों, कहाँ रुके, भोजन का मेनू, सभी विवरण हैं तो नजर समक्ष पूरा प्रवास याद ताजा हो जाती है। बिल्कुल सही लिखा है आपने।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि आपका मन हल्का होता है।

0: डायरी लिखने से, वैसे मैं लिखती हूँ कुछ लेन देन की बातें, कुछ वैसी बातें जो मुझे याद रखनी चाहिए, यानी मैं पेन ज़रूर उठाती हूँ। आजकल स्लेट और पेंसिल पर सुरीला सफ़र के इबारत पढ़कर गाने और क्या कुछ कहना है लिखती हूँ। क्या बात है भाई, जब मैं लिखती रहती हूँ तो मेरी हेल्पर आ जाती है तो पूछती है कि चाची अब आप क्या पढ़ती रहती हैं, लिखती रहती हैं, तो मैं हंस के कह देती हूँ बस ऐसे ही कुछ कुछ बातें लिखते हैं और फिर मिटा देते हैं। और ये जो लिखी है कि लेन देन की बातें लिखते हैं, अभी भी बहुत सारे हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं जो बाकायदा कागज़ कलम लेकर जो घर की ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और उस लिस्ट को देते हैं अपने बच्चों को कि ले जाओ ये सामान लेकर आओ। हम अमूमन क्या होता है कि सीधे स्टोर में जाते हैं या मॉल में जाते हैं और चीज़ें दिखती हैं, सामान रखते जाते हैं, भरते जाते हैं, कई बार अनावश्यक चीज़ें आ जाती हैं।
1: हमें याद है ममता जी, जो आपने बुज़ुर्गों की बात की आदत बताई है, तो वो लोग इसलिए भी लिखते थे कि महीने में हमने कितना खर्च किया, अगले महीने हमें कहाँ पर कटौती करनी है, तो वो एक पूरा बजट बना के चलते थे। तो हमने भी अपने बड़ों से यही सीखा है, तो वो डायरी उस तरह का हम भी नोट बनाते हैं घर पे कि हम अगले महीने किस चीज़ को माइनस करते हैं, तो एक बजट बना के जब चलते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है, और गृहस्थी में तो बहुत ज़रूरी होता है।
0: पढ़ाई की बातें और गानों की बातें, संगीत की बातें, और तो और संगीत सरिता जो प्रोग्राम प्रसारित होता है आज भी, हम जब छोटे थे सुनते थे तो अपनी डायरी में संगीत सरिता से जुड़ी जो बातें होती, जानकारियाँ, वो डायरी में नोट करते थे और उन कार्यों के आधार पर अपनी बातें लिखा करते थे।
1: क्या बहुत तो अच्छी
0: ये हम सबकी आदत में शुमार है ये सब डायरी लिखना, लेकिन अब कहीं विलुप्त हो रहा है ये चलन।
1: बिल्कुल, लेकिन हमारे साथी लिख रहे हैं कि डायरी लिखना एक बहुत अच्छी उपयोगी आदत है, ये हम अपने दैनिक अनुभव, विचारों और भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने का अवसर देती है। डायरी लिखने से आत्मचिंतन की क्षमता बढ़ती है और हम अपनी गलतियों तथा उपलब्धियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। ये हमारी लेखन कला को भी निखारती है और स्मरण शक्ति को मजबूत बनाती है। कई वर्षों बाद जब हम अपनी पुरानी डायरी पढ़ते हैं तो जीवन के अनेक यादगार पल फिर से ताज़ा हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से डायरी लिखने की आदत को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तित्व विकास और मानसिक संतुलन के लिए अत्यंत लाभदायक है।
0: और साथ में संगीत सुनते रहें तो ये और ज्यादा लाभदायक होता है। सुनिए ये गाना।

0: छाया फिल्म का ये गाना था और डायरी लिखने पर हमारे श्रोता बहुत सारे टिप्पणियां लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अगर डायरी लिखने की बात है तो महात्मा गांधी जी के जो सचिव हैं उनको कैसे भुला सकते हैं, उन्होंने साल 1917 से 1942 तक नियमित रूप से डायरी लिखी थी जिसमें स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी के जीवन का सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज दर्ज है।
1: क्या बात है। और हमारे साथी लिखते हैं कि एक जमाना था मुझे भी डायरी लिखने की आदत थी जो मेरे ससुर जी से प्रेरणा मिली थी, अब तो डायरी लिखना छोड़ दिया है, भले ही अब डायरी लिखना छूट गया है लेकिन वो शौक आज भी दिल के किसी कोने में एक मीठी सी याद बनकर जिंदा है। डायरी लिखना छोड़ देने से शायद हम अपनी रोज की बातें दर्ज करना भूल गए हों लेकिन ये वो आदत हमें अपने विचारों को गहराई से समझना सिखा गई है।
0: मंजरी जी, एक हमारे श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि डायरी लिखने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पतिदेव डायरी लिखते थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें बहुत पसंद था डायरी लिखना। आज जयपुर में वो नहीं है, उनके न रहने पर जब मैं डायरी उठाकर देखती हूँ तो एक एक दिन का हाल दर्ज है, जब हम लोगों की लव स्टोरी चलती थी तब से लेकर जब बच्चे हुए, घर की कोई बात हमेशा उसमें दर्ज है, जो पढ़कर ऐसा लगता है कि पुराने सालों में ज़िंदगी पहुंच गई है। वाकई बहुत अच्छी आदत है डायरी लिखना।
1: बिल्कुल। और हमारे जो और साथी हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अगले विषय की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो हमने शब्द दिया था
0: प्रोत्साहन, डायरी लिखने के लिए एक तरह का प्रोत्साहन
1: भी था ये, और हमने प्रोत्साहन लिया है। तो ममता जी, प्रोत्साहन वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने, बेहतर करने और कठिन परिस्थितियों में भी हार ना मानने की प्रेरणा देती है। जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी निराश, असफलता और कठिनाइयों का सामना करता है, और ऐसे में यदि हम किसी का उत्साह बढ़ाने वाले शब्द, सहयोग या विश्वास मिल जाए तो वही प्रोत्साहन उसके लिए एक नई ऊर्जा बन जाता है।
0: बिल्कुल। अब प्रोत्साहन हमने डायरी के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि मैंने डायरी लिखनी चाहिए पर जब उसको उठाओ पढ़ो तो पुरानी यादें जिंदा हो जाती हैं, तो दुख कुरेद जाता है तो मैंने छोड़ दिया। आज भी कभी मन होता है तो लिखने बैठ जाती हूँ, बस अपने भाव सहेज लेती हूँ। ये तो दोनों सकारात्मक नकारात्मक दो पहलू होते हैं। तो आपके दुख, अगर दुख को पलटेंगे बार बार तो वो तो आपके मन में भी वो घाव ही पैदा करेगा।
1: बिल्कुल सही बात है। तो कुछ अच्छी बातें भी सोच के आप लिखना शुरू कर दीजिए, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोत्साहन, तो हमारे साथी भी लिख रहे हैं देखिए प्रोत्साहन पर, कि प्रोत्साहन वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और उत्साह का संचार करती है। जब कोई हमारा हौसला बढ़ाता है तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान लगने लगते हैं, और एक छोटा सा प्रशंसा का शब्द या विश्वास भरा साथ किसी के जीवन की दिशा भी बदल सकता है, हमारे साथी लिख रहे हैं। और प्रोत्साहन जो है वो केवल बड़े कार्यों के लिए आवश्यक नहीं होता है ममता जी, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बच्चे को पढ़ाई के लिए, खिलाड़ी को जीत के लिए, और कलाकार को अपनी कला के लिए, और कर्मचारी को बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। और जब किसी व्यक्ति के कार्य की सराहना की जाती तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अधिक मेहनत करने के लिए भी प्रेरित होता है। जैसे कि हम लोग करते हैं प्रोग्राम, तो अगर हमारी प्रशंसा होती है, प्रोत्साहन दिया जाता है कि इसको और अच्छे से करो, उत्साह बढ़ता है, तो लगता है कि नहीं अगली बार हम और अच्छा करेंगे। तो ये चीज हर के साथ होती है,
0: प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण साधन है, ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा भी देता है, इसीलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए और दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कई बार तो लोग बहुत अच्छे काम में भी कुछ न कुछ मीन मेक निकाल ही देते हैं कि अरे इसमें ये कमी रह गई, तो वो सही चीज़ बताने के, सही गलती की ओर इशारा करना अच्छी बात है, आपकी सही निंदा करना अच्छी बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से मीन मेक निकालना ठीक नहीं होता है, बल्कि काम को

0: प्रोत्साहित करना चाहिए।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि प्रोत्साहन एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जो किसी व्यक्ति के सोए हुए आत्मविश्वास को जगाकर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करती है। ये केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि प्रेरणा का वह पुंज है जो कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का संबल देता है।
0: और हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि बच्चों को प्रोत्साहन देने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी छोटी छोटी सफलताओं की भी सराहना की जाए। जब बच्चे कोई अच्छा कार्य करें, मेहनत करें, नई चीज़ सीखने का प्रयास करें तो उनकी प्रशंसा करें, उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि गलतियां सीखने का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास से सफलता प्राप्त की जा सकती है। माता पिता और शिक्षक बच्चों की बात ध्यान से सुने, उन्हें प्यार और सम्मान दें और उनकी रुचियों को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। इसीलिए तो स्कूल कॉलेज में पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है ना कि
1: बच्चों का उत्साह बढ़ जाता है उस तरह से। और हमारे एक साथी लिखते हैं, पौधों को और खेत में पानी देने से प्रोत्साहन मिलता है, वो फूलता फलता है। जी हाँ, प्रोत्साहन यानी एक स्फूर्ति, पुरस्कार या उत्साह भरे शब्दों में शाबाशी देना जो किसी व्यक्ति या समूह को खास काम करने या व्यवहार में कार्यक्षम और सकारात्मक बनने में प्रेरित करती है। याद रखें, पौधों को उतना ही खाद पानी दे जितना जरूरी है, अधिक मात्रा से वो मुरझा जाता है। अत्यधिक प्रोत्साहन से काम बिगड़ने की संभावना रहती है। बहुत गुड बात इन्होंने अच्छी बात लिख कर भेजी है। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए, दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए।
0: और अब देखिए, डायरी लिखने के लिए भी एक टिप्पणी हमारे श्रोता ने लिखी है कि बचपन में दी डायरी, आप सबने पूछा कि कोई ऐसी डायरी भी पढ़ी है, तो लिखा है कि बचपन में दी डायरी ऑफ यंग गर्ल पढ़ी थी जो एक किशोर वय बच्ची एनी फ्रैंक द्वारा लिखित बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति है। वे एक यहूदी थी और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड पर जर्मनी के कब्जे के समय अपने परिवार के साथ छिप कर रही थी। उन बिताए समय का वृत्तांत उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। तो डायरी किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है कई बार, और एक लंबा दस्तावेज होता है। अब प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं ये गाना।

0: मॉडर्न गर्ल फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजें थी। और अब बिल्कुल भी वक्त नहीं कि गाना सुनवाएं या कुछ बोले बतियाएं, तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: विजय भाई बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार।
2: नमस्कार। मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि रेडियो एक ऐसी चीज रही है बचपन से, कहीं आपके भीतर कुछ पैदा कर देता है। वो लगता है जैसे कि आप ही के भीतर से कोई आवाज आ रही है, और मैं यहाँ पे हूँ, मैं पहली बार आया हूँ रेडियो में।
1: अच्छा,
2: तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार।
1: लेकिन रेडियो के साथ में बतौर श्रोता आपका रिश्ता पुराना रहा है।
2: मैं जब छोटा था तो मुझे बड़ा शौक था रेडियो का, और पैसे चूंकि होते नहीं थे तो मैंने एक दो बार पैसे इकट्ठे किए और मैं रेडियो लेके आया था, छोटा पॉकेट रेडियो 110 रुपए, जो मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी। रात को मैं सुनता था उसको और वो सुबह खर खर करता हुआ पाया जाता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था, स्पेशली 10 बजे कोई कार्यक्रम आता था, छाया गीत, करेक्ट
1: जी, हाँ, और उसमें हम पुराने पुराने गाने
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: विद कमेंट्री पेश करते हैं। तो ये जो उसमें आप कमेंट्री वगैरह भी, क्योंकि उन दिनों तो हॉकी और क्रिकेट की कमेंट्री के लिए रेडियो बड़ा सहारा हुआ।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ।
1: और कौन कौन से रेडियो स्टेशन सुना करते थे विविध भारती के अलावा?
2: मेरे ख्याल से वही एक ज्यादा
1: पॉपुलर
2: हुआ करता था उस समय, और चूंकि जैसे क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक था तो कमेंट्री उस पे आती थी, वो सुनते थे। और टेलीविजन तो उन दिनों बहुत कम हुआ करता था, किसी के घर में पाया जाता था तो वहाँ इतने सारे लोग जमा हो जाते थे कि भाई चलिए टीवी देखा जाए।
1: आपके यहाँ टीवी कब आया पहली बार?
2: हमारे यहाँ आया 83 में, जब ये एशियाड हुए थे।
1: कलर आए थे, ब्लैक एंड व्हाइट था?
2: ब्लैक एंड व्हाइट।
1: अच्छा, चूंकि रेडियो की बात कर रहे हैं हम, और रेडियो के स्टूडियो में आए हैं आप, विविध भारती के स्टूडियो में आए, क्यों ना आपकी फरमाइश के गाने से?
2: मुझे एक्चुअली पुराने गाने यार बहुत बहुत अच्छे लगते हैं,
1: और विविध भारती के पास विजय भाई पुराने गीतों का जबरदस्त खजाना है।
2: तो मुझे एक मन्ना डे साहब का एक गाना है, ऐ मेरे प्यारे वतन, जो मन्ना डे साहब क्या क्या गाया है,
1: अद्भुत,
2: बाप रे। और
1: लेकिन जो कुछ भी गाया, कव्वालियां गाई, भजन गाए, रोमांटिक सॉन्ग्स गाए, और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने जो उन्होंने गाए हैं वो भी अद्भुत हैं। उनका गाना ये काबुली वाला फिल्म का गाना है, प्रेम धवन साहब का लिखा हुआ है और सलील चौधरी साहब का संगीत है। सुनवा दिया जाए?
2: बिल्कुल।
1: ऐ मेरे प्यारे वतन।

0: और इस समय सिर्फ वतन में ही नहीं, वतन के बाहर भी लोग आपको सुन रहे हैं। विजय भाई, ये मैं जानना चाहूंगा कि पहली विजय कब प्राप्त हुई आपको फिल्मों के लिए, काम मिला?
1: मैं दिल्ली में पैदा हुआ, पला बड़ा वहीं पे, और मेरी मतलब जैसे कहते हैं ना कि बचपन में पूछा जाता है कि भाई क्या बनेगा बच्चा बड़ा होके। तो मैं ऐसा कह लें कि मुझसे ये सवाल नहीं किया गया था कभी कि क्या बनेगा। मेरी समझ में हिंदुस्तान में इतने सारे परिवार हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है, जहां शायद ही कभी बच्चे से ये सवाल किया जाता है। इट्स अ वेरी ग्लैमराइज्ड क्वेश्चन एक्चुअली कि क्या बनेंगे आप। इस सवाल तक तो ध्यान जाता ही नहीं है, बहुत करोड़ों परिवार ऐसे हैं, वहां ध्यान कुछ और ही रहता है कि

0: खाना आज मिलेगा कि नहीं।
1: बस ये
0: तो सवाल मेरे ख्याल से पेट भरने के बाद शुरू होते हैं।
1: और कई परिवारों में तो थोपा भी जाता है कि हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, बच्चे से कोई नहीं पूछता है।
0: हाँ, और ये अनजाना अनदेखा कर देते हैं हम कि हम ही तय करते हैं कि बच्चा क्या करेगा। जैसा आपने कहा ना कि बच्चे से पूछा नहीं है, और बच्चे से पूछना भी नहीं चाहिए। बच्चा भी उस मेरे ख्याल से उस जगह तक पहुंचा नहीं कि जहां वो इस सवाल को झेल पाए। इतना बड़ा सवाल है
1: जी जी।
0: और छोटा सा बच्चा नन्ना वो भी जी रहा है, और ये सवाल उन लोगों का है जो एक्चुअली जी नहीं पाए, मुझे ऐसा लगता है। वरना ये सवाल कभी कोई सेंसिबल आदमी नहीं पूछेगा, क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना है। अभी तो जीने का समय है, अभी तो जी ले कम से कम,
1: रास्ते में है अभी तो।
0: मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्या बनूंगा। मैंने ये सोचा कि यार मेरा होगा क्या। जब धीरे धीरे हम बड़े होने लगे कि यार अब तो बड़े हो गए, पढ़ाई वढ़ाई खत्म होने वाली, अब तो फ्री की रोटी मिलेगी नहीं।
1: पढ़ाई में थे कैसे आप?
0: मैं यार ठीक ठाक था, मतलब मन मेरा लगता नहीं था पढ़ाई में,
1: मन कहीं और लगता था। मन मेरा

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Ipaya Akashvani Mukokchong Asnegi Kuhimani Ao Sangaser Sindong Pala La Yok Pa Angashugu Mabang Troga Kwa Dong Badan Kilimi Local Talent Sindong Angashitse Mizang Bupanong Limawa Pang Long Chara Changa Kanadan Pa Angati

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: असने ये कनाडा में आंगशियों को मापांग चौका को मिनी मेट्रो तुम बादन कलमी मापा पुशियर तुम्हारे उस आंगशिते। Advertisement for Staff Selection Commission Combined Graduate Level Examination 2026. Staff Selection Commission online form anuku kupa me mitsir kanu yitin zaka tang dashi tisadaklir

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हाय, आईआर समर्डम टीचर टपोर तनुर टाइन आचक क्रिस्टनली मादा चिंबियर सका मप्पा अखि इन्यक पामंगोर रोंग सिमी मर्डम उनसरनु उचिशर दमली ताशिता वर्दां असनु लुक्तिनु मुबत मिस अकिसंगर तिमसपा चिया अचमर उनसरा किबुंग दिम रक्सर दिरक्सर दंग यंग लुशर मली तन असनिमा तिया किजि अकमर
2: उन नया किजि उजिमबे नुक्तागर नुक्या माइसायु चिंगया सिनदां उनुक तागाते जर्दम अनमा चिंबिया सायु चिंगया साका उनुकिदां नुनुक तिचुंग माचिमुक मरमर उनुगी किचि इन्याकर नुनुकी मदतालियर नुनुक तिमली अना अदिनबाया तनांग मददराया नुकया माइसरा उनुकुदामलन शिचे याबुत्रा तालिया नुनुकी चिंबिबा अमा माबा अकी इन्याका सायु नुंगदां तन नुंगिबो नुनुकी आशिबा अमा अंगाचे
1: शिदक शिवगु लुक्तिनंग मुपत मिस अतुपा नुनुकी चिंबियर शिपाय अतुक तक्चर पिलिम तंगा उनुक नुमपो तंगा दित पा ताचुंग तरम जक अलिच लुक्ति लुंगजिम छ शिसा छ अकाचर सका नुनुकियांग उनुक ता आशिपा अमा मिलिटिटर तिरक साची नुनुक नुमियांग अतुकराया किमचुंग नुंग उ ताचुंग नुनुकी चिमबिमा किपुक नुंग तिरक सपो नुनुकी अतुक तक्चर
2: हाय नुनुकी किचिचिमबियर अचकची सिदाप तंग अमाय सका नुनुक चका ताइटरदम सयु सिनियरदम तशि तवरदम निनोक अचकी पि अचोंगदांग चिमबियर दांगाशि निनोक सिंगा तमतन बा मलि कचसर उनोक अची अचम मजोगरको साका निनोकी उनोक तंग तिचि तिचिमदा अशिराशि याकोंग नुंगि यमाय अचिमर किचिबा ई अचिमर ममदत या तंगा तयोकर मिलिरा तचिमरा मलिचि सरनु तमजोंग उजोंग सिदा मबुनशिर अमाय निनोकटाक अचितिजर उजुंबो कंगा सशिया यंगवा

0: हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नेदरलैंड्स के बीच खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
1: दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू द बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ द T20 क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड नेदरलैंड्स ऑफ द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। बिफोर दैट लिसन टू अ स्पेशल प्रोग्राम फर्स्ट बॉल 20।
2: फर्स्ट बॉल 20।
3: Having registered a comprehensive 60.

0: कोस्टा दे लीड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया।
1: जी हाँ बिल्कुल, और क्या ये सही फैसला हो सकता है, क्योंकि सिर्फ सरफेस को नहीं स्काई को भी देखा गया है। हमें बताएंगी मिस माथुर वैशाली, व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ गुड डिसीजन टू बॉल फर्स्ट अगेंस्ट इंडिया?
2: मुझे ऐसा लगता है क्योंकि नीदरलैंड के पास उतने अच्छे स्पिनर्स नहीं हैं, एंड देखा गया कि हालांकि इस पिच पे सबसे ज़्यादा विकेट स्पिनर्स को ही मिली हैं, एंड उन्होंने जो चेंज किया है वो है मीडियम पेसर का। एंड अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों पे पहले ही इस पिच के ऊपर वुमेन्स टीम

0: विकेट स्पिनर्स को ही मिली है एंड उन्होंने जो चेंज किया है वो है मीडियम पेसर का. एंड अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों पे पहले ही इस पिच के ऊपर वोमेंस टी ट्वेंटी ब्लास्ट 2026 में अभी हुआ है रिसेंटली एंड इसमें 26 स्पिनर्स पे बोल्ड विकेट्स मिली हैं एंड 17 फास्ट बॉलर्स को मिली है. तो मुझे लगता है कि स्पिनर्स को खिलाना ज़्यादा बेटर था बट यहाँ पे चेंज हुआ है तो बेटर हमारी इंडियन टीम के लिए बहुत बेटर है ये और हमारी शेफाली वर्मा के लिए एक महत्वपूर्ण चांस है क्योंकि वो मीडियम पेसर को जैसे हिट करती है हम सब बखूबी जानते हैं. एंड उसके बाद जब हमारी जेमिमा आती है तो वो किसी को टिकने नहीं देती है बॉलर को और वहाँ उसके बाद जो बारी संभालती हमारी हरमनप्रीत कौर तो वहाँ तक नौबत आनी नहीं चाहिए भारतीय टीम की क्योंकि ऊपर के ही बैटर आज इस लाइनअप को ख़त्म करके आ सकते हैं. और इस पिच पे खासियत और है यहाँ का जो स्कोर अगर हम देखें तो 150 तक गया है.
1: राइट, बट वुड दैट बी इनफ इज अ बिगर क्वेश्चन नाउ दैट इंडिया बैटिंग फर्स्ट. कर्नल भूपराज जी, India has also made a change, but that's in the bowling department. Arundhati Reddy is giving way to Nandini Sharma to be in the side. The young Nandini Sharma getting World Cup experience would be absolutely magnificent to watch. Having said that, India batting first. Do you also have a number in mind looking at that surface?
2: Actually, the last match we won very easily. But there were two concerns, you know. The first, as far as the batting is concerned, Shefali didn't score runs, nor did Jemima.
1: Right.
2: So it is good that we are batting first. At least both of them will get a good hit and get some confidence back before the next match against South Africa.
1: Which is the bigger one.
2: Yeah, that is the main, you know, sort of knockout match. Whosoever wins that match goes into the semi-final. That's the way things stand now. Now, as far as the change in the bowling is concerned, a second concern in the last match was that the fast bowlers did not bowl well. So there is a change in the fast bowlers, but I would have expected three fast bowlers to play in this match, keeping the wicket in mind.
3: Absolutely. और इस बीच हमारे साथ हमारे श्रोता भी जुड़ सकते हैं. हमारे नंबर्स हैं 011-2342-1084-2342-1085 और इसके साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं. नमस्कार. जी एक बार फिर से आपका स्वागत है. जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए. एक तो तब्दीली हो चुकी है, नंदिनी आई हैं, WPL में काफ़ी प्रभावित किया था. उसके अलावा शेफाली का ये जो साल रहा है, पिछले साल बहुत कंसिस्टेंट थी T20s में, लेकिन इस साल कंसिस्टेंसी मिसिंग रही है.
4: ठीक है, बट शी इज़ अ प्रूवन कस्टमर, काफ़ी रन्स बना चुकी है तो एंड शी इज़ गॉट क्रेडिबिलिटी और बैकग्राउंड उनका जो है. क्रिकेट में ऐसा नहीं होता कि आप एक सीजन रन नहीं किया कि उसको बिठा दो, और ऐसा नहीं होता. सो कंसिस्टेंसी, द सिलेक्टर्स हैव शोन कंसिस्टेंसी, टीम मैनेजमेंट ने कंसिस्टेंसी दिखाई एंड देयर आर सो मेनी मैचेस और क्रिकेटर्स नीड टू बी बैक्ड, स्पेशली समबडी लाइक शेफाली. दैट्स व्हाई द टॉस इज इंपॉर्टेंट. इंडिया गोइंग टू बैट बिग टेस्ट, बट अगेन एज हरमनप्रीत सेड, यू हैव टू स्टिक टू योर विकेट एंड प्ले टू द कंडीशंस.
1: एब्सोल्युटली. एंड कमिंग बैक टू वैशाली हियर, now Nandini Sharma will be seen in the ball in hand a little later. You mentioned 150 and you also mentioned that the spinners are the ones who are doing the talking here. So gone are the days where if you talk about England, it's the pacers who raise their collar up.
0: Maybe, but I can say ki यहाँ पे सबसे मेन है दोनों टीमें आज पहला मुकाबला खेल रही हैं T20 का. एंड इस मुकाबले को हम सेकंड मैच की तरह नहीं, एक जीत के मुकाबले की तरफ देखते हुए नज़र देख सकते हैं क्योंकि हम दोनों टीमें एक दूसरे के प्लेयर्स को नहीं जानती हैं. ODIs में खेला है उन्होंने, बट ये मुकाबला बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड जितना स्कोर हमारे बैटर और पार्टनरशिप बनेगी वो हमारे आगे आने वाले मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो साउथ अफ्रीका टीम के साथ आने वाला है. तो यहाँ की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है. शेफाली वर्मा का बल्ला चलना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जेमिमा का भी बल्ला चलना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अभी स्मृति का चल रहा है, क्योंकि पार्टनरशिप अगर बनती है तो ही रन आगे हमारे बढ़ते हैं और स्कोरबोर्ड पर दिखते हैं. तो ये अगर नंदिनी शर्मा की बात करें तो नंदिनी एक बहुत अच्छा चांस मिला है उनको खेलने का और रेड्डी की जगह पे उनकी अगर उनकी लास्ट मैच की अगर फील्डिंग की बात करें और

0: बॉलिंग की बात करें तो वो उतनी खास रही नहीं एज कम्पेयर टू आप इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड नंदिनी उस जगह को, उस स्थान को बखूबी निभाएंगी. और आज जिस तरह की पिच है तो देखा जाता है कि स्किट भी होता है इस बॉल, इस पिच पे, तो वो चीज़ देखने को भी मिल सकती है नंदिनी शर्मा से. एंड उसके साथ हमारी जो स्पिनर्स है, वो लाइनअप जो है हमारे स्पिनर्स का, वो काफ़ी अच्छा है. बॉलिंग स्ट्रेंथ हमारी बहुत अच्छी है, तो ये एक बेनिफिट है हमारी इंडियन टीम के लिए.
1: शेफाली ने पिछले मुकाबले में शुरुआत एक छक्के के साथ की थी, 3 डॉट बॉल खेला और उसके बाद अपना विकेट गवा दिया. हरमनप्रीत ने टॉस पे कहा था कि विकेट ऐसा है कि वक्त दे सकते हैं, विकेट को समझ के बड़े शॉट्स फिर खेलने की कोशिश कर सकते हैं. क्या शेफाली की तरफ से वो अप्रोच आप देखते हैं?
2: देखिए, शेफाली की गेम ऐसी है कि वो हर बॉल पे बड़ा शॉट मारने की कोशिश करती है, लेकिन अगर थोड़ा टिक के खेले तो शी कैन गेट ए वेरी बिग स्कोर टुडे.
1: जी बिल्कुल. और इस बीच हमारे साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं, तो जल्दी ही बात करते हैं, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. एंड वी टॉक्ड अबाउट स्मृति मंधाना. इनफैक्ट इन द बिल्डअप टू द टूर्नामेंट सौमित्रो, स्मृति लुक लाइक स्ट्रगलिंग, बट स्मृति इज नेवर एक्चुअली स्ट्रगलिंग, बिकॉज वेन एवर इट्स बिग गेम्स, स्मृति ब्रिंग्स हर ए गेम.
3: 100 most influential sports persons of the world, only 2 cricketers to find their place in Time magazine, Smriti Mandana can never go wrong, right? Abhi abhi RCB ko usne tournament champion kiya, ek bar nahi, do bar kiya, 17 centuries, you never question her credibility, right? Pedigree, credibility, and even last match she got runs, right? She's not that she's out of form. Yeah, she's the perfect batsman to take the innings forward. और देखिए, शेफाली वर्मा को तो हम बात कर रहे हैं कि उनकी ज़रूरत है उनको रन बनाना, कंडीशंस को फेस करना. जैसे कर्नल सेड, यू कांट हिट सिक्स इन एवरी बॉल, यू हैव टू प्ले द बॉल टू इट्स मेरिट. और देखिए, आई थिंक द डच हैव डन द राइट थिंग बाय चूजिंग एन एक्स्ट्रा पेसर. सो इट इज, दे आर गोइंग टू बी टेस्टेड एंड इट्स गुड फॉर अस, गुड फॉर इंडिया, बिकॉज बिफोर यू नीड दिस काइंड ऑफ टेस्ट. You need this kind of competition to play the bigger matches.
4: Indeed. And Mr. Bhupendra, Colonel Bhupendra, we were mentioning that Yastika is also in now. The fact that Yastika is in as a batter, even though Richa might be seen with the gloves rather than Yastika behind the wickets, does it also tell you that India is looking at the next opponent too, which is South Africa? I want to be better prepared for that, because Bharti Fulmali got just one opportunity, but wasn't enough on that particular occasion. Little harsh on her, or you feel Yastika is the right move ahead because of more experience, given that there are bigger games coming up?
2: Look, if you compare Bharti and Yastika, what you have to see is what position they are going to play. Yastika is playing at number 3. And if we feel that she can fit into number 3, then it is a good idea to play Yastika Bhatia, because she has these shots to play in the power play to hit over right. The fielders, and she can get the runs. But if she has to play at number 5 or number 6, it is better to play Bharti, because she is actually tuned to play at 5 and 6.
4: Right, so it depends completely on India's approach.
2: As to where the position they are going to play.
4: देखते हैं, and वक्त हो चुका है एक और कॉलर लेने का जो इंतजार कर रहे हैं. जी हाँ, नमस्कार, बताइए विपिन जी. अगर शेफाली वर्मा चल जाए तो, पहले बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए, एंड बहुत ही सही सवाल था. अगर शेफाली वर्मा चल जाए तो मिस माथुर, आप बताइए कितना स्कोर हो सकता है?
0: अगर शेफाली वर्मा चल जाती है तो 180 प्लस स्कोर जा सकता है इजिली, क्योंकि शेफाली का बल्ला जब चलता है तो वो धूम मचा ही देता है. और उसके साथ अगर मंदना भी, जिस तरह से वो लय में दिखती हैं, दोनों अगर चलते हैं तो हो सकता है 200 प्लस भी जा सकता है जो स्कोर. तो इट डिपेंड कि शेफाली वर्मा को आज पेशेंस के साथ खेलना होगा, हर बॉल को हिट करने के चक्कर में ना जाके हर बॉलर की बॉलिंग को देखना है कि किस वे में खेलना है.
4: right.
0: क्योंकि अगर वो प्लेयर्स को देख के हिट करती है, मोस्टली देखा गया है कि वो हाथ में मारने के चक्कर में वो बाउंड्री पे कहीं ना कहीं कैच दे ही देती हैं. उससे आज उनको बच के चलना है और फील्डर्स को देख के मारना है हिट.
4: So, ladies and gentlemen, you heard it from the opening batter herself then. Now,

0: और एक ही ओवर मिला था पिछली बार, 14 रन उन्होंने खर्च किए थे, लेकिन आप देखें तो विपक्षी टीम भी पूरे 20 ओवर नहीं खेली थी, 17 में सिमट गई थी पाकिस्तान, इफ यू टॉक अबाउट इट। सो क्रांति, डू वी हैव बिग इनफ अ सैंपल साइज टू से दैट शी इज आउट ऑफ फॉर्म और शी नीड्स अ लिटिल बिट मोर टाइम एंड रिदम एज एनी फास्ट बॉलर वुड वांट?
1: सुमित्रो, कंडीशंस इन हेडिंगली आर जस्ट परफेक्ट फॉर हर।
0: ओके,
1: ओवरकास्ट कंडीशंस, व्हाट एल्स कैन अ फास्ट बॉलर वांट? एंड इफ शी कैनॉट यूटिलाइज दिस कंडीशंस एंड द ऑपोजिशन इज Netherlands, not Australia or South Africa. Today is the day to get some wickets and get the confidence back.
2: And talking about gaining confidence back, Colonel, we saw in the previous game, Richa Ghosh was explosive. In fact, she too had been struggling for form heading into the tournament. Got a half century in the warm-up against England and then subsequently that knock of 34.
3: Yeah, she played really well. Actually, if you see in the last 6-7 matches that she's played, she's got about 3 to 4 overs to play in all these matches, and the only time she got a chance to play 10 overs, she got a 50. I think she got 66 in that. So she's playing very well, and if she gets a chance to play today, if her batting comes, I'm sure she'll do well.
0: All right, and what about Jemmy, who has the experience of playing in Leeds? Will that be of great effort, a great experience? The fact that you played in Leeds, does it help you as a batter sometimes?
3: Oh yes, it does help you, and I'm sure she'll play well today. Only thing is that, you know, the first 5-6 runs that you score, that you have to be careful. Okay. If you start hitting from the first ball, there are chances that you may get out. But what you have to see is your opposition. Netherlands has lost the last 6 matches that they've played. And they have got only one professional player. Rest are all club cricketers in a way. So the opposition is not that strong. So I suppose we should do well today.
2: Sumitro,
1: I want to add something about the Dutch.
2: Yeah.
1: Nobody is a professional. They play sport as a way of life. And even their hockey, even the women's Olympic champions, they come and play. You know, the stress levels in sport is so less that they come to play and enjoy a sport. That is why they have qualified for this World Cup, the first time they did. And they beat some big teams like Thailand and Scotland, who have played World Cups before. So they know how to enjoy a sport. They don't mind losing, but they have set small targets. If you hear their Scottish coach, Neil McRae, what is he saying? He's saying we're setting small targets. Not big targets. They're not aspiring to beat India. They're trying to match India. Their aspiration is to not finish in the semi-final. Their aspiration is to finish top 8 mein hum qualify karenge. So next World Cup mein hum automatic qualify karenge. So they have set reasonable targets, achievable targets. And that's the beauty of these Dutch players. All these players who come to play, they don't put unnecessary stress. Isko out karna, isko run banana, aisa nahi hai. They come to enjoy. And that's the beauty of these teams.
0: And sometimes being an underdog does free you from all
1: absolutely
0: the other pressure that you might carry, absolutely. Isn't it? Isn't it like the car headlights then, Megha? It just shows you the next couple of feet, but that's what you need to see in order to reach a destination eventually.
1: And no high beam.
0: No high beam. Yes, no high beam.
2: Absolutely. एक और बात जो वो लगातार कह रहे हैं कि इंडियन टीम से इंस्पायर हुई है उनकी ये जर्नी और काफी सारी महिला क्रिकेटर्स के लिए वो खुद इंस्पिरेशन के तौर पर आती हैं। अब अगर हम बात करें वापस भारतीय टीम की और आज के 11 की, दीप्ति शर्मा जिस तरह से बल्लेबाजी में योगदान दिया, छोटा कैमियो ही खेला लेकिन ऋचा घोष के साथ वैशाली वो वापस साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी और उसके बाद तो 5 विकेट निकाले।
4: जी बिल्कुल, क्योंकि दीप्ति शर्मा एक सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है इस टीम के अंदर हरमन के साथ, और एक एक्सपीरियंस प्लेयर का होना बहुत ज़रूरी होता है टीम के साथ, और उन्होंने वो दिखाया है कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर की बॉलिंग किस वे में होती है। एंड उसके साथ अगर बात करूँ उनकी दूसरी विकेट की, तो उन्होंने जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट मैच में उन्होंने स्वीप स्क्वेयर लेग रखा था और वहाँ पर स्मृति मंदना ने कैच किया था, दैट वॉज मतलब जो एक थॉट होता है वो उनका वो कम्प्लीट हुआ वहाँ पर, एंड वो माइंड में जो सोचती हैं वैसा वो अकॉर्डिंग टू फील्ड लगाती है और वही बॉल डालती है। ये एक एक्सपीरियंस प्लेयर की खासियत है जो हमने लास्ट मैच में देखा भी है, और मैं होप करूंगी कि आज के मैच में भी 5 नहीं उससे ज़्यादा विकेट ले। एंड उसके साथ साथ उनकी अगर बैटिंग की बात करें, उनका जो हमने इंटरव्यू सुना तो उसमें उन्होंने बोला कि हमारे जो कोच हैं उन्होंने बोला कि आपके लिए 5th नंबर ही अलाउ है बैटिंग का, एंड सी सेड मैं वहाँ पे रेडी हूँ

0: फिट हूँ वहाँ पे मैं खेलने के लिए, एंड उन्होंने वो शो भी किया।
1: शुरुआत की थी गुलफिरोजा के विकेट के साथ रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश उनके तरफ से, और उसके बाद आलिया को भी आउट किया था अपने अगले ही ओवर में। टॉकिंग अबाउट वॉकिंग दी टॉक, हरमनप्रीत कौर पिछले मुकाबले में जब पारी थोड़ी लड़खड़ाती भी नजर आ रही थी, दो जल्दी विकेट गिर गए थे, तब पारी को संभाला स्मृति मानधाना के साथ। 91 रन की साझेदारी हुई थी भूख वहां पर, और राणा बॉल ही खेल रही थी, लेकिन उनका उस वक्त पे टिकना महत्वपूर्ण था।
2: या दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एक विकेट और वहां गिर जाती तो हमारी टीम को ज्यादा ही अंडर प्रेशर हो जाती। बट दोनों जो से हैं बिग मैच प्लेयर्स हैं, और उन्होंने सिचुएशन को संभाला और अच्छा खेला, 91 रन्स की पार्टनरशिप, और उसके बाद फिर से दो तीन विकेट जल्दी गिरे, बट ऋचा घोष ने पूरी इनिंग फिर दोबारा संभाली और हमारे को एक बड़ा टारगेट की तरफ ले गई।
3: जी, और बात करें अगर स्मृति मानधना की, तो फिर हल्की सी जो हलचल उठती है ना इधर उधर से, लोग बोलते जरूर हैं कि Maybe she gets found out when there is an off spinner in operation. क्या अभी ऐसा देखते हैं कि Seegers हो गई Netherlands की तरफ से, या फिर Overdyke हो गई, कहीं ना कहीं एक चुनौती प्रदान कर सकती हैं?
4: क्यों नहीं, anything is possible. You all you need are 10 good balls or 10 bad shots. So that, and in T20 the margin of error बहुत ही कम है।
3: जी।
4: तो आपको तो चाहिए एक ही ball out करने के लिए। And why not? It's good to see Indians under pressure. अगर जितना pressure डालिएगा next match के लिए उतना preparation better होगा. See, cricket is after all a mind game. You right. can't be complacent, you can't be overconfident. And you know, I always say teams like Netherlands, like the banana skin, कि केला का छिलका आप कभी भी फिसल सकते हैं। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा है कि केप वर्दी और फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो हम examples देख रहे हैं, कुछ भी possible है sport में।
2: Look, this wicket is slightly greenish. And when a spinner is bowling in the opening overs, the ball may not turn, it'll skid through. There is a chance that it can take a outer edge and person can get caught in the slips.
0: And अभी आपने बात की रॉबिन की, अभी मैंने जो देखा है रॉबिन काफ़ी टाइम से बॉलिंग नहीं कर रही है, ऑफ स्पिन वो डालती हैं और वो काफ़ी टाइम से बॉलिंग नहीं कर रही है, तो हो सकता है कि इस मैच में भी वो ना बॉल डाले, क्योंकि एक रिदम में होना बहुत जरूरी होता है बॉलर के लिए, और वो अभी तक वो रिदम दिख नहीं रहा है क्योंकि वो काफी लॉन्ग टाइम से बॉलिंग में नहीं है।
1: और यहाँ से पावर प्ले में क्या रणनीति निकल कर उतर सकती है भारत की टीम भूप, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, ग्रीन विकेट है, कप्तान ने कह दिया है कि थोड़ा संभल के समझ के खेलना होगा।
2: लुक, वी हैव टू बी केयरफुल इन द फर्स्ट वन और टू ओवर्स एंड नॉट गो टोटली डिफेंसिव, try to score runs and put up a big score in the power play.
3: And do you have a number in mind, the big score?
2: Yeah, it'll be over 60.
3: Over 60?
2: Yeah.
3: And this is Shefali going bang bang from the word go.
2: Both players will score, and even if a wicket falls, Gee. The number 3 batsman will also go for runs, and it's going to be a biggest score. It'll be much more than 60.
4: So you don't need to go bang bang.
3: Okay.
4: What is 10 when you say 60, is 10 per over?
3: You
4: need two boundaries and two singles. Then do we have to go bang bang? No. And it's not necessary ki pehla over se aap 10-12. See, the Dutch will come with a plan. When they select an additional fast bowler, obviously they'll have a plan. Or don't forget they are good fielders.
3: Correct.
4: Right? And fielding does matter. Kyun aapko pata hai ki agar, jaise maine pehle bola ki 10 gend chahiye aur 10 bad shots chahiye. So I think pedigree, एप्लीकेशन, एक्सपीरियंस, जैसे आपने बोला कि हरमनप्रीत कैसे पकड़ के खेला, कैसे इफ दे डोंट डू अ पर्सन इज गोइंग टू प्ले 200 मैचेस इंटरनेशनल, इफ दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू अप्लाई और हरसेल्फ एज अ स्कीपर देन हु विल,
3: राइट
4: राइट
3: यू वांट टू लीड फ्रॉम द फ्रंट,
4: यस, सो एप्लीकेशन हैज टू बी द बज़वर्ड, द कीवर्ड, एंड द डच विल डेफिनेटली कम आउट विद अ प्लान।
3: और इस ग्राउंड में अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो कैलिस उनके तरफ से कई मैचेस खेल चुकी हैं इसी ग्राउंड पे, शी वुड अंडरस्टैंड द एंगल्स बेटर, आपको लगता है उसमें जरूर मदद करेंगी वो कप्तान की कि फील्डर को यहाँ प्लेस कीजिएगा, यहाँ रन्स भी बच सकते हैं, कैचेस भी बन सकते हैं?
4: डेफिनेटली, सी इंग्लिश कंडीशंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडियन कंडीशंस और एल्सवेयर, बॉल विल स्विंग एंड इट्स ओवरकास्ट, इट्स टिपिकली समर इंग्लिश कंडीशंस, एंड कैलिस, आई मीन यू से कैलिस, इट रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर कैलिस who used to never was not expressly fast, he would just bowl to the line and length and let the batsman make all the mistakes. That's why, as you said, I'm sure with her inputs, her captain Babbitt would definitely put their field.

0: healers in the right places.
1: And we've seen Bebeta, their lead, being very inspirational throughout this journey of the Netherlands team. वापस भारतीय टीम पर आते हैं और जो बल्लेबाजी का क्रम है वो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यस्तिका भाटिया वापस आ गई हैं टीम में भारती फुलमल्ली के जगह पे, और दीप्ति शर्मा को कहा गया है कि पांचवें नंबर पर वो जनरली बल्लेबाजी करेंगे, तो क्या तब्दीलियां होंगी क्रम में?
2: मुझे लगता है जहां पर अभी देखा गया है कि जैमी फर्स्ट ही डाउन आएगी एंड सेकंड उसके बाद हरमनप्रीत कौर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आती है. अगर जैमी की पहले विकेट अगर गिर जाती है तो उसके बाद हरमन आएगी, अदरवाइज हमारे मुझे लगता है कि यस्तिका भाटिया आएगी. और अगर ओवर्स कम होंगे तो डेफिनेटली ऋचा घोष वहाँ पे आएंगी बैटिंग करने, क्योंकि वो टीम का एक्स फैक्टर है और वहाँ पर वो अगर जहाँ भी आती है वहाँ से वो रन कैलकुलेट करते हैं, तो वो सिंगल को डबल में कैलकुलेट करती है और डबल से वो फोर में कैलकुलेट होता है, तो ये एक बेनिफिट मिलेगा लास्ट के 4-5 ओवर्स में ऋचा घोष से हमें.
1: जी, और क्या यही बल्लेबाजी का क्रम आप भी देखते हैं?
3: लुक, इफ यू आर गोइंग टू प्ले Yastika Bhatia at number 5 or number 6, I think we are wasting her talent. If she has to play, she has to play number 3.
1: बिल्कुल. और इसके साथ ही हम यहाँ पर अपनी चर्चा की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि मुकाबले की शुरुआत होने ही वाली है. तो जाने से पहले जल्दी से predictions लेते हुए चलते हैं. सौमित्रो, आपसे शुरुआत करते हैं.
4: 170,
1: not too dissimilar from the last game.
2: नीदरलैंड के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास बनाने के लिए बहुत कुछ है, तो आई एम थिंकिंग 180.
1: सो इट्स ब्रॉडली अराउंड 175 इफ यू ट्राई एंड ड्रॉ एन एवरेज ओवर हियर. थैंक्स अ लॉट टू ईच वन ऑफ यू फॉर योर एनालिसिस, एंड वी शैल नाउ टर्न आवर अटेंशन टू लाइव एक्शन एज द टू इंडियन ओपनर्स स्मृति मंधना एंड शिफाली वर्मा आर हेडिंग आउट इन टू द मिडल. वुड इट बी 170 और 180? वी ट्राई एंड फाइंड दैट आउट ओवर द नेक्स्ट एन आवर एंड अ हाफ.
3: Thank you.
5: First ball 20.

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: नमस्कार, हेडिंगले क्रिकेट स्टेडियम लीड्स लंदन में इस समय T20 विश्व कप महिला विश्व कप के तहत भारत और नीदरलैंड्स के बीच मैच शुरू होने जा रहा है। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज या बैटर्स जिनको हम कहते हैं बीच मैदान में पहुंच चुके हैं, सैफ अली वर्मा, स्मृति मंधना, दोनों ही बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही हैं। स्मृति मंधना ने पिछले मैच में एक शानदार अर्धशतक जमाया था और भारत को पाकिस्तान के विरुद्ध जीत में मदद मिली थी। जहां तक नीदरलैंड्स का सवाल है, नीदरलैंड्स की कप्तान ने आज बेवेट डिलीड जो विकेटकीपर भी हैं उन्होंने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने के बजाय उन्होंने सोचा कि वो एक टारगेट को चेज करेंगी और उन्होंने पहले भारत को मौका दिया है कि आइए आप बल्लेबाजी कीजिए, हम आपके विरुद्ध जो टारगेट है उसे पूरा करेंगे। नेपाल में जो क्वालिफायर्स खेला गया था महिला विश्व कप के लिए उसमें इन्होंने पहले किया आयरिस ज्वेलिंग जो 24 साल की हैं और दाएं हाथ की मध्यम गति की तेज़ गेंदबाजी करती हैं। 101 विकेट वो अब तक ले चुकी हैं। ज्वेलिंग बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रही हैं। हालांकि नीदरलैंड्स का ये पहला विश्व कप है, इससे पहले बांग्लादेश के विरुद्ध इनको पराजय का सामना करना पड़ा था। देखना है भारत जैसी सशक्त टीम जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में महिलाओं की चैंपियन हैं इस समय तैयार हो रही हैं नीदरलैंड की गेंदबाज और सामना करने के लिए भारत की स्मृति मंधना बाएं हाथ की, दाएं हाथ से उनकी पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और उस धीरे से पुश किया था वाइड स्मिडाउन की तरफ लेकिन रन लेने का वहां पर कोई भी प्रयास नहीं किया। ज्वेलिंग जो मध्यम गति की तेज़ गेंदबाजी करती हैं इस समय तैयार हैं और जैसे जैसे हमको मौका मिलेगा हम आपको पूरी टीम का विवरण भी देंगे। फिलहाल क्योंकि मैच शुरू हो चुका है स्मृति मंधना

0: तैयार हैं। एक बार फिर से उनकी गेंद लेग स्टंप के बाहर था, संभवतः वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से, एक अतिरिक्त रन। तो भारत का खाता खुला एक अतिरिक्त रन के माध्यम से, वाइड के जरिए मिला है ये रन। और अभी तक दोनों ही बल्लेबाज एक नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़ी हैं, शैफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने केवल एक गेंद अब तक खेली है और रन लेने का सिलसिला अभी उनका शुरू नहीं हुआ है। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थ्रो से पुल किया था, शॉर्ट आर्म पुल, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ बहुत तेजी के साथ गेंद को फील्ड किया और थ्रो किया, लेकिन इससे पहले बल्लेबाजों के पास इतना मौका था कि वो दो रन जुटा लें। भारत का स्कोर हो गया 3 रन बगैर किसी नुकसान के। नीदरलैंड्स ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। उन श्रोताओं की जानकारी के लिए जिन्होंने किसी कारणवश अपने रेडियो सेट्स कुछ देरी से खोले हैं, हम आपको बता दें कि भारत और नीदरलैंड्स के बीच ये मैच, ये गेंद धीरे कुछ धीमी गेंद थी, अपनी रफ्तार पर थोड़ा नियंत्रण किया और गेंद को हवा में छोड़ दिया स्विंग होने के लिए, अंदर की तरफ आ रही थी गेंद, इन स्विंग गेंद बाएं हाथ के बैटर के लिए, और स्मृति ने उसे सुरक्षात्मक तरीके से खेल दिया। नीदरलैंड और भारत के बीच T20 महिला विश्व कप का ये दूसरा मैच, ये गेंद फिर लेग स्टंप के बाहर थी और वाइड का इशारा एक बार फिर से अंपायर की तरफ से, और एक रन और भारत के खाते में जुड़ा है। भारत का स्कोर हो गया 4 रन बगैर किसी नुकसान के। हेडिंगली का ये विकेट, जहाँ पर इससे पहले भी एक मैच हो चुका है, बादल मैदान में छाए हुए हैं लेकिन पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि बल्लेबाज इसमें कुछ बैन में। इस बार ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया ऐसे और बहुत तेज़ी के साथ दौड़ते हुए दोनों ही बल्ले बैटर्स ने अपना छोर बदला, स्मृति के खाते में 1 रन और जुड़ गया, 3 रन उनका कुल स्कोर हो गया। भारत का स्कोर हो गया 5 बगैर किसी नुकसान के। पहला ओवर चल रहा है, ज्विलिंग जो कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज, लंबे कद की खिलाड़ी हैं और पूरी तरह से प्रयास कर रही हैं कि विश्व चैंपियन भारत के विरुद्ध वो अपने आत्मविश्वास को समेटें और अच्छी नियंत्रण के साथ, 94% उनकी गेंदबाजी में नियंत्रण रहता है उनका, और देखना है ज्विलिंग अपनी इस अगली ओवर गेंद में क्या कुछ कर पाती हैं। दाएं हाथ के ओवर द विकेट गेंदबाजी करने वाली, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैकफुट पे गए, कट किया उसे और डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है 4 रन के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: ज्विलिंग की ये गेंद जो कि ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ जा रही थी, हवा में अपना आर्म के साथ छोड़ी थी गेंद को, टप्पा खाने के बाद उछली थी गेंद और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे कट किया था शैफाली वर्मा ने 4 रन के लिए। एक गेंद अब तक शैफाली ने खेली है, उसमें चौके के साथ अपना खाता खुला है। भारत का स्कोर 9। इस बीच ये गेंद अच्छी गेंद थी, धीरे से इसे पुश किया था, कोई मौका नहीं लेना चाहती वैशाली शैफाली वर्मा, क्योंकि जिस तरह से अभी तक वो बल्लेबाजी कर रही हैं पिछले जो घरेलू टूर्नामेंट है उसमें बहुत ज़्यादा असरकारी बल्लेबाजी वो नहीं कर पाई थी, लेकिन लिहाजा वो अपने आप को पूरी तरह से नियंत्रित करते हुए खेलना चाहती हैं। पहला ओवर समाप्त हुआ। विश्वनाथ,
2: वेल गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल लिसनर्स ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। वेल दिस इज द फर्स्ट वर्ल्ड कप, दे आर द डिपेंडेंट नीदरलैंड्स एंड the last game they played against Bangladesh, it was a bit of a close encounter. And today is a very busy day, 3 headers, India playing Netherlands, and you got the other 2 games going on also. One, in fact, Bangladesh has lost to Australia by a mile, and South Africa and Pakistan playing. First ball is handsomely driven by Smriti Mandhana, up to mid on, no run. Well, it's a kind of a you know, grouping that India has, that they got 2 major opponents here. One is of course South Africa and Australia. So it's not an easy group through. Next ball, she draws, mistimes, drags the ball up to wide-ish mid on, wants a run. It was there actually. I think they make it in the end comfortably. So none for 10. We are in just the second over. It's Seegers. She's bowling. And Hate Seeger, she opens, in fact, the batting for Netherlands. And she's got a sister also playing the same game, isn't it? It's quite amazing. Silver Seegers. Here is Hate Seeger. Up she comes now with her off spinners. And she's getting the ball around the

0: over the wickets to Shefali. Comes in short and he hits it hard off the back foot. It's going down towards the extra fence. The ball should win the race as that ball runs away for four. Well, that was too friendly. It was short and wide and spinning away and was easily put away by Shefali Verma. So, but I feel this is the kind of game that you can improve your batting average at times. Though the Indians don't take Netherlands lightly. So he does in just a couple of paces, runs and bowls down the leg side, and it's been worked away towards a whitish mid on. Runs with the stroke for an easy single, and India move up to 15. Just to give you what happened with the toss, Netherlands won the toss and preferred to bat second. It was a bit surprised. I felt their weapon probably was the bowling. And it's such an inexperienced side. I'm sure we're going to talk a little bit more. Next ball is nicely tossed up. And a brilliant dive. And that can't get past her. This is running down towards the extra cover fence for four. Well, when Smriti placed that cover drive, I think that's an absolutely very elegant offer to see that. She's a delight to watch when she plays that cover drive. And a beautiful time of the ball. He played well against Pakistan the last game. And the Indians are not taking Netherlands so lightly. So India move up to 19. One ball to go in the second over after they've been sent in by Netherlands. If you just joined us. With Smriti on 8 and Shefali on 9. Last ball of the first over from Seegers coming in. As she's going to ball right arm round the wickets. Slower. And she has to reach for it. And then she drives beautifully. It beats cover and extra cover. That'll be another 4. Well, that sort of a pace and spin, I'm sure the Indians are going to enjoy the bowling of the Netherlands at the moment now. So Goswami, I think, you know, would you say winning the toss and batting second was the best option for Netherlands?
1: लगता है कि भारतीय टीम जो कि विश्व चैंपियन है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में तो उनको लगा होगा ऐसा कि एक बार परखा जाए और कोई एक टारगेट जो बनाती है भारतीय टीम एक अगर मौका देती है तो क्या कुछ कर पाते हैं वो तो इस तरह का एक उनके दिमाग में रहा होगा कप्तान के और उन्होंने पहले टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का मौका दिया है और उन श्रोताओं के लिए कि आज भारत और नीदरलैंड्स के बीच में महिला विश्व कप का ये मैच चल रहा है ज्वेलिंग आए हैं अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी बैट फुट पर गए मिड विकेट की तरफ गेंद को धीरे से प्लेस किया है एक ही रन मिल पाएगा शेफाली वर्मा का स्कोर हो गया इसके साथ ही डबल फिगर में 10 रन 5 गेंदों का सामना किया स्मृति मंधाना इस समय खेल रही हैं 12 रन के स्कोर पर और भारत का स्कोर 24 रन बगैर किसी नुकसान के 2.1 ओवर का खेल अब तक पूरा हुआ है भारतीय टीम जो इस मैच में खेल रही है हम आपको बहुत तेजी से बताएंगे इसके इस ओवर के बाद में और एक बार फिर से ज्वेलिंग दाएं हाथ से ओवर द विकेट उनकी गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी बैक फुट पे गई और शॉर्ट कवर्स की पोजीशन पे गेंद को फील्ड कर लिया गया कोई मौका नहीं रन लेने का और एक बार फिर से ज्वेलिंग हल्के हल्के कदमों से अपने गेंदबाजी के रनअप की ओर आ रही हैं स्मृति मानना शेफाली वर्मा यास्तिका भाटिया जेमिमा रॉड्रिक्स हरमनप्रीत कौर जो कप्तान हैं ऋचा घोष दीप्ति शर्मा श्रेयंका पाटिल श्री चरणी क्रांति गौड़ और नंदिनी शर्मा इस समय भारतीय टीम में खेल रही हैं ज्वेलिंग एक बार फिर से दाएं हाथ से
2: Good evening, E2 Agashwani Kohima. Samlaka Khobor Puriya Siyim Kung Nongla. Pohela Headlines. Nagaland Governor Ba Students Logodi Integrity, Humility or Service Manira Kibuli Honorate Kurisi and BSc Toppers Aro Achievers Logodi Saman Kurisi. Census Authorities Ba Nagaland Census 2027 County Taya Bahaigana Bishi Initiatives Kan Rakhiase. Nagaland Health Department Ba Tobacco Aro Nicotine Takia food products in Mana Kuridia Pur clarify Kurise Aro Longlinga Stop Diarrhea Campaign 2026 Lako Kurise. Itia Pura Khobar. Nagaland Governor Nand Kishore Yadav Pra students Lokoti values can integrity, humility, aro service mani rakibuli aji sala digina. Dangur Sopna Rakibuli, Mehenet Kam Kuribuli aro Soplaka Bahlai Karni, Nature Talents Chelabuli Monotide se. Daira HSLC aro HSSLC examinations 2026 laga alakala governors awards laga toppers rank holders aro achievers laga governors felicitation lok bhavan koyemadi rakya somoy kotha kore se award park and lokodi

0: It's whitish mid wicket, and the air ends now. So 8 overs gone. India going at 9 an hour. None for 72.
1: भारत और नीदरलैंड्स के बीच इस समय महिला विश्व कप जो कि 20-20 ओवर का विश्व कप है खेला जा रहा है इंग्लैंड की धरती पर और भारत का इस टूर्नामेंट में ये दूसरा मैच है। पाकिस्तान को पराजित करके भारत ने बहुत ही मजबूती के साथ अपने इरादे जाहिर किए हैं महिलाओं ने। और नीदरलैंड्स का जहां तक सवाल है, नीदरलैंड्स ने इससे पहले बांग्लादेश के विरुद्ध एक मैच खेला था और उसमें वो पराजित भी हो चुकी हैं। तो नीदरलैंड्स जो पहली बार विश्व कप में क्वालिफाई किया है, देखना है कि क्या कुछ कर पाते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 से अधिक मैच खेलने का अनुभव नीदरलैंड्स के साथ जुड़ा हुआ है और इस समय 72 रन भारत का स्कोर 8 ओवर्स की समाप्ति पर। स्मृति खेल रही हैं 32 रन पर और शेफाली खेल रही हैं 30 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर। और वांडे वार्निंग आई हैं अब नई गेंदबाज के रूप में, पहली ही गेंद वाइड के रूप में और एक अतिरिक्त रन और जुड़ा है और अतिरिक्त रनों की संख्या इसके साथ ही बढ़कर हो गई है। 11 रन अभी तक दे चुके हैं 8 ओवर के खेल में अतिरिक्त रनों की। ये अतिरिक्त रन बहुत महंगे पड़ते हैं कई बार ऐसे मौक़ों पर जबकि मैच बराबरी की स्थिति में आता है, तो उस समय ये जो अतिरिक्त रनों का एक बोझ होता है वो बहुत मुश्किल होता है। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को उठा दिया है और लेकिन कोई फील्डर नहीं है, बहुत तेज़ी के साथ गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन अब जाके गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया और बल्लेबाजों के पास पूरा समय था रन लेने का। सैफ अली ने बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हुए 2 रन पूरे किए, 32 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया, 23 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और भारत का स्कोर इस समय 75 रन बगैर किसी नुकसान के। T20 महिला विश्व कप इंग्लैंड एंड वेल्स के तत्वावधान में खेला जा रहा है इस समय और भारत जो कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व कप खेला गया था गत वर्ष उसमें चैंपियन है, दक्षिण अफ्रीका को भारत ने हराया था और नीदरलैंड इस समय एक तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ी कमजोर टीम। 75 रन भारत का स्कोर 8.1 ओवर के खेल में अब तक हो चुके हैं और सैफ अली वर्मा अब तैयार हो रही हैं, 32 का व्यक्तिगत स्कोर है इस समय उनका और देखना है सैफ अली जिनको रनों की बहुत ज़रूरत थी इस समय तैयार हो रहे हैं। वांडे वार्निंग इस समय गेंदबाजी कर रही हैं और भारत के अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ, अंपायर से वो बातचीत कर रही हैं वांडे वार्निंग और देखते हैं कि आगे क्या कुछ कर पाती हैं वो। गेंदबाजी करने का सिलसिला निरंतर जारी है लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि वांडे वार्निंग जो कि गेंद कर रही हैं, पहली गेंद वाइड फेंकी थी, दूसरी गेंद के साथ आ रही हैं सैफ अली वर्मा को, उनकी गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर थी और इस समय विकेट के पीछे उसे कप्तान ने गैदर किया, कोई रन नहीं हुआ। 73 रन भारत का स्कोर बगैर किसी नुकसान के इस समय हो चुका है।
0: Well, that's a line to ball. Fuller just outside the off stump. Yes. Beautifully bowled.
1: जी. बहुत बेहतरीन तरीके से, थोड़ा सा नियंत्रण करने की आवश्यक है और इस बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को ड्राइव किया था, गेंद हवा में उछली हुई और बहुत बेहतरीन तरीके से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: वार्निंग की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और बेहतरीन तरीके से उसे बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा, हालांकि गेंद हवा में थी लेकिन कोई फील्डर वहां नहीं था और सैफ अली वर्मा के बल्ले से निकलने वाला एक और चौका ये निकल के गया है। अब तक उन्होंने 6 चौके जमाए हैं 34 रन के व्यक्तिगत स्कोर में। एक बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी लेकिन अपना सर झुकाया और उसे जाने दिया विकेट कीपर के पास में।
0: Well, I don't see the Indians good hookers of the ball, hookers or pullers of the ball, and it really surprised Sharif Ali for sure.
1: Yeah, T20 international cricket में 27वां मौका है जब सैफ अली और स्मृति मंधना ने पहले विकेट के लिए भागीदारी की है 50 या उससे अधिक की। मनोज कुमार ने बताया इस बीच ये गेंद और ये गेंद डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए निकल गई।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: भारत का स्कोर 83 रन बगैर किसी नुकसान के इस समय बहुत ही बेहतर।

0: तरीके से दोनों ही बैटर्स या बल्लेबाज खेल रहे हैं। स्मृति मंधाना 32 पर, सैफ अली वर्मा 38 पर। नो बॉल का इशारा भी अंपायर ने किया है और अब जाके एक और फ्री हिट मिलेगा भारत को। सैफ अली तैयार हैं फ्री हिट लेने के लिए और जिस तरह से गेंदबाजी की थी, ऊंचाई पर उछलती हुई गेंद थी, बल्लेबाज ने भी देखा था हिट और उसको फ्री हिट दिया है अंपायर ने। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद और संभवतः वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से और एक और अतिरिक्त रन भारत के खाते में जुड़ा है। 14 रन अब तक अतिरिक्त रन के रूप में दे चुकी हैं नीदरलैंड्स की गेंदबाज, 84 रन बगैर किसी नुकसान के। वॉर्निंग जो गेंदबाजी कर रही हैं, वॉर्निंग काफ़ी अच्छी गेंदबाज मानी जाती हैं, लेकिन यह एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी हो सकता है कि विश्व चैंपियन के सामने एक नई टीम उतरती है तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है और वही लगता है नीदरलैंड्स के साथ। इस बार इस गेंद को उठा दिया है, इस देखना है, लेकिन फील्डर उसके 30 गज के घेरे के बाहर की तरफ खड़ी थी और पहले टप्पे के साथ में गेंद फील्डर के हाथ में गई और इसके साथ ही ये ओवर भी समाप्त हुआ।
1: Well, that's a good comeback, isn't it? She got a no ball, which was just above the waist of Sheff Ali, and then she followed with a wide, and then a dot ball. So it's a good comeback by all means for Wender. It's still there, three balls remaining in this over, and the run rate now inching towards 10. It's 9.88 precisely, 84 for Nolos, the ninth of her warning balls. She thrashes this one on the offside straight to the fielder at cover point, no run, and two dot balls in a row. So we've seen three wides and one no ball in this over. I think, you know, that's going to be a real frustration. We'll see how many extras in this game so far. How many wides, how many byes? I mean, 14 extras. It's quite extraordinary. We're inside the 10th over, so that's quite high. 15. In fact, 15. That's what... 15 wide. So it's quite extraordinary in a T20 game. The next ball has been flicked away on the own side. It's going down towards deep backward square. Just a single. And in comes the throw from... Caroline De Lange. It's none for 85 and one ball to go in the ninth over. The speed of Van Der Wonning is around about, I would say 108 to 115. And I feel that the fast bowlers from Netherlands have done a good job in this game so far. But the only problem is they haven't got the line and length clear. On top of that, plenty of wides. And the ball is still, you know, just moving around. There's something there for the medium pace bowlers. And we're not seeing the keeper standing up to the stumps for the fast bowlers. Only on a couple of occasions I've seen that. Netherlands, a very small country with a population of 1.8 crores. And Dutch is the language they speak. And they're loving cricket now, moving away from football. Here is Van Der Wonning. Brown the biggest balls. And she drives and misses and through to the keeper. First time the ball is beaten the bat rather. And a long over again, Van Der Wonning has bowled 2 overs, none for 25. And after 9 overs, it's none for 85. And 11 more overs to come off of this. I think just looking at the clock, you know, 45 minutes ago, they bowled just 9 overs, which means it could be, you know, penalised towards the later half of the game. But I feel this is one game where 200 looks there, isn't it?
0: जी, जिस तरह से भारतीय टीम यहाँ पर खेल रही है, निश्चित रूप से एक उम्मीद बन रही है कि भारत की ये महिला खिलाड़ी अपनी इस पारी को बहुत आगे तक ले जाएंगी। लेंगे एक बार फिर से लेग ब्रेक गेंदबाज और ओवर पिच गेंद थी, उसे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेल दिया 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: यशवंत चार्ट जो बहुत ही हमारे स्कोरर हैं, अनुभवी स्कोरर, लेग साइड में ये पहला चौका लगा है, ये बताया है उन्होंने बहुत ही बेहतरीन जानकारी। और 89 रन बगैर किसी नुकसान के 9 ओवर की समाप्ति के बाद ये 10वां ओवर चल रहा है। डी लैंज इस समय गेंदबाजी कर रही है। फुल टॉस गेंद थी, गेंद को ड्राइव किया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, फिर से 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: डी लेंगे अब जाके जमीन पर अपने हाथ रगड़ रही हैं, गोया की गेंद उनके हाथ से छूटी है, कुछ नमी सी है हाथ में। और इस बीच दाएं हाथ की लेग ब्रेक गेंदबाज हैं डी लेंगे और देखना है कि वो अपनी गेंदबाजी में भारतीय बल्लेबाजों को कोई प्रभावित कर पाती हैं या नहीं। इस समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल चल रहा है, भारत की रनों की संख्या बढ़ती हुई 93 पर जा पहुंची है। और डी लेंगे एक बार फिर से दाएं हाथ से ओवर द विकेट उनकी गेंद, और इस बार

0: सिस्टम के बाहर जाते हुए गेंद को धीरे से कट किया था पॉइंट की तरफ फील्डर के हाथ में, और दोनों खिलाड़ी हालांकि क्रीज से बाहर निकल चुके थे और नॉन स्ट्राइक एंड पर जब तक की गेंद पहुंचती और गेंदबाज उसको विकेट्स पे लगाती दोनों ही बैटर सुरक्षित अपने अपने स्थान पर पहुंच चुकी थी, बहुत आगे निकल चुकी थी। स्मृति मंधना बहुत ही किस्मत वाली रही कि इससे थ्रो बहुत धीमा आया और अन्यथा भारत को एक नुकसान उठाना पड़ सकता था, बहुत महत्वपूर्ण विकेट होता। इस बीच ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया कवर्स की तरफ, बहुत तेजी के साथ गेंद जा रही है, अब जाके गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन तब तक एक रन और शैफाली वर्मा ने अपने खाते में जोड़ लिया है और भारत का स्कोर निरंतर मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए, और जिस तरह सा का पिछली गेंद पर एक मौका था नीदरलैंड्स के लिए स्मृति मंधाना को रनआउट करने के लिए, शैफाली वर्मा 48 रन पर जा पहुंची हैं, 32 गेंदों का सामना किया है, 150 के स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी कर रही हैं इस समय। स्मृति 32 रन के स्कोर पर खेल रही हैं, जो पहले आगे थी अब शैफाली से थोड़ा रनों के मामले में पीछे आ चुकी हैं, लेकिन स्मृति मंधाना जिस तरह से खेल रही हैं, इस बार ये गेंद थी एक कदम आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन जैसे ही देखा गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद को ड्राइव किया था वाइड मिड ऑन की तरफ, एक रन अपने खाते में जोड़ा और उनका स्कोर हो गया 33 रन, 28 गेंदों का सामना किया स्मृति मंधाना ने, और शैफाली खेल रही है इस समय 48 के स्कोर पर, 2 रन अगर वो और बना लेती हैं तो ये एक अर्धशतक उनको एक नई ऊर्जा भी देगा। इस बीच ये गेंद ऑफ के काफी बाहर थी, ड्राइव किया इसने मिड ऑफ की तरफ, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, एक रन ही मिलेगा और भारत का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पर जा पहुंचा है 96 रन बगैर किसी नुकसान के।
1: So 96 from Tenovas, India really in firm control of this game in the first half, and 200 probably I feel could be there. We're just talking about Netherlands as a country, a very small country with 1.8 crore population, and Dutch is the language, which has got a bit of a German mix into that, and all these years their first last main football, I keep saying about that, but these people have done something a little different. The men's team also does a good job in cricket, so it's just a question of time before we see them play international ODIs and test matches. Long way to go, and Manoj, our statistician, comes with some kind of a record to keep us heavily engaged. Highest score in power play for India in World Cup, 59 in this game at Leeds, 59 for 3 versus Australia in Cape Town in 2023 semi-final, 54 for 2 versus Bangladesh in Perth 20. And 51 for Nolos against Bangladesh in Bengaluru 2016. Vander Raad bowls beautifully driven, beats a fielder at cover, diving save by Frederick. And I tell you, it was a wonderful save indeed, and appreciated by the whole team. Was it a catch? I'm not sure whether it carried or not, but we'll just pick it up. And Shefali has got to a 50. That's what everyone wanted. The whole country has been chasing about Shefali's form. And finally, she found some form today. 50 from 34. And acknowledged by her batting partner, Smriti Mandana. It was driven officially. I tell you, that was a catch. That will go in as a dropped effort. And it was in the air. And unfortunately, she couldn't grab it with both hands. Frederick was the fielder. And she races her bat. Shefali, 50. Not out. So India is going on well now. And they are 97. And Shefali's runs predominantly have come on the offside, 28 of them, and balance on the onside. So that's been the mix. Vandenrad had a long over. She is in her second over. None for 11 from 1.1. A worried-looking captain standing behind the stumps. As next ball, Shefali comes and lifts it high over long on. This is running down towards the fence. No, it won't go for 4. Misfield there, and she recovers well enough. And they settle for a single. So Smriti on 34 from 29, and Shefali 50 from 34. 98 on the bowl, 11th over. And that strike rate of Shefali looks very healthy. 147 is the strike rate of her. And we don't see the centurion so far, right, in this World Cup? I think so. We don't have a centurion in this World Cup. Vandenrad. We'll give you bowling analysis also, along with the extras they have conceded in a while. Shefali with a high back lift now faces the next ball. Lowndes the wicket bowl. She beats him. Oh, I tell you, that is a great delivery. I don't know how it missed the outside edge of the bat. That came from a blind spot. Beautifully bowled by Vandenrad. And it was not far away from the edge. It was an amazing angle. She's comprehensively beaten all and

0: That is a beauty, I tell you. One of the finest deliveries of this game so far. And that's been done by Vandenbrand. Up she comes now, round the wickets and bowl. Short, she pulls away, wide of mid-on. This is running down towards the fence. And one go for four. There's a fielder there patrolling. And a wide-ish mid-on sends in the return. Was it the 100 is up? Not sure. But Shefali's 51 from 36 with the help of 9 fours. No sixes in this game so far. In fact, the last game that Netherlands played against Bangladesh, there was no six in that from the Bangladesh side. From Netherlands side. It was a closely contested game. And we've seen some surprises happening. Australia field is a pretty strong thing. Next ball. She comes down the track. Shefali hits it high. It gets a thick outside edge and it's running down towards deep backward point. Just a single. The 100 is up. And the 100 is a fine opening partnership for the first wicket. Undefeated till now. Smriti Mandhana 35 from 30. And Shefali's being the dominant partner. 51 from 36. 10.5 overs. One to go. It's been a good over so far. Four came from the first five deliveries. Shefali just turning out an inch outside the batting crease now. 500 inside the second. Next ball, she gets one. Pitched up, driven beautifully between cover and mid-off. This will race away for four.
1: Ye laga, abha ka choka.
0: The 265 boundaries in this World Cup so far. We all thought that that would end up as a good error. Four came from the first five deliveries, and then the last one was pitched up and driven handsomely through the mid-off and cover fence for four. So India really playing well. They're in a very strong position. It won't be easy for the Dutch girls to come and chase anything in excess of 180. And there's something there for good fast bowlers. The Netherlands team has never found the rhythm up. We'll give you the bowling analysis in a while, as I keep saying. And the most busiest month for all sports lovers all across the globe. It's been a month to keep your ears engaged with radio. So only we'll be bringing all the matches of the Indian games, this T20 World Cup played in England. And the proceedings so far, Goswami, has been extremely good for India.
2: जी बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय बैटर्स यहाँ पर अपना हुनर दिखा रहे हैं और शेफ अली वर्मा, जिनको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, ये गेंद, अगली गेंद, नया ओवर का पहला गेंद और उठा दिया है इसे एक टप्पे के साथ, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
2: इस समय भारत का स्कोर 108 रन बगैर किसी नुकसान के। एक शतकीय साझेदारी दोनों ही प्रारंभिक बैटर्स ने की है, स्मृति मंधाना और शेफ अली वर्मा बहुत मजबूत इरादों के साथ खेल रहे हैं। सीगर से एक बार फिर से शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थे, उठा दिया है गेंद को, पहले टप्पे के साथ गेंद, देखना है जाए, बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है। छह रन का इशारा अंपायर का।
1: ये लगा आभा का छक्का।
2: भारत का स्कोर इस समय 114 रन बगैर किसी नुकसान के। जिस तरह से गेंद को उठा के बहुत बेहतरीन तरीके से ड्राइव किया था उन्होंने, एकदम उछाल कर मारा था और गेंद हवा से बतियाते हुए डीप कवर्स बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए गई थी। इस बार ये गेंद एक कदम आगे बढ़ी, ड्राइव किया से कवर की तरफ, लेकिन वहाँ पर फील्डर और उसने गेंद को फील्ड कर लिया। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस समय भारत का स्कोर बढ़कर हो गया 115 रन। 11.3 ओवर का खेल इस समय पूरा हुआ है और रन रेट 10 रन प्रति ओवर की। इस तरह में बहुत ही मजबूत रगड़े के साथ भारतीय टीम अपना स्कोर बढ़ाती जा रही है। क्रिकेट जो अनिश्चितताओं का खेल है, कहीं यहां पर ताश के पत्तों की तरह से पारी बिखर जाती है और कहीं रनों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। एकमात्र छक्का भी इस मैदान पे लगा है और इस बीच ये देखना है कि गेंद 115 रन पर भारत को पहला झटका लगा है। शेफ अली वर्मा आउट होकर वापस पेवेलियन जा रही हैं। जिस तरह से गेंद को फ्लाइट किया था, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, अपनी जगह पर खड़े होकर गेंद को उछाल के मारा था और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पार इस गेंद को बिल्कुल नजदीक खड़ी हुई फील्डर ने अपने हाथ में लिया और ये पहला विकेट भारत का गिर चुका है। सैफ अली वर्मा जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल रही थी और उनको ज्वेलिंग ने कैच किया। सीगर्स की गेंद पर 55 रन बनाए 38 गेंदों का उन्होंने सामना किया।

0: और विश्व कप में ये पहला अर्धशतक है। मनोज कुमार हमारे स्टेटिस्टिशियन बता रहे हैं कुल मिलाकर 33वां T20 15 का वह मैच है, 33वां मैच है जिसमें इन्होंने ये विश्व कप में अर्धशतक जमाने का पहली बार अवसर पाया है। मनोज कुमार स्टेटिस्टिशियन बता रहे हैं। तो भारत को ये पहली विफलता कह सकते हैं। भारत के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से सैफ अली वर्मा खेल रही थी, लेकिन एक गेंद पर उन्होंने शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, अपनी जगह पर खड़े होकर गेंद को हवा में उछाला था और बिल्कुल सीमा रेखा के पास जाकर गेंद पहुंची थी और ज्वेलिंग वहां पर खड़ी थी। सीजर्स को एक सफलता मिली इस अगली गेंद, एक कदम आगे बढ़ी, ड्राइव किया उसे और बेहतरीन तरीके से कवर बाउंड्री की तरफ जा रही है बहुत तेजी के साथ 4 रन के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: 15 रन इस ओवर में अब तक आ चुके हैं, लेकिन जो सुखद बात है वो ये है कि इसमें नीदरलैंड को सफलता एक मिली है विकेट लेने की। बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करते हुए उनकी गेंदबाज हरबीर सिंह कैंग को ड्राइव किया था और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई थी। 119 रन अभी भी स्कोर है और जेमी माह रॉड्रिक्स इस समय आई हैं नए बल्लेबाज के रूप में। एक अमेरिकन गेंद को ड्राइव किया और गेंद जा रही है मिड ऑन बाउंड्री की तरफ, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद खड़ी थी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, ज्वेलिंग ही करी थी। ज्वेलिंग ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, लेकिन तब तक भारत के पास मौका था एक रन लेने का। 12 ओवर की समाप्ति पर 121 रन एक विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर।
2: Well, I was just looking at the celebrations after the fall of Shefali's former wicket. Every Dutch girl, they got absolutely excited seeing the exit of Shefali, and they were very happy because they got the first breakthrough. But I'm sure when the Netherlands team heads back to their home country, I'm sure they're going to remember this experience for a long time. And we've got to have the bowling analysis, I keep saying, which I missed in the last few minutes. Zwelling, 3 overs for 22, Sages. 2 overs for 26, and she got a wicket too in the last over. Warning, 2 overs 25. Van der Rad, 2 overs for 16, and Delande, 2 overs, none for 16. 1 wicket taker so far, and now change in bowling. We're going to see another leg spin bowler in action. She bowled 1 over before this, and I was surprised that she was taken away. It is Silver Seizure. She's going to bowl around the wicket, over the wicket with a round arm action. Short climbs onto the batswoman.

0: by the ground. And Sehgal pushes India up to 125, a run rate almost touching 10 and over. Well, they're doing well now. So we're just looking at... for four, and oh, that's a great save indeed. She'll get a couple of runs for sure, and she gets to her 15 indeed. 50 from 36 as the Indian team stands up in the dugout, appreciating another half century. 35th 50, Manoj Kumar's decision is bang on. 39 is gone, 1 for 127.
1: स्मृति ईरानी का ये बहुत स्मृति मंधाना का बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस समय 50 रन वो बना चुकी हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत की ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में स्मृति मंधाना का एक विशिष्ट स्थान है. उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की है और जिस तरह से वो खेल रही हैं आज लगता है कि वो काफ़ी बड़ा स्कोर करने की ओर बढ़ रही हैं. हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ किसी भी पल परिस्थितियाँ बदल जाती हैं. शैफाली वर्मा बहुत ही आक्रामक तरीके से खेल रही थी लेकिन एक ही गेंद आउट होने के लिए काफ़ी होती है और इस तरह से शैफाली ने अर्धशतक जमाया. भारती के इन दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों ने आज बहुत अच्छा स्कोर यहां पर खड़ा किया, एक ऐसा मजबूत आधार बना दिया है कि आने वाली टीम के खिलाड़ी इसको और अधिक मजबूत कर सकेंगे. 127 रन एक विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर. स्मृति खेल रही हैं 50 पर, जेमिमा रॉड्रिक्स खेल रही हैं 8 रन के स्कोर पर. 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया है. ओवर डिस्क अब गेंदबाजी करने के लिए आ रही हैं. दाएं हाथ की इनकी गेंद, स्टंप के बाहर गेंद को कट किया था, कवर और कवर पॉइंट की तरफ पर इस समय फील्डर के हाथ में जाती है. तब तक बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए और भारत का स्कोर इसके साथ ही बढ़कर हो गया 129 रन एक विकेट के नुकसान पर. ओवर डिस्क इस समय गेंदबाजी का जिम्मा संभाल रही है. स्पिन गेंदबाजी पर ज़्यादा भरोसा नीदरलैंड की टीम को. नीदरलैंड्स की टीम जो कि पहली बार विश्व कप में अपना पदार्पण किया है. नेपाल में खेले गए क्वालिफायर्स में उन्होंने अपने आप को इस योग्य बनाया. इस 20 गेंद थोड़ी हवा में थी मिडॉन की तरफ लेकिन फील्डर बहुत पीछे खड़ी थी, रन लेने का मौका दिया पूरा उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को. स्मृति का स्कोर 50 रन, अभी भी 36 गेंदें उन्होंने खेली हैं और जेमिमा का स्कोर हो गया 11 रन एक रन के साथ है. 130 रन एक विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर 9.75 के औसत से रन आ रहे हैं और काफ़ी मजबूत कहा जा सकता है एक आधार भारत ने रख दिया है और लगता है कि भारत नीदरलैंड्स के विरुद्ध काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए एक बड़ा स्कोर करने की ओर कदम बढ़ा रही है भारतीय महिला टीम. और देखना है कि किस तरह से ये राउंड द विकेट मारे आते हुए गेंद को ड्राइव किया है. हवा में थी गेंद, फील्डर के पास पहले टप्पे के साथ आई और बहुत तेज़ी के साथ दौड़ते हुए एक ही रन मिलेगा 51 रन स्मृति मंधाना का स्कोर हो गया. इसके साथ ही 131 रन भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर. हेडिंग लेके इस क्रिकेट ग्राउंड में जहाँ 17,000 की क्षमता है, दर्शक क्षमता काफ़ी बड़ी संख्या में लोग और यहाँ पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में दिखाई दे रही हैं. इस बीच शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, गेंद को लपेट के मारा है ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, गेंद को मारा है ऑन साइड में जेमिमा ने लेकिन एक ही रन उनको मिलेगा. 12 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया. 132 रन एक विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर. 13.4 ओवर्स का खेल हो चुका है और एक बार फिर से उन श्रोताओं को बताएं कि भारत ने जिस गति से रन बनाए हैं 9.66 रन प्रति ओवर उनकी. और इस बीच गेंद को ड्राइव किया है स्मृति ने लेकिन पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाई थी और अब जाके गेंद को फील्ड किया, एक ही रन मिलेगा उनको. स्मृति मंधाना का स्कोर इस समय 52 रन 38 गेंदों का सामना करने के लिए के बाद और इस समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये 10वां संस्करण महिला T20 विश्व कप का. ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम जिसने सर्वाधिक बार इस टूर्नामेंट में अपना प्रदर्शन किया है विश्वनाथ.
0: Well, the Australians have been the most dominant team in this World Cup so far.
1: Over disc का ये आखिरी गेंद थी उनके शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, तीर गेंद को मारा है बाउंड्री डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: 137 रन 14 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर. विश्वनाथ,
0: well, I think, you know, if they don't hit 200 in this game, I'll be disappointed. So I'm sure they're just scoring at almost 10 and over. And it was one of those games where you probably

0: As a batter, if you're not found form, you can find form, because some of the bowling affair from Netherlands has been too friendly, and bowled a lot of half crackers, the spinners, and I think there's a break on going on actually, as such. And if you just switched on your radio sets, what's the reason here? Netherlands won the toss and they preferred to bat Sikane, and there the openers have got a half century, and Mandana continues a good form where she left against Pakistan, and the 50-50 World Cup champions now will find a great opportunity to break the jinx and then take over this World Cup. It's not so easy, but I think, you know, it's another World Cup era. I feel three or four teams are very strong in contention, including I probably will say England, because England are playing the home soil. Then we got Australia. Of course, India is also a strong contender. And on the other side, if you look at, we've not seen much surprises in this World Cup in terms of lesser-known opponents beating higher-ranked teams. Though Bangladesh probably had a bit of a tough time against Netherlands in the first game on last Sunday. But I think Netherlands, I see a lot of promise in this Netherlands side. They got some good, serious talent. And just to tell you about this Dutch girls, you know, when they were playing the tri-series a couple of months before, most of them are flying in and out of Netherlands to finish their exams, so which is quite extraordinary, isn't it? And the love for the game continues, no doubts. So the last game against Bangladesh, their first World Cup match, they scored 139 for 8, and Bangladesh chased it in the last over, 19.1 overs. But D. Lead was wonderful to watch. 50 runs, he got a half century of 45. The wicketkeeper, batter, 26 years of age, very promising, player from a Dutch point of view. And I was just saying about the recent tri-series with Bangladesh and Scotland. The Dutch women were flying in and out of the subcontinent to finish their exam. It was quite extraordinary. So that's what it's all about. The other cricketer, Caroline D. Lange, I said about her. She's a doctor by profession. She's a neurosurgeon, I believe. And she skipped it, and she's continuing on with their orange attire to represent the country. So cricket is fast catching all across the country. I think BCCI is doing a great job, no doubt on that. And I feel, I keep saying in many of my matches that I come across, that T20 is a beautiful marketing tool, and for lesser known countries to endorse the game. And it is the first step to climb when you go to the next set of games, the 50-50 and test matches.
1: विश्वनाथ, इस टूर्नामेंट में जो कि ये दसवां संस्करण है, सर्वाधिक बार ऐसे छः बार ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 और 2023 में छः बार कुल ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 विश्व कप में चैंपियन रही है, जबकि इंग्लैंड ने 2009 में, जो कि इसका पहला संस्करण था, उस समय इंग्लैंड ने इसे जीता था, और वेस्ट इंडीज 2016 और न्यूजीलैंड, जो कि पिछले साल दो साल पहले 24 में न्यूजीलैंड, तो वर्तमान में न्यूजीलैंड इसकी चैंपियन है। और अब देखना है कि नए ओवर के साथ सिल्वर सीजर्स एक बार फिर से आ रहे हैं, दाएं हाथ की लेग ब्रेक गेंदबाज गुगली भी डालते हैं, उनकी गेंद इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, एक कदम पीछे हटी और गेंद को मिड विकेट की तरफ धीरे से टर्न किया था, कलाइयों के सहारे से बहुत तेजी के साथ नहीं गई थी गेंद, एक रन और स्मृति मन ने ले लिया, 53 रन उनका स्कोर 39 गेंदों पर। भारत का स्कोर इस समय 138 रन एक विकेट के नुकसान पर। 14 ओवर का खेल जब समाप्त हुआ था, उस समय रन रेट यानी रन औसत था 9.74। तो T20 विश्व कप में आज ये दोनों ही टीमें अपना दूसरा मैच खेल रही है। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, मिड विकेट की तरफ ड्राइव किया बहुत तेजी के साथ, लेकिन फील्डर वहां पर खड़ी थी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर जो कि कप्तान ही है, बबेट डी लीट, नीदरलैंड्स के कप्तान है, जिन्होंने आज टॉस जीतने के बाद पहली बार फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। हालांकि बांग्लादेश के विरुद्ध ये टीम हार चुकी है, और भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को पराजित किया था, दूसरे मैच में सामना कर रही है नीदरलैंड्स का। इस बीच एक गेंद फ्लाइट किया था, इसे ड्राइव किया बहुत तेजी के साथ, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: स्मृति का स्कोर इस समय हो गया 57।

0: example. So Mandana gone, caught at mid-off and off the bowling of De Lange. And India lose the second wicket. Both the openers are gone. It's 2 for 162 from 16 overs. I'm sure every Dutch girl out of the centre, they all come to a huddle and hugging each other. And it was very well taken indeed at mid-off. And celebrations in the Dutch camp. They know the importance of the wicket. De Lange is absolutely delighted. So Mandana is gone finally for 74. Caught by Zwilling. It was the second catch, isn't it, for Zwilling, isn't it? And off the bowling of De Lange, and India are two down after 16 overs.
1: भारत को एक झटका लगा है. दूसरा विकेट भारत का यहाँ पर गिरा है. स्मृति मंधाना जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी कर रही थी. मंधाना ने 74 रन का बहुत ही अच्छा स्कोर कहा जा सकता है. हालांकि उम्मीद ये थी कि वो एक बड़ा स्कोर आज करेंगी और अपनी पहले की पारी में जितने भी शतक लगाए हैं उनमें एक शतक की वृद्धि करेंगी. लेकिन ये क्रिकेट है, यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी परिदृश्य बदल जाता है. पलक झपकने के साथ ही कई नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं और पुराने ध्वस्त हो जाते हैं. अनिश्चितताओं के आंगन में ये खेली. गेंद लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, लेकिन देखना है गेंद बैट से लगी है नहीं, और ये आउट दे दिया उन्होंने. गेंद उनके बल्ले के कहीं बाहरी किनारे से छूते हुए विकेट कीपर के पास गई थी और भारत को ये एक झटका. जेमिमा रॉड्रिक्स 12 गेंदों का सामना करने के बाद 19 रन के स्कोर पर विकेट के पीछे पकड़ी गई. कैच आउट, आउट हुए. दूसरा विकेट भारत का 162 रन के स्कोर पर. और जिस तरह से गेंद लेग स्टंप के बाहर की थी, स्वीप करना चाह रही थी, गेंद उनके ग्लव्स के पास से लगी और विकेट कीपर जो कि कप्तान भी हैं बबेट डी लीड, उन्होंने लुढ़कते हुए एक शानदार कैच लिया और उछलते हुए गेंदबाज ने भी अपने आप अपनी खुशी का को जाहिर किया यहाँ पर. और भारत का स्कोर इस समय 162 रन 3 विकेट के नुकसान पर. जेमिमा रॉड्रिक्स ने दो चौके इस पारी में लगाए थे.
0: You look at the celebrations of the Dutch girls, amazing, isn't it? They are celebrating each and every moment of this game. They're really enjoying this World Cup as a team together. And whenever they get a wicket, irrespective of the score, I think the celebration has been wonderful to watch. And they are taking this game to a different level when they go back to Netherlands a couple of weeks from now. I'm sure there'll be a lot of learnings, and this experience is going to be very handy for them, for the future generation within Netherlands, to take the game and endorse T20 cricket very seriously. And their celebrations are wonderful to watch.
1: बिल्कुल इस समय मंधाना और शैफाली वर्मा रॉड्रिक्स तीन खिलाड़ी आउट हो चुके हैं. स्मृति मंधाना ने 74 रन बनाए, शैफाली वर्मा ने 51 रन बनाए और रॉड्रिक्स ने 23 रन बनाए. इस बीच गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, गेंद को ड्राइव किया है ऑन साइड में मिड विकेट रीजन में, लेकिन एक रन ही मिलेगा. यस्तिका आई है नए बल्लेबाज के रूप में, एक रन के साथ अपना खाता खोला और भारत का स्कोर 163 रन 3 विकेट के नुकसान पर. जिस तरह से आज भारतीय प्रारंभिक बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए एक मजबूत आधार यहां पर रखा था, लेकिन उसके बाद तीन विकेट भारत को गिरे और भारत का स्कोर बहुत मजबूत है इस समय 163 रन 3 विकेट के नुकसान पर. और रॉड्रिक्स गेंद को स्वीप करना चाह रही थी ऑन साइड में, लेकिन जैसे ही गेंद उनके बल्ले के नज़दीक से निकलते हुए ग्लव से टकराई और विकेट के पीछे बबेट ने उनको कैच किया. इस बीच अगली गेंद थी राजकीर, उस गेंद को ड्राइव किया है ऑफ साइड में और पीछे खिलाड़ी उन्होंने गेंद को फील्ड किया. कैलिस खड़ी थी वहां पर, स्टीर कैलिस, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया. 164 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर. रिचा खेल रही हैं एक रन के स्कोर पर और यस्तिका खेल रही हैं एक रन के स्कोर पर. तो इस समय भारत को और रनों की आवश्यकता है और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जा रहा है उम्मीद की जा रही है कि दोनों ही बल्लेबाज कुछ और रन जुटाएंगे. इस बीच ओवर पिच गेंद के देरी से फ्लिक किया था डीप स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद को फील्ड करती सीजर्स गेंद को फील्ड करके थ्रो किया विकेट कीपर की तरफ, लेकिन एक रन और यस्तिका ने लेते हुए अपना स्कोर कर लिया. दो रन दो गेंदों का सामना किया उन्होंने, दो रन बनाए. 165 रन भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर इस समय चल रहा है.
0: And, just and when the road, she's come back strongly after her first over, went for 6 wides, and I tell you, she's found her rhythm so well.
1: जी, एक बार फिर से वेंडर रेड वापस गेंदबाजी करते हुए. शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, लेकिन इस बार दोबारा डालनी पड़ेगी, वाइड का इशारा.

0: It brings the captain on strike, Harmanpreet Kaur. 178 matches, 4,100 in total. It's an amazing career indeed. First ball, she goes back, rocks off the backward, but unfortunately it goes straight to Heath Seegers at extra cover. No run. She's on one from two. Look at the run rate, 9.87, going steady. With the next match coming up after a few hours from now, Pakistan and South Africa. Harmanpreet Kaur off the backward, cuts this one. They're running tough single indeed. There's a chance of run out of this non-striker zone. They still complete the run. And at the end of 18 hours, it's 4 for 177.
1: 18 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर है 177 रन और भारत की तरफ से जो विकेट्स गिरे हैं पहला विकेट गिरा था 115 रन के स्कोर पर शैफाली वर्मा आउट हुई थी दूसरा विकेट 162 के स्कोर पर स्मृति मंधाना आउट हुई तीसरा विकेट 162 के स्कोर पर ही गिरा जेमिमा रॉड्रिक्स आउट हुई थी और उसके बाद चौथा विकेट यास्तिका भाटिया के रूप में गिरा था उस समय स्कोर था 17.168 रन स्कोर था और इस तरह से जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि जिस तरह की गेंदबाजी कर रही हैं नीदरलैंड्स की गेंदबाज वहां पर रनों की संख्या तो बढ़ाई भारत ने लेकिन विकेट भी गिरे हैं 18 ओवर के बाद 9.83 के औसत से रन जुटाए हैं भारतीय टीम ने इस समय भारत का स्कोर बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए 177 रन चार विकेट के नुकसान पर और ये 19वां ओवर यानी इसके बाद भी इस ओवर के बाद एक ओवर और खेला जाएगा इस बीच डी राड गेंद को शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी धीरे से कलाइयों के सहारे से स्क्वायर लेग की तरफ खेला हरमनप्रीत ने और अपने खाते में एक रन और जोड़ दिया हरमनप्रीत का स्कोर इस समय 3 रन ऋचा घोष अब आ रही हैं बल्लेबाजी करने के लिए ऋचा घोष बहुत ही आक्रामक स्ट्रोक प्लेयर कही जाती हैं और कई मौकों पर भारत के लिए उन्होंने अंतिम क्षण में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मुझे याद है गत वर्ष जब विशाखापट्टनम में विश्वनाथ और मैं एक दिनी विश्व कप में कमेंट्री कर रहे थे ऋचा घोष ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बहुत ही शानदार स्कोर किया था इस समय ऋचा घोष तैयार हैं 9 के व्यक्तिगत स्कोर पर 178 रन 4 विकेट के नुकसान पर यह अगली गेंद थी उस गेंद को ड्राइव किया है गेंद बिल्कुल हवा में जा रही है और 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर
2: ये लगा आभा का छक्का
1: बहुत ही शानदार तरीके से जैसा हम बता ही रहे थे कि ऋचा घोष बहुत ही आक्रामक मूड से बल्लेबाजी करती हैं ऋचा घोष ने एक बिल्कुल स्लॉट पे पड़ी थी गेंद और पूरी ताकत के साथ गेंद को हवा में उछाल दिया था और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए जाकर गिरी थी एक और शानदार छक्का ऋचा घोष के बल्ले से निकला और भारत का स्कोर 184 रन 4 विकेट के नुकसान पर और ऋचा घोष फिर से तैयार हो रही हैं 5 गेंदें उन्होंने मात्र खेली हैं और 15 रन बना लिए हैं अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी पुल किया है उसे देखना है फील्डर नीचे नहीं लेकिन बहुत पीछे थी फील्डर और पहले टप्पे के साथ फील्डर के हाथ में आया डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ एक रन और ऋचा घोष ने अपने खाते में जोड़ लिया 16 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया इस समय 185 रन 4 विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर ऋचा का स्कोर हो गया 16 रन 6 गेंदें मात्र खेली हैं और वेन डी राट की ये इस ओवर में 8 रन अब तक ले चुके हैं 3 गेंदें अभी भी शेष हैं हरमनप्रीत इस बार तैयार हैं अगली गेंद का सामना फुल टॉस गेंद थी ड्राइव किया उसे और गेंद अब जाके फील्डर के हाथ में आई लेकिन तब तक हरमन और ऋचा ने 22 गज के इस घेरे की पट्टी को दौड़ते हुए पूरी किया हरमनप्रीत का स्कोर हो गया 4 रन 5 गेंदें उन्होंने खेली हैं ऋचा अब 16 रन के स्कोर पर सामना करने के लिए तैयार हो रही हैं अगली गेंद का भारत और नीदरलैंड्स के बीच में T20 विश्व कप का यह मैच टॉस नीदरलैंड्स ने जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया राट की यह गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी पॉइंट बाउंड्री की तरफ उसे गेंद को टैक किया था और 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर
2: ये लगा आभा का चौका
1: 190 रन भारत का स्कोर 19 ओवर की समाप्ति पर
0: Well, the last shot was just fantastic to watch from Harmanpreet Kaur. Just bounced inside the fence for 4, one bounce. And the fielder at the boundary, she was not at the edge of the boundary rope. She was just about, I would say, a couple of yards in front, and she was never in control of that. That was catchable by all means. 190 for 4, one ball to go in the 19th over. And, well, India should get past 200, I think. That's what everyone was looking at. Right in the last of bowls, fuller. And it's beautifully bowled. It was a

0: 115 run opening stand between openers Shefali and Smriti, and India posting 209 for 5, India's first 200 run score in T20 World Cups. Hello and welcome to Free Hit 20. I am Megha. Joining me in studio as my co-host is Suhas Vedam. Our experts are former cricketers Colonel Bhup Raj Singh, Vaishali Mathur, and senior sports journalist Soumitra Bose.
1: Welcome everyone.
2: Thank you.
1: Highest ever T20 World Cup score for India. Let's start with that here. We were talking about being presented with a challenge. Harman wanted a challenge. Boy, have they responded to that challenge brilliantly. 200 breached, and I think it'll do a world of good to their net run rate as well, which they're eventually looking at, and of course the confidence. Mr. Soumitra.
2: Certainly. In fact, 209 is a par for the course. But again, I think Netherlands will be disappointed with the way they started, but they finished very strongly. Catches dropped, and the difference that could probably make is the 16 runs of extras that they conceded. Out of that, 14 white balls, one no ball. That means they have bowled more than 2 overs to the Indians, and the Indians capitalized in 50s by. You know, we were talking about Shefali Verma. She did it. And of course, Smriti Mandhana's always on song. I think it's a good total for India.
1: Right, a couple of boxes ticked, especially, Colonel, when you look at India's top order. You wanted them to come back into form before the bigger South Africa assignment arrives.
3: Oh, yes. Shefali has played really well today. And so has Jemima for the short time she was there. She scored about 20 runs. And of course, Mandhana was flawless. We had a minor hiccup in the 16th and 17th overs where we lost 3 quick wickets. But that, I suppose, was that we wanted to go in for a big score, 200 plus. And we took some chances, and that is how we lost those 3 quick wickets.
1: Right, so no complaints there whatsoever. They had to bat that way. No,
3: not at all.
0: वैशाली जब ये दोनों ओपनर्स शिफाली और स्मृति सॉन्ग पे होती हैं अच्छा प्रदर्शन कर रही होती हैं तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स देखने को मिलता है पावर और टाइमिंग
4: जी शिफाली पावर एंड स्मृति टाइमिंग एंड सबसे अच्छी बात ये फियरलेस बैटिंग करी आज शेफाली वर्मा ने एंड ये उनके लिए बेटर है क्योंकि उनका जो बैट का स्विंग है वो साउथ अफ्रीका के लिए मैच के अगेंस्ट उनको बेटर वे में उनको कह सकते हैं कि रन रेट उनका इक्वल कर सकता है एंड उसके साथ साथ स्मृति मंदना हमेशा ही इतना फियरलेस खेलती हैं वो तो उसकी उनके बारे में क्या ही बात करें हम और उसके साथ अगर मैं जेमिमा की बात करूं तो जेमिमा ने काफ़ी फियरलेस बैटिंग करी है लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये लग रहा था कि उनको और बेटर पिच पे अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए था क्योंकि साउथ अफ्रीका टीम जो आने वाला आपका नेक्स्ट मैच है उसके लिए आपको टीम पिच पे टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी था आज एंड यस्तिका भाटिया एज अगर हम कंपेरिजन करें भारती की और यस्तिका की तो दोनों सिमिलर है अभी दोनों एक ही जगह पर स्टैंड कर रहे हैं एंड कोई भी खेले बट हरमनप्रीत को उनकी जगह पे आना चाहिए था और बेटर हमारा रन रेट बढ़ सकता था एंड उसके साथ अगर हरमन की बात करूँ तो लास्ट मैच और इस मैच में देखें तो उनका बैट उस तरीके से चल नहीं रहा है जो साउथ अफ्रीका के लिए हमें चाहिए बैटिंग
1: राइट अगर हम बॉलिंग की बात करें नेदरलैंड्स की तो दिलांगा उन्होंने 2 विकेट चटकाए और सीगर्स ने भी 1 विकेट चटकाया उसके बावजूद अगर आप देखें तो इंडिया वर एबल टू टैकल द स्पिनर्स वेल क्या उन विकेट्स के चलते आप कह सकते हैं ये कर्नल कि इस विकेट में कुछ ना कुछ तो है स्पिनर्स के लिए मदद जरूर है
3: या देयर इज स्लाइट यू नो असिस्टेंस फॉर द स्पिनर्स हालांकि विकेट थोड़ी फास्ट खेल रही है लेकिन अगर आप राइट स्पॉट पे फ्लाइट करके बॉल डालोगे तो हल्की सी टर्न भी है जिससे बैट्समैन को खेलने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी
0: Soumitra, it's also about who they are up against. For example, Asset Mandhana, even if it's an off spinner in front of her, is not going to be uncomfortable.
2: Absolutely.

0: Just to add to what Colonel said, all the five wickets that India, all the wickets that fell, so all were bad dismissals. Have you noticed that? There was kind of strokes Jamie played, you know. Richa was lucky because she was dropped on two.
1: Right.
0: I mean, imagine if Harmanpreet was also not dropped, we could have been in bigger trouble. It so happens that our team, opposition is Netherlands. Imagine, can you do this with Australia or South Africa? Answer is no. And spinners, yes, fine, but did you see if the ball turned too much? Not too much, maybe. Because the point is this, they were both trying to, that's what I said, in the 16th over onwards, the Dutch bowlers tried to get something back out of this game.
1: Right.
0: That's why De Lange got. But again, the wickets we gave De Lange were gifts.
1: Got it.
0: Except for the fact that Yastika stepped out, missed the line completely and was bowled and was stumped.
1: Right.
0: So the point is how you played the match. I think it's largely because the two batsmen in the top of the order, they got the runs. And if you see the contrast of the first match, where the middle order got the runs, the top order did not. Here it was a bit of a reverse.
1: Mm-hmm.
0: But things are, there are lessons to be learned from this match.
1: Harping about the spinners once again then, if it's not turning as much, Vaishali, jis tarike se chahalkadmi ki thi Smriti ne, the fact that she was able to use her feet to the spinners, that brought a lot of runs. Do you think the opposition will borrow a leaf out of her book? Wo bhi waise hi khelne ki koshish karenge jis tarike se Smriti ne pace out kiya tha apne innings ko?
2: Ye thoda doubtful question hai, but मुझे लगता है कि जहाँ पर अभी स्पिनर अगर हम पूरा आंकड़ा निकाल के देखें तो अभी भी स्पिनर ने ही विकेट ज़्यादा ली है एंड हमारी दीप्ति शर्मा अगर वो जैसे उन्होंने लास्ट मैच में पकड़ के एंड स्पॉट बॉलिंग की थी वही अगर वो उस तरीके से बॉल करती और श्री चरणी करते तो हो सकता है आज दोनों ही बॉलर अपने नाम की विकेट्स कर सके
3: भूप और खास करके हमने दीप्ति के केस में देखा है कि अगर वो कोई चीज को वेरी करती है वो होता है उनका पेस वो होता है उनके लेंथ लेकिन लाइन हमेशा सटीक ही रहता है
4: देखिए शी इज अ वेरी गुड बॉलर हम उसको जो नेदरलैंड्स के बॉलर है उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते शी इज अ बिग मैच प्लेयर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा विकेट्स ले रखी हैं तो उसकी बॉलिंग यहाँ पे इस विकेट पे बड़ी अच्छी होगी एंड मुझे लगता है कि जो नेदरलैंड्स के बैट्समैन हैं उनको काफी ट्रबल करेंगी और जिस
5: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया
6: एक्सेलेंसी हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी एक्सेलेंसी मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं
5: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता

0: और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ट्स के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपये की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपये की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के

0: जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहलें भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायु सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा

0: छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
1: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ड्स, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1,200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chase target of 403 runs set by India in second ODI of 3-match series in Lucknow. A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump at Evian, France on the sidelines of G7 summit this evening. During the talks, issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figured prominently. Prime Minister Modi commended President Trump for the progress in peace efforts in West Asia. The Prime Minister said that India has consistently emphasized the importance of the freedom of navigation and all should work together to place a particular emphasis on it. Mr. Modi added that lakhs of Indian seafarers in maritime trade are on duty in different oceans of the world and their safety is of utmost importance to India.
3: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता

0: Captain Harmanpreet Kaur, the fielder. It's 2 for 50, we're in the 8th over. And the game slowly creeping away from the Dutchman, Deepthi Sharma. Abhishek comes over, runs in a few paces and well short. And stumped stylishly off the back of a lovely stroke indeed. And this is going down towards the extra cover fence for 4.
1: Ye laga, abha ka choka.
0: Well, that was a quality stroke indeed. Beautiful shot off the back foot. And it looked very elegant, very graceful. And a nice shot indeed for Callis to get off the mark. She goes up to 4. And one ball remaining in the 8th over. 2 for 54 is the Netherlands scorecard, chasing 210. And now the sweeper goes on the fence on the offside. There's a deep cover now. Next ball. She played it. She came forward to play. And then ended up playing from the crease. She was deceived in the flight. Beautifully bowled by Deepthi Sharma. A successful over, 1 for 9 from that over. And at the end of that over, over number 8, Netherlands 2 for 54.
2: Netherlands ke score is samay 54 run, 2 wicket ke nuksan par, jo do khiladi out hokar pavilion lote hain. Heather Seegers, caught Smriti Mandhana, bowled Kirti Sharma, 21 run Malcolm Bour. कॉट जेमिमा रॉड्रिक्स बोल्ड दीप्ति शर्मा 15 रन. दीप्ति शर्मा जैसे ही मैदान पे आती हैं वो एक सनसनी फैलाने के लिए बॉलिंग गेंदबाजी करती हैं. बहुत ही शानदार गेंदबाजी पाकिस्तान के विरुद्ध की, जिस तरह आधी टीम को बाहर किया था. इस बीच एक बार फिर से श्री चन्नी के गेंद को स्वीप किया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, लेकिन वहाँ पर खड़ी फील्डर ने उसे गेंद को फील्ड कर लिया. कोई मौका नहीं. आज एक दुर्भाग्य रहा भारत का कि श्रेयंका पाटिल अपनी ही गेंद पर गेंद को रोकते हुए गिर पड़ी थी और एंकल चोट उनको लगी है. उनको मैदान के बाहर ले जाया गया. राधा यादव उनकी जगह फील्डिंग कर रही हैं. समय नीदरलैंड्स का स्कोर 55 रन, 2 विकेट के नुकसान पर. अभी भी 155 रन की आवश्यकता है. 71 गेंदों का सामना अभी करना है. डी लीट इस समय खेल रही हैं 13 रन के स्कोर पर. कालिस खेल रही हैं 4 रन के स्कोर पर. ड्राइव किया से पॉइंट की तरफ पर राधा यादव ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ गेंद को फील्ड कर लिया. अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में फील्डिंग कर रही हैं श्रेयंका पाटिल की स्थान पर. श्री चरणी जिस तरह से गेंदबाजी कर रही हैं, एक ऑफ साइड में एक दीवार से खड़ी कर रखी है कप्तान. ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, स्वीप करना चाहती थी. अंपायर की तरफ देख रही हैं और वाइड का इशारा. इस मैच में जो अंपायर हैं क्लियर पोलोशेक और सूर्य डफन जो कर रही हैं मैदान में अंपायरिंग, लॉरेन एगेन बैग तीसरे अंपायर यानी टीवी अंपायर के रूप में गेंदबाजी कर रही हैं. इस समय नीदरलैंड का स्कोर 56 रन पर. 2 लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को फिर से स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया और गेंद को फील्ड किया गया और रन लेने का जो सिलसिला है वो और आगे बढ़ता जाए. इससे पहले भारतीय खिलाड़ी बहुत मुस्तैदी के साथ फील्डिंग कर रहे हैं. किसी भी तरह की अभी तक जो फील्डिंग में एक कसावट नज़र आती है नीदरलैंड की फील्डिंग के मुकाबले, वो अभी तक भारत के लिए बहुत ही संतोषजनक बात है. 57 रन, 2 विकेट के नुकसान पर. डी लीडे समय खेल रही हैं, एक कदम आगे बढ़ी, ड्राइव किया था सीधे कवर्स के पड़े खिलाड़ी के हाथ में. शेफाली वहां पर खड़ी थी, गेंद को फील्ड कर लिया. रन लेने का कोई प्रयास नहीं किया. श्री चरणी इस समय गेंदबाजी कर रही हैं और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करती हैं. श्री चरणी जैसे बाएँ हाथ की गेंदबाज हैं और बैटर्स को कोई मौका नहीं दे रही हैं. इस बार श्री चरणी गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, स्लॉट पे पली, ड्राइव किया इसे, लेकिन इस बार एक्स्ट्रा कवर पर हरमनप्रीत कौर खड़ी थी. गेंद को फील्ड कर लिया और रन लेने का कोई भी मौका नहीं दिया. लीड और कैलिस इस समय 2 बैट्समैन बैटर्स खेल बीच मैदान पर. बबेट डी लीड जो कप्तान हैं. इस बीच एक बार फिर से श्री चरणी की गेंद लेग स्टंप की तरफ. उस गेंद को टर्न किया था और देखना है गेंद पैड से टकराई या बैट से लग के गई. अब जाके फील्ड किया दीप्ति शर्मा ने और अंपायर भी देख रही हैं. और बेल्स हालांकि वहां पर बिखेर दी थी, एक हाथ ऊपर करके एक हल्की सी अपील विकेट के पीछे से श्रेया घोष कर रही हैं, लेकिन अंपायर ने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया. 9 ओवर की समाप्ति पर 59 रन, 2 विकेट के नुकसान पर इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर.
0: Well, it's a bit grinding there for Netherlands, and the asking rate now is just beyond, slowly beyond the reach now. It's almost touching 15 and over. So, they probably can gain a lot of experience by the

0: and for 14, and Sri Charani is bowled along with Deepthi Sharma. Sharma in the second over, close to some bowls, and she stops. I think she lost the footing over there, and then the umpire says it clears it as a dead ball. She wants a shuffle in the field now. It's been a bit of a blue sky, could see all around the Leeds ground, and which means that we don't want to see a threat of rain. It's one of those ground where when you play most of the matches in England in particular, the daylight pattern could change. Deepthi bowls. She's down the track, hoisted high in the air, over mid on, one bounce, the fielder, Shefali. And not more than that. We didn't get a six in the last game that the Netherlands played against Bangladesh, so they're not finding those long boundaries. As a matter of fact, 2 for 61 in the 10th over. They need 149 from 64. It's very demanding now, as a matter of fact. Deepthi ball slower and plays with an angle face of the bat. Beautifully played. There was a bit of a deft touch in that. It's going down towards the deep third man area. Smriti Mandhana, she's after it. And she chases, fields, picks it up, returns. And a couple of runs for the Netherlands team. They go up to 63 for 2 midway of the 10th over. And 147 from 63. That's a massive ask. Callis, she's an 8 from 7. And D lead, the captain, 16 from 14. And to turn it around from here is next to impossible, as a matter of fact. There's an amazing stadium, the Leeds, and it's got its own stories, history. Plenty of games played. Next ball short, she cuts, beautiful short indeed. She made some room and played it beautifully. Square of the wicket, one of the good shots of the evening. It's gone for 4. Ye laga, abha ka choka. There was so much of class in the shot from D-Lade. She rocked onto the back foot and played it for square. There was a bit of turn and comfortable bounce to play the shot of the back foot. It's gone for 4. That's a third boundary. I could see her. She's so good with her footwork. She's nimble-footed. And she's very fast down the track or playing off the back foot. 2 for 67. India 94 at the time. Next ball is driven around the wickets as Deepthi started bowling around the wickets, in fact, rather. Down to long gone. It's 2 for 68 from 9.5 overs. And still, I would say it's a decent score when you put up 65, 70-odd runs inside the 10 overs. And here's Deepthi, the last time, comes and throws this one nicely, and the batter played from the crease without any foot movement, and it goes through to the keeper. A dot ball to India. 10 overs gone. 2 for 68.
1: भारत और नीदरलैंड्स के बीच इस समय कशमकश जारी है गेंद और बल्ले के बीच में, और देखना है कि नीदरलैंड्स की ये पारी कहां तक जा पाती है। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने काफ़ी कसावट भरी गेंदबाजी की है इस समय। दीप्ति शर्मा बहुत ही स्टार गेंदबाज हैं भारत की तरफ से। पाकिस्तान के विरुद्ध जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी, सबको चकित कर दिया था। भारत ने 209 रन 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर्स में बनाए थे। 10 ओवर का खेल अब तक पूरा हो चुका है, यानी नीदरलैंड्स अपना आधा सफर पूरा कर चुकी है, लेकिन उनका रन का जो खाता है अभी 68 रन पे अटका हुआ है 2 विकेट के नुकसान पर। जैसा कि हम आपको लगातार बता भी रहे थे, हीथर सीजर्स 2 रन पहले आउट हुई थी, उसके बाद मॉल्केन बोर आउट हुई थी। सीजर्स ने 21 और मॉल्केन बोर ने 15 रन बनाए थे। इस समय स्टीव कैलिस मैदान में खेल रही हैं। क्रांति गौड़ को लाया गया है, मध्यम गति के तेज गेंदबाज। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बैकफुट पर गई और गेंद को स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ निकाल दिया 4 रन के लिए। ये लगा आभा का चौका। कीर्ति गौड़ मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी उनकी और ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी। बल्लेबाज ने मौका तोड़ा और गेंद को धीरे से कट कर दिया था डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए। तो इस समय क्रांति गौड़ से बातचीत कर रही हैं कप्तान हरमनप्रीत कौर। उनको समझा रही हैं कि किस तरह से उनको अपनी गेंदबाजी की दिशा बनाए रखनी है, और दोनों बैटर्स कहना होगा बहुत अच्छा खेल इस समय दिखा रहे हैं। लीड खेल रही हैं 16 रन पर और कैलिश खेल रही हैं 17 पर सामना करने के लिए अगली गेंद का। इस गेंद को धीरे से पुश किया था मिड विकेट की तरफ, और इससे पहले कि गेंद को फील्ड किया जाता, एक रन और लीड ने अपने खाते में जोड़ा, उनका स्कोर कैलिश ने अपने खाते में जोड़ा 18 रन, उनका व्यक्तिगत स्कोर

0: गया। लीड का स्कोर इस समय है 16 रन 15 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। बैबेट डी लीड कप्तान है और विकेट कीपर भी हैं, और एक तरह से कहा जा सकता है कि क्रिकेट में विकेट कीपर की को आकर बहुत देर तक जमने के लिए गेंदों को देखना नहीं पड़ता। इस बीच ये गेंद को धीरे से गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ ड्राइव कट किया है और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: लेग स्टंप के बाहर ठीर गेंद को धीरे से उन्होंने हवा में थी, हालांकि फील्डर जो खड़ी थी शॉर्ट फाइन लेग पर, उन्होंने गेंद को फील्ड करने का प्रयास किया था, पुश भर किया था गेंद को अपने बल्ले से और फील्डर के हाथ में तो नहीं आई, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जरूर चली गई। लीड इसके साथ ही 20 रन पे जा पहुंची, 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसने अच्छी गेंद थी, इस बार एक कदम आगे बढ़ी, धीरे से गेंद को पैड के साथ खेली थी, लेकिन और इसके साथ ही रन लेने का कोई मौका वहां पर लीड को नहीं मिला। बबेट डी लीड कप्तान हैं और इससे पहले जो बांग्लादेश के विरुद्ध मैच खेला था इस T20 विश्व कप में, अपना पहला मैच खेला था, वहां पर 50 रन से अधिक उन्होंने बनाए थे, एक अर्धशतक बनाकर टीम को एक सांत्वना दी थी। हालांकि बहुत कम स्कोर पर उनकी टीम वापस पेविलियन लौट चुकी थी, ऐसे मौके पर डी लीड ने आकर अपनी पारी को संवारा था। इस बीच एक बार फिर से तैयार, 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद थी लेग ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई, गेंद को खेलना चाहती थी लेकिन गेंद उनके बल्ले को छकते हुए थी विकेट कीपर घोष की ग्लव्स में जाके पहुंची। बबेट डी लीड बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं, कप्तान हैं, और जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रही थी बांग्लादेश के विरुद्ध एजबेस्टन में, उन्होंने बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 45 बॉल में 50 रन स्कोर किया था। लीड फिर से तैयार हो रही हैं, क्रांति गौड़ के शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, गेंद को पुल करना चाहती थी, पूरी तरह से चूकी और गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में गई। और देखना है अंपायर बात कर रही हैं वहां पर कि क्या कहीं गेंद बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, एक निर्धारित ऊंचाई से ऊपर निकली, लेकिन 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की समाप्ति पर।
2: Well, that was a good bouncer. It was a bouncer heading on straight towards her head, and she missed it completely. She had a look at the umpire, the square leg, and there was no signal from the square leg umpire, which means it was a genuine delivery. So, see, the bounce has been a bit effective in this World Cup, I've seen, because some of the tracks in England also have a bit of bounce. There's always something there for fast and swing bowlers. 133 more needed from 54 deliveries, which is 9 overs, and the game is just getting beyond the reach. Shefali bowls the first ball and it's placed backward a square on the offside straight to Jemima, and no addition to the total, so only 77 for 2. I missed some opportunity over there for finding boundaries, and this World Cup India probably will be one of the contenders. Shefali close to some balls. Oh, she's bowled her beautifully bowled. She missed it completely, and Callis is gone bowled, and that was beautifully bowled, and I think it held its line a bit as the plier was, the batter was waiting for the spin, and that didn't happen. It went, or it slided on, and it broke the timbers. An amazing delivery indeed, by all means. It drifted away, I can tell you that, and then it held its line, and the batter played the wrong line completely, and the stumps are disturbed. So which means the third wicket is down for Netherlands, 77 for 3 in the 12th over, and Sturry Callis walks back 18 from 13 with the help of 3 boundaries, and probably these are the opportunities that I think batters should not lose, as a matter of fact. This is a beautiful platform to find some form and get ready for the rest of the other games. So qualifying for the semi-finals is very challenging now, because you're in a pretty strong group, and when you play teams like Australia or India or South Africa, as a matter of fact, it won't be that easy indeed. So Netherlands have lost their third wicket. Callis has gone bowled by Shefali Verma, a beautiful delivery which actually drifted away, and it held its line and got the batter playing the wrong line. 77 for 3, and it's Richki, she's the new batter in, and she's going to play Shefali Verma. She's a very tricky customer, quicker one, flicked away on the onside.

0: and she's off the mark. Richke of the first ball, and that brings the captain on strike 20 from 19. And she's played beautifully in this game so far. Got a half century in the last game against Bangladesh. And Shefali all of a sudden has got the habit of breaking partnership indeed. And very effective and fast becoming a genuine all-rounder. Next ball. She's back again. Pulls it high over deep into wicket. One go for four has been patrolled by Renuka. And in comes a throw. Rather, she was the fielder. And restricts to just a single. It's 79 for 3. Two more balls remaining in the 12th over. As Netherlands need 131 from 50 deliveries. And the game is just getting beyond the reach. Rich Keane strike. Takes care from the umpire. And she goes for the reverse sweep. We're not seeing the reverse sweep in the whole game. This is going down towards the third man area. And that's gone away for 4. A smart bit of cricket indeed. And a lot of scoops been played, the sweep been played, and the first time I'm seeing a reverse sweep and played to effect. And it fetches her 4 more runs, and she's up to 5. And a welcome boundary here for the Netherlands. And well, the cricket time is a very funny game. She's on 5 from 2, 83 for 3 in the 12th over, 127 needed. Shuffle in the field from Harmanpreet Kaur. No reinforcement on the offside within the 30-yard circle. 4 inside the circle. Next ball. She's up and defending. Back to the bowler. A very proper defensive push. Back to the bowler. Brings the over to an end. 12 is gone. It's 3 down for 83.
1: 12 ओवर के समाप्ति पर 83 रन के स्कोर पर पहुंच चुकी है नीदरलैंड्स की टीम. लेकिन जैसे जैसे ओवर्स बीतते जा रहे हैं मैच भारत की पकड़ में आता जा रहा है और नीदरलैंड्स से दूर जाता जा रहा है. मात्र 8 ओवर का खेल अब शेष रहा है और 15 से अधिक रन अगर प्रति ओवर बनाने की क्षमता है नीदरलैंड्स की तब तो कुछ कहा जा सकता है. लेकिन अगर आज की परिस्थिति में अभी की परिस्थिति में देखा जाए तो नीदरलैंड्स की टीम अब थोड़ी सी परेशानी में. 6.92 की उनकी गति है जबकि उनको चाहिए 15.88. इस बीच क्रांति की पहली गेंद को घुमा दिया है ऑन साइड में. बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज का घेर की पट्टी को पार किया. एक रन उनके खाते में जुड़ा है और इसके साथ ही स्कोर हो गया 83 रन. इस बीच 84 रन 3 विकेट के नुकसान पर. इस बीच एक जानकारी हम और आपको दे सकते हैं कि दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच है भारत और अफगानिस्तान के बीच में लखनऊ में खेला जाएगा. इस बीच ये गेंद हवा में ऊपर है. देखना है फील्डर्स के नीचे है या नहीं. लेकिन बहुत ही थोड़े से अंतराल से बच गई वो बाल बाल बची. वहाँ पर स्मृति खड़ी थी गेंद की तरफ लपकी थी लेकिन गेंद उनके हाथ पे नहीं आई. डी लीड 21 रन पर सामना करेंगी जबकि रिस्क क्या स्कोर हो गया 6 रन बगैर किसी नुकसान के. 85 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12.2 ओवर्स के खेल पर और 125 रन अभी भी चाहिए नीदरलैंड्स को इस मैच में पार पाने के लिए. 46 बॉल में गेंदों पर बहुत मुश्किल काम. शॉर्ट ऑफ लैंड गेंद थी पुल करना चाहती थी हालांकि पीछे विकेट कीपर अपील की मुद्रा में है लेकिन अंपायर ने इसे वाइड करार दिया. एक अतिरिक्त रन और इस ओवर में दूसरा अतिरिक्त रन एक लेग बाई से मिला था पहली गेंद पर. उसके बाद में एक रन बल्लेबाजी में मिला था और उसके बाद में ये वाइड गेंद करार दी गई. 86 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर. कप्तान बबेट डी लीट इस समय बीच मैदान में सामना करने के लिए तैयार हैं और उनके साथ हैं रिस्क. इस बीच एक गेंद को पुश किया था लीड ने और एक रन अपने खाते में जोड़ा. 22 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया. भारत ने आज अफगानिस्तान के विरुद्ध सेकेंड जो मैच खेला था 170 रन से जीता है भारत ने. और ये सूचना हमारी श्रोताओं को दी जा रही है कि आज जो मैच खेला गया था लखनऊ में दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच था और उसमें भारत ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 170 रन के बड़े अंतर

से अफगानिस्तान को पराजित किया है। 88 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12.3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच लीड्स के में खेला जा रहा T20 विश्व कप का ये मैच, 112 ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को धीरे से स्क्वायरिस थर्ड मैन की तरफ खेला, एक रन और जोड़ा है 89 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर है और अगर उनको प्रति ओवर 16.50 रन की दरकार है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है नीदरलैंड्स के लिए। और इस बीच क्रांति की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को कट किया था, स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ जा रही है बहुत तेजी के साथ, लेकिन अब जाकर राधा यादव ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया विकेट कीपर एंड में, लेकिन तब तक बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था कि वो रन जुटा लेते। 2 रन और जुड़े हैं नीदरलैंड के खाते में। जिस तरह से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी, छिटकी थी वहां पर फील्डर के हाथ से, गली में खड़ी फील्डर के हाथ से लगकर गेंद गई थी स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ, थोड़ी सी मुस्तैदी रखी जाती थी, ये कैच हो सकता था। इस बीच एक बार फिर से क्रांति की गेंद, अगली गेंद अच्छी गेंद थी इस बार, लेकिन बैट और बल्ले से उलझी गेंद बहुत तेजी के साथ रन चुराते हुए डी लीड्स दौड़ी।